0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
1: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
2: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
3: आई हैव बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
4: आर यू पीपिंग टॉम
3: सैडली इट वाज़न्ट इन देयर So, I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then, it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
5: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
4: Come up and see me sometime.
3: Case closed.

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
3: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
4: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
5: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
3: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
2: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
3: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
6: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
5: Abhi call kijiye 01484549947.
2: Training will be provided.
7: Jagte rehna, jagte rehna.
8: So jaunga to kya hoga bhai?
7: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge, kyunki paratha stop leke aa raha hai aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka aur iske sath sath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
8: Stop!
7: अरे
8: वाह,
7: पराठा स्टॉप. हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
8: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
7: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
1: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
4: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
5: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
6: आर यू पीपिंग टॉम
5: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
0: नफ्सिन जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
4: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلیفون 01924 66771 Mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
1: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
4: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
5: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
6: आर यू पीपिंग टॉम
5: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
0: Aap sun rahe hain Radio Sangam 107.9 FM. Dilon ko milane wala.

0: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
1: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
4: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
3: Abhi call kijiye 01484-549947.
0: Training will be provided.
5: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
6: Are you peeping Tom?
5: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
8: Jagte rehna, jagte rehna.
9: So jaunga to kya hoga bhai?
8: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se red rahoge kyunki paratha stop leke aa raha hai aalu ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha donor, paratha tikka aur iske sath sath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
9: Stop! Are wah! पराठा स्टॉप?
8: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
9: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
8: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हरिसफील, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

फकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल।

आंसू ने मुस्कान आई जब आंसू ने सुधारा।

0: किसान रुपए मेरा कमल जी कम ठंडा ना कर दियो
1: कर दियो गरम जी
0: अजी टोपा वाला रेडियो
1: अच्छा जी चोरी कर ले चक दे जरा

जड़ा मौत तो नहीं डरता, अमृत ओनू मिलता है जड़ा जहर पींदा है, दीदार ओनू हुंदा है जड़ा सूली ते चढ़दा है, सूली ते घट नहीं ओदा मुल।

0: तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए 3000 पाउंड्स तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए 1000 पाउंड तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ رابطہ कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज Enterprise Center, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HJ. Number mat bhuliyega 07977317760.
1: Fast Track Solutions. We guarantee to repair your vehicles within 4 weeks, subject to terms and conditions.
2: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवरटाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड पैकेजेस आर अवेलेबल कांटेक्ट रेडियो संगम टीम नाउ ऑन 01484549947 दैट्स 01484549947
3: जागते रहना
4: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
3: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
4: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
3: हाँ ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
4: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
3: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
5: रोतों को हंसाने वाला दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM

दिन रात आपके साथ रेडियो संगम अब वक्त हुआ जाता है अजान फज्र का। आप अपनी मकामी मस्जिद के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
1: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
2: Are you peeping, Tom?
1: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
3: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
2: Come up and see me sometime.
1: Case closed.
4: जागते रहना, जागते रहना।
5: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
4: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी।
5: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप!
4: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना। और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
5: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
4: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील, HD15HU, ओपनिंग सून। टेलीफोन 01484542700।

0: हां भाई बच्चों कल का सबक याद है
1: हां जी याद है
0: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
1: हां जी चाहिए
0: चांदी चाहिए
1: हां जी चाहिए
0: कहां से लोगे
1: चाचा जूलर्स
0: फिर से बोलो
1: चाचा जूलर्स
0: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
1: चाचा जूलर्स
2: केडियां ऑफर लाईयां वा सानू भी तो दसो
3: तो फिर सुनिए चाचा जूलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू
4: चाचा जूलर्स ओपन मंडे

0: 2553. Get down there for some great bargains.
1: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
2: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
3: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
4: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
2: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
1: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
2: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
5: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
6: अभी कॉल कीजिए 01484549947.
1: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड.
7: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
8: Are you peeping Tom?
7: Sadly, it wasn't in there. So, I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
9: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
8: Come up and see me sometime.
7: Case closed.
10: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
11: From the Sky News Centre at 5, the US President says Iran is asking for things he can't agree to in order to put an end to the war. Donald Trump says he's unhappy with proposals put forward by Tehran and claims the regime is in disarray.
12: They're not able to get along with each other as leaders. They don't know who the leader is. Their military has been defeated. If we left right now, it would take them 20 years to build back that country, but we're not satisfied at this moment.
11: A three-week ceasefire has largely stopped the fighting, but the two countries are locked in a standoff over the Strait of Hormuz. The US is pulling 5,000 troops out of Germany after a spat with its chancellor over Iran peace talks. On Monday, Friedrich Merz claimed Tehran was humiliating America. Andy Burnham's reportedly planning to return to the Commons and pitch for Keir Starmer's job within weeks. A newspaper also says Wes Streeting has support from the 81 MPs needed to challenge the Prime Minister. The Utilita Arena in Birmingham city centre has been evacuated after police say a potential suspicious bag was found nearby. Comedian Peter Kay was performing at the time. In sports, Leeds manager Daniel Farke says their 3-1 win against Burnley is massive for his side's hopes of avoiding Premier League relegation. They're 9 points clear of the drop zone with 3 games left. Farke's delighted with how they've performed during the end of season run-in.
13: Just proud of my players today, and I have to give them so much compliments, so many compliments, because to deliver in such a pressure period in your last 4 Premier League games, 10 points, 6 unbeaten, and this feels amazing.
11: In the Scottish Premiership, Livingston drew 2-2 with Aberdeen. And Mark Allen and Wu Yizhe have played the longest frame in World Snooker Championship history. It lasted 100 minutes and 21 seconds after both players went 55 minutes of their semi-final without potting a ball. That's the latest. I'm Cam Hall.
14: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
15: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
16: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
15: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
17: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
18: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ رابطہ कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
19: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
20: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947. क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
2: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
3: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
6: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
2: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
20: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
2: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
5: यस, जॉइन द यूकेज मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
6: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
20: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
7: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
8: आर यू पीपिंग टॉम?
7: सैडली, इट वाजंट इन देयर। सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ माय ओन कंक्लूजंस। It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
9: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
8: Come up and see me sometime.
7: Case closed.
21: जागते रहना, जागते रहना.
22: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
21: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
22: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप.
21: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
22: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
21: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
1: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
4: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947.
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड.
5: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग.
6: आर यू पीपिंग टॉम?
5: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
8: શું તમે ધૂમ્રપાન છોડવાનું વિચારી રહ્યા છો? કેટલીસ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ તમને દરેક પગલા પર ટેકો આપવા માટે કહે છે. જો તમે ધૂમ્રપાન છોડવા માટે તૈયાર છો તો અમારી મૈત્રીપૂર્ણ ટીમ મદદ કરી શકે છે. અમે ધૂમ્રપાનની તૃષ્ણાઓ ઘટાડવા અને છોડવાનું સરળ બનાવવા માટે પેચ, વેપ્સ અને ગમ સહિત મફત ધૂમ્રપાન બંધ કરવા માટે સપોર્ટ પ્રદાન કરીએ.

0: સરળ છે. આજે જ કકલીસ વેલનેસ સર્વિસ .co.uk ની મુલાકાત લો અથવા 01484-234-0095 પર કોલ કરો. કકલીસ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ કાયમ માટે છોડી દો.
1: जायकतुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका. कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश.
2: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स, यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड, ड्यूसबरी, वेस्ट यॉर्कशायर, WF13 2HA. टेलीफोन 01924-466-771. Mobile 07971-092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
1: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
4: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
5: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
6: आर यू पीपिंग टॉम
5: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ माय ओन कंक्लूजन It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
8: શું તમે ધૂમ્રપાન છોડવાનું વિચારી રહ્યા છો? કેટલીસ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ તમને દરેક પગલા પર ટેકો આપવા માટે કહે છે જો તમે ધૂમ્રપાન છોડવા માટે તૈયાર છો તો અમારી મૈત્રીપૂર્ણ ટીમ મદદ કરી શકે છે અમે ધૂમ્રપાનની તૃષ્ણાઓ ઘટાડવા અને છોડવાનું સરળ બનાવવા માટે પેચ વેપ્સ અને ગમ સહિત મફત ધૂમ્રપાન બંધ કરવા માટે સપોર્ટ પ્રદાન કરીએ છીએ ધૂમ્રપાન છોડવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થાય છે તમારા પરિવારનું રક્ષણ થાય છે અને ખરેખર મહત્વની બાબતો માટે તમારા પૈસા બચાવે છે અને અમારા સમર્થનથી તમે એકલા ધૂમ્રપાન છોડવા કરતા સફળતાપૂર્વક છોડવાની શક્યતા 3 ગણી વધારે છે શરૂઆત ઝડપી અને સરળ છે આજે જ kakleswellnessservice.co.uk ની મુલાકાત લો અથવા 01484-234-0095 પર કોલ કરો Kirklees Council Wellness Service कायम माटे छोड़ी दो
9: लानिका अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये लानिका कौन है
10: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे
9: अच्छा लानिका वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है
10: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
9: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
10: कंजूस गैंग की उनका बुफे Monday to Thursday, $22.99. Friday to Sunday, $24.99. Under 10s, $11.99. And under 4s, free.
9: So, this time, my birthday should be Lanika. Why not? They
10: are also near us. Pelon New Road, Halifax, HX14QE. And every day, 4-11. Get a number. 01422-613-613. Let's book now.
11: Jagte rehna. Jagte rehna.
12: Sleep, then what will happen? If
11: you sleep, then Paratha Stop, the most delicious parathas, are all रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
12: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
11: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
12: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
11: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484 542700

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं रेडियो संगम के निशात 107.9 FM हडसफील की खूबसूरत वादियों से। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा खलूस भरा मोहब्बतों भरा चाहतों भरा अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वक्त जहां पर भी आप हमारी नशियात सुन रहे हैं, खुदा करे कि मेरी आवाज़ ने आपको खैरियत से पाया हो और दुआ रब्बे कुद्दूस से कि आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे और आपको हमेशा अपने हिफ्ज व ईमान में रखे, आमीन। प्रोग्राम की शुरुआत हमने उस परवरदिगार के नाम से की जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, सारे जहान का पालनहार है और जिसके कब्जे में हम सब की जान है। आज मई महीने की 2 तारीख और दिन है सैटरडे 2026। स्टूडियो की घड़ी के वक्त के मुताबिक ए लिटल आफ्टर 7:10। ये था स्टूडियो की घड़ियों के वक्त के मुताबिक टाइम। और इसके अलावा आप हमें वर्ल्ड वाइड सुन रहे हैं www.radiosangam.co.uk के ज़रिए और ऑफ कोर्स अप्स के ज़रिए आप हमें क्रिस्टल क्लियर सुन सकते हैं दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं। इंस्टाग्राम पे सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं, फेसबुक पे सुन सकते हैं और इसके अलावा DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए भी वेरियस शहरों में सुन सकते हैं। बहुत सारे रास्ते रबते तरीके आपके पास मौजूद हैं अगर आप सुनना चाहें तो। और अगर महफल में शिरकत करना चाहते हैं तो स्टूडियोज़ हॉटलाइन नंबर रहेगा 01484-817705 के रास्ते आप बात करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर बात नहीं करना चाहते दैट्स नो प्रॉब्लम, आपके लिए एक और ऑप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप के ज़रिए अपने मैसेज ऑफ डेडिकेशन यहाँ तक पहुँचा सकते हैं और फिर हम आपको प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। मौसम की बात करते चलें तो मौसम इज़ नॉट बैड एट ऑल, मौसम इज़ बिट क्लाउडी ओवरकास्ट, लेकिन सर्दी कोई नहीं है, बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार मौसम है। लेकिन एट द मोमेंट इट्स क्लाउडी। इस वक्त टेम्परेचर अबाउट 10-11 degrees, टॉप टेम्परेचर शुड बी अबाउट 17-18 degrees एज द डे गो बाई। लेकिन मोस्टली प्रेडिक्शन यही है कि ऑलमोस्ट क्लाउडी ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इसके बीच में सूरज भी निकलने की कोशिश करे। ये था मौसम का हालो हवाल। मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह सुबह के 10 बजे तक रहेगा और इस वक्त आपसे मुखातब है आपका अपना MH शदाई। और इस खूबसूरत कलाम को हमेशा की तरह नज़र किया था ब्रेडफोर्ड के दरीस भाई आपके लिए और शमशाद असलम साहब वालेकुम असलम आप भी हमारे संग संग हैं, आपके लिए भी यही कलाम था। ज़ाहूर हुसैन मुगल साहब आपके लिए भी यही कलाम था। मिस गफ़ार साहब आपके लिए भी यही कलाम था। ऑल द वे लेस्टर से अनीस दाऊद भाई आपके लिए भी यही खूबसूरत कलाम था। और जी हाँ, कमरान साहब आपके लिए भी, सदीक भाई अलीफेक से आपके लिए भी यही खूबसूरत कलाम था। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। और जी आप एक बहुत ही खूबसूरत शान मुस्तफ़ा मेराज की रात का वाक़या आपके लिए पेश करेंगे और यकीनन बहुत ही खूबसूरत समा खूबसूरत वाक़या है, गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। साबर भाई वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू इज़ वेल, आप भी हमारे साथ साथ हैं ऑल द वे इन पाकिस्तान अरनाला खुर्द से और आप तमाम सुनने वालों को सलाम कर रहे हैं। कुछ सुनहरी बातें, कुछ नसीहत वाली बातें जो कि आपके साथ मैं हमेशा सुबह सुबह शेयर करता हूं। कहते हैं जी, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है। साबर भाई, शमशाद भाई कहते हैं खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। और कुछ चमकते मोती हैं, कहते हैं सलामती हो उन नायाब लोगों पर जो बगैर किसी मफाद के जिंदगी में रोशनी बखेरते हैं। सलामती हो उन नायाब लोगों पर जो बगैर किसी मफाद के ज़िंदगी में रोशनी बिखेरते हैं। ये भी कितनी खूबसूरत बात। और ये चंद खूबसूरत जो बातें हैं मैं हमेशा की तरह कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर की जाएं। इन खूबसूरत बातों से और सबक आमोज़ बातों से बहुत कुछ इंसान
सीखता है बहुत कुछ मिलता है और फिर अगर इस पर हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अमल करने की भी कोशिश करें तो बड़ी फ़ायदेमंद बातें होती हैं। वैसे तो बातें तो बहुत सारी इंसान करता है लेकिन चंद ऐसी अकवाले जरी होते हैं या अनमोल मोती होते हैं, चमकते मोती होते हैं, कोई अच्छी नसीहत होती है तो उसको अगर आप शेयर करते हैं किसी और के साथ भी तो मेरे ख्याल से बड़े फ़ायदे की बातें होती हैं और इससे बड़ा सबक भी मिलता है और बड़ा फ़ायदा भी मिलता है। और चंद कुछ और बातें हैं, कहते हैं जी ये सुनहरी गोल्डन वर्ड्स हैं, घर का सरबरा पंखे की मानिंद होता है। शमशाद भाई, घर का सरबरा पंखे की मानिंद होता है, चलता रहे तो किसी को एहसास नहीं होने देता और अगर रुक जाए तो सबको पसीना आ जाता है। साबर भाई क्या कहने, घर का सरबरा पंखे की मानिंद होता है, चलता रहे तो किसी को एहसास नहीं होने देता और अगर रुक जाए तो सबको पसीना आ जाता है। कितनी खूबसूरत बातें हैं। और जो लोग उम्मीदें अपने रब से रखते हैं, साबर भाई जो लोग उम्मीदें अपने रब से रखते हैं वो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होते। जो लोग उम्मीदें अपने रब से रखते हैं वो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होते, विच इज वेरी ट्रू। और एक और कुछ नसीहत आमोज बातें हैं। इकबाल साहब ने क्या कहा, बात सजदों की नहीं खलूस नीयत की होती है। इकबाल, बात सजदों की नहीं खलूस नीयत की होती है। इकबाल, अक्सर लोग खाली हाथ लौट आते हैं हर नमाज के बाद। बड़ा ब्यूटीफुल अल्लामा इकबाल साहब ने कहा, बात सजदों की नहीं खलूस नीयत की होती है। इकबाल, अक्सर लोग खाली हाथ लौट आते हैं हर नमाज के बाद। बड़ी खूबसूरत बातें हैं और आपके साथ मैंने शेयर की, यकीनन आपको भी अच्छी लगी होगी। चलिए मेराज के वाक्य की तरफ आपको लेके चलते हैं, यकीनन आप सबको ये कलाम बहुत अच्छा लगेगा।

0: आपका साथ ही हमारे हर...
1: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत कलामों भी आप सुन रहे थे, बहुत सारे दोस्तों को पसंद थी, बेहद शुक्रिया। शमशाद असलम साहब, आपको भी ये कलाम अच्छा लगा। नवीद भाई ऑल द वे इन स्वीडन से, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू इज़ वेल, आपके लिए भी यही खूबसूरत कलाम था। और साबर भाई ऑल द वे इन पाकिस्तान से, आपके लिए भी यही कलाम था। नीज दाऊद भाई, आपके लिए भी यही कलाम था। अदरीस भाई ब्रेडफोर्ड से, आपके लिए भी यही कलाम था। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द टेलीफोन, मैं उसको देख रहा हूँ क्योंकि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ इंटरनेट का मसला शायद चल रहा है बाहर कहीं, तो इसको भी साथ साथ मैं चेक करता हूँ कि मसला क्या है जी, क्या हो गया है, तो देखते हैं कि क्या होता है। अब आपको लेके चलेंगे, ये थे मेरे इंट्रो, और इसके बाद आपको पता है कि हम फॉर्मेट प्रोग्राम का बदल देते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत, फिल्म का नाम बलमा, 1992 की ये फिल्म है, और आवाज़ें आप सुनेंगे, कुमार सानू का साथ देंगी आशा भोसले। तो चलिए मिल के सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को, और अगर आपकी टेलीफोन लाइन नहीं मिल रही है तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है मैसेज और डेडिकेशन के ज़रिए अपने मैसेज स्टूडियो तक पहुंचा सकते हैं। 07444202155 के रास्ते आप अपने मैसेज और डेडिकेशन स्टूडियो तक पहुंचा सकते हैं, फिर हम आपको प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे।

0: यूं भी तेरा इंतजार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। कुमार सानू का साथ दिया था साधना सरगम और फिल्म का नाम था दीवाना। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी अपने दौर की और इसके गीत भी बड़े ही प्यारे थे। और अब एक और खूबसूरत गीत की तरफ आपको लेके चलेंगे, क्योंकि मैं ज़रा देख रहा हूँ, टेलीफोन को भी साथ चेक कर रहा हूँ क्योंकि कुछ गड़बड़ है। लेकिन यह है कि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं सरकार, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोशिश ही कर सकते हैं और कोशिश करने से बाज़ुकात मसले हल हो जाते हैं। तो चलिए जी, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिलहाल चलते हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक सुन लेते हैं।
1: Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
2: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977317760
3: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
4: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है? क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं? तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए। वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं, वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें। अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं। वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं, प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं। आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड, मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर, 633 हालिफैक्स रोड, लिवरसेज, WF15 8HJ। नंबर मत भूलिएगा 07977317760।
5: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस, वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस।
6: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484549947. That's 01484549947.
7: जागते रहना, जागते रहना।
8: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
7: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी।
8: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप!
7: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
8: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
7: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU, ओपनिंग सून, टेलीफोन 01484542700।
9: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
10: Are you peeping, Tom?
9: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
11: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
10: Come up and see me sometime.
9: Case closed.

जी सामीन, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे और ये गीत तो मैं चलाने वाला नहीं था लेकिन चल पड़ा है क्योंकि हम साथ साथ टेलीफोन लाइन भी देख रहे थे। अल्लाह भला करे जी उनका जिन्होंने हमारी मदद की साथ साथ, और टेलीफोन लाइन इज़ वर्किंग नाउ आई थिंक। तो अब आप ट्राई कर सकते हैं, अगर टेलीफोन करें तो फिर पता चल जाएगा आपको कि टेलीफोन लाइन शुड बी बैक टू नॉर्मल आई थिंक, और देखते हैं क्या होता है। बेहद शुक्रिया जी उनका।

दिल के चैन चैन आ जाए दुआ कीजिए दिस इज नॉट ओरिजिनल ये मिक्स वर्जन वाले भी क्या कहें इनको संगीत का सत्यानाश ही कर देते हैं चलो कम से कम जो सोए हुए हैं अभी तक जिनकी आंखें बंद हैं ये गीत सुनकर गालबन उनकी आंखें खुल जानी चाहिए वैसे आपको पता दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी गीत बहुत प्यारा है लेकिन ओरिजिनल सुनने का मजा है नॉट रीमिक्स

यही गीत हमें ले चलेगा 8 बजे की नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की जानब न्यूज़ के बाद होगी छोटी सी ब्रेक और ब्रेक की दूसरी तरफ मैं आपका इंतजार करूंगा 01484817705 मेरे दिल के चैन दुआ कीजिए चैन आ जाए मेरे दिल को भी

0: 107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना रेडियो संगम।
1: Yes, I mean, welcome back after the 8 o'clock news and commercial break. Khush amdeed jiyanu. Behad shukriya tamam doston ka, tamam behno aur bhaiyon ka. Aap mera saath de rahe hain. Aur main koshish kar raha hoon ki acche-acche geeton se aapka manoranjan kiya jaye. Aur ab hum program ke dusre hisse mein pahunch chuke hain. Aur is waqt studio ki ghadi ke waqt ke mutabik janab subah ke just gone 5 minutes past 8. यानी 5 मिनट पास्ट 8 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के वक्त के मुताबिक। सुल्ताना साहबा, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी हमारे साथ साथ हैं, आपकी डेरों दुआओं का भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, और हमारी दुआएं भी हमेशा आपके साथ हैं, थी और इंशाल्लाह रहेंगी। और अब चलते हैं एक और खूबसूरत सदाबहार गीत की जानब। और मिसेस गफार साहबा, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी हमारे संग संग हैं जी, ए से लेकर जेड तक, यानी कि सुबह से लेकर सात से लेकर मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सिर्फ मेरा ही साथ नहीं देती हैं, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं, जब भी इनको मौका मिलता है ज़रूर हाजिरी लगाती हैं और प्रोग्राम में शामिल होकर प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करते हैं। ये हमारे बहुत पुराने सुल्ताना साहबा हैं, मिस गफार साहबा हैं, ये लोग बहुत हमारे पुराने डेडिकेटर लिसनर हैं जो कि हमारा साथ बरसों से देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। मैं दुनिया भुला। फिल्म का नाम आशिकी 1990 की बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी अपने दौर की, और इसके सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह थी कि इसके गीत बहुत ही खूबसूरत थे। कुमार सानू का साथ देंगी अनुराधा पौडवाल।

जी मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बहुत ही खूबसूरत गीत था। सदाबहार आवाज़ें कुमार सानू और साधना सरगम, और फिल्म का नाम था आशिकी। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी और इसके गीत ही बड़े पॉपुलर हुए थे अपने दौर में। और बेहद शुक्रिया हमारे भाई जनाब किंग साहब एकमंड वाइक से, आपने भी प्रोग्राम में शमूलियत की और आपको गीत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए भी हमारा शुक्रिया कबूल कीजिए। और आपने भी एक गज़ल और एक गीत की रिक्वेस्ट की है हमारे तमाम साथियों, हमारे जितने भी हमारे प्रेजेंटर और पेशकार हैं उनके लिए, और आप सबको सलाम भी कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। इस गीत के बाद आपकी गज़ल और फिर उसके बाद आपका गीत ज़रूर पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।

दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। बहुत ही खूबसूरत सदाबहार गीत अभी आप सुन रहे थे। सलमागा वाज द बेस्ट, सलमागा का बेस्ट गीत था ये, और इसकी ज़बरदस्त फिल्म थी नेका, और इस फिल्म से इनको बहुत ज़्यादा पज़ीरा राय मिली और बड़ा ज़बरदस्त करेक्टर इन्होंने किया था उस फिल्म में, चंचल और ब्लू आंखों वाली सलमागा। खूबसूरत आवाज़ की मालिक और खूबसूरत अदाकारी इन्होंने, खूबसूरत अदाकारी के जोर दिखाए थे उस फिल्म में। और मिस्टर गफार साहब ये गीत आपके लिए था, और चौधरी मुख्तार साहब एकमन वाइक से आपका भी बेहद शुक्रिया, आपके लिए भी यही खूबसूरत गज़ल थी। और अदरीस भाई ब्रैडफोर्ड से माजरत के साथ कि आपसे बात नहीं हो सकी, मैं दूसरी लाइन पर मौजूद था, मुझे पता है कि सुबह ज़रा टेलीफोन लाइन में थोड़ी गड़बड़ थी, अभी लाइनें ठीक हो गई हैं, आप दोबारा फ़ोन करेंगे तो आपसे बात करके बेहद खुशी होगी, लेकिन ये है कि प्रोग्राम में आपको शामिल कर लेते हैं। अब चलते हैं जी हमारे भाई किंग साहब एकमंड वाइक से, वो इस गज़ल को सुनना चाहते हैं तमाम सुनने वालों के लिए, और ऑफ कोर्स हमारे तमाम साथियों के लिए, हमारे तमाम प्रेजेंटरों के लिए ये खूबसूरत गज़ल सुनना चाहते हैं। आवाज़ है गुलाम अली की।

चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है. व्हाट अ ब्यूटीफुल गजल. द लेजेंड गुलाम अली की खूबसूरत आवाज में पसंद थी हमारे भाई किंग साहब बैकमंड वाइक से. और शमशाद असलम साहब आपको भी ये गजल पसंद आई. मिस्टर गफार साहब आपको भी ये गजल पसंद थी. आपकी नजर भी किए देते हैं. वाकई ये गजल बड़ी खूबसूरत थी और फिर उस पे खूबसूरत आवाज द लेजेंड गुलाम अली की. और पेशकश आपके अपने रेडियो संगम की पेशकार आपका अपना एम एच शदाई. और आपका दूसरा गीत आ रहा है किंग साहब, ये भी बहुत ही पुराना गीत है. चलिए मिलके सुनते हैं. फिल्म का नाम बड़ी बहन. चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है.

यहाँ सदाबहार गीत, फिल्म का नाम बड़ी बहन पसंद है किंग साहब की। मिस्टर गफार साहब, आपको भी गीत अच्छा लगा, आपकी नज़र भी किए देते हैं। नवीद भाई स्वीडन से, आपके लिए भी यही गीत था, बहुत ही पुराना और सदाबहार गीत, लता मंगेशकर का साथ दिया था हेम लता ने।

जी हम बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे और आवाज़ आपने सुनी आशा भोसले की। मिस्टर गफ्फार साहबा, ये गीत खसूसी तौर पे आपके लिए था। और जी हाँ, अब 1991 की फिल्म साजन, जिसके सितारे थे संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित, तुमसे कुमार सानू का साथ देंगे अलका याग्निक।

दिल पागल दिल मेरा किसी ने क्या खूब कहा हमने हर जख्म को हंसते हुए सहना सीखा हमने हर जख्म को हंसते हुए सहना सीखा दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना सीखा जिसने छोड़ा हमें बीच राह में तना करके रात के बाद भी जिसने छोड़ा हमें बीच राह में तना करके हमने उस शख्स को भी दिल से निकालना सीखा रात के बाद भी आती नहीं अब कोई सहारा हमने अंधेरों में जीना सीखा कोई अपना ना रहा सब ने किनारा कर लिया हमने तन्हाई को भी अपना ही बनाना सीखा दिल के कागज पे लिखे दर्द मिटाए न गए हमने अश्कों से ही तकदीर बदलना सीखा

0: तेरा
1: मोहसिन नकवी की खूबसूरत शायरी
0: आवारगी
1: और सदाबहार आवाज द लेजेंड गुलाम अली
0: आवारगी
1: साम ज्यूसबरी से आपका भी बेहद शुक्रिया आप भी हमारे साथ साथ हैं आपकी डेरुन रवाओं का भी शुक्रिया

तूफाने गम ने हमको डराया तो क्या हुआ वो जिसके वास्ते हमने दुनिया को छोड़ दिया उसने आज हमको बुलाया तो क्या हुआ जीने की आरजू में कटे जा रहे हैं दिन किस्मत में अपना रंग दिखाया तो क्या हुआ

मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था आशकीन। हमारी साथी प्रेजेंटर नादिया जी, बेहद शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू इज़ वेल। कहती हैं जी नाइस सॉन्ग्स। चलिए जी आपकी नज़र किए देते हैं क्या हाल है जनाब के। जी हाँ, मेरा हाल बिल्कुल ठीक ठाक है। नादिया जी आप सुनाएं कैसी हैं। बेहद शुक्रिया आपको, गीत अच्छा लगा। आपकी नज़र किए देते हैं इसी दिल के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत गीत यसुदास की आवाज़ में। यकीनन आपको अच्छा लगेगा।

कोई खामोश हो जाए तो हम तड़प जाते हैं फराज। हम खामोश हुए तो किसी ने हाल तक न पूछा। टूट सा गया मेरी चाहतों का वजूद, अब कोई अच्छा भी लगे तो हम हजार नहीं करते।

काश वक्त के सराब में लगे तुझे मोहब्बत की प्यास, काश वक्त के सराब में लगे तुझे मोहब्बत की प्यास, और तू तड़प के मांगे मुझे पानी की तरह। सुना था मोहब्बत मिलती है मोहब्बत के बदले, हमारी बारी आई।

यशुदास की बहुत ही खूबसूरत आवाज में अभी आपने दिल के टुकड़े के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुना और अब चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल की जानब द लेजेंड गुलाम अली की आवाज में और यही गजल हमें ले चलेगी 9 बजे की नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज की जानब। इसके बीच में गजल के बाद होगी ब्रेक और ब्रेक हमें ले चलेगी 9 बजे की ब्रेक की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। मेरे शौक का नहीं एतबार तैनू एवं लड़न बहाने लब

0: શું તમે ધૂમ્રપાન છોડવાનું વિચારી રહ્યા છો? કીર્તિસ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ તમને દરેક પગલા પર ટેકો આપવા માટે કહી છે. જો તમે ધૂમ્રપાન છોડવા માટે તૈયાર છો તો અમારી મૈત્રીપૂર્ણ ટીમ મદદ કરી શકે છે. અમે ધૂમ્રપાનની તૃષ્ણાઓ ઘટાડવા અને છોડવાનું સરળ બનાવવા માટે પેચ, વેપ્સ અને ગમ સહિત મફત ધૂમ્રપાન બંધ કરવા માટે સપોર્ટ પ્રદાન કરીએ છીએ. ધૂમ્રપાન છોડવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થાય છે, તમારા પરિવારનું રક્ષણ થાય છે અને ખરેખર મહત્વની બાબતો માટે તમારા પૈસા બચાવે છે. અને અમારા સમર્થનથી તમે એકલા ધૂમ્રપાન છોડવા કરતા સફળતાપૂર્વક છોડવાની શક્યતા 3 ગણી વધારે છે. શરૂઆત ઝડપી અને સરળ છે. આજે જ kaklis wellness service.co.uk ની મુલાકાત લો અથવા 01484-234-0095 પર કોલ કરો. કીર્તિસ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ કાયમ માટે છોડી દો.
1: ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका. कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी, ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश.
2: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स, यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड, ड्यूसबरी, वेस्ट यॉर्कशायर, WF13 2HA. टेलीफोन 01924 466 771. Mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
3: Kya aap अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
4: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
5: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
6: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
4: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
3: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
4: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
7: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
6: Abhi call kijiye 01484-549947.
3: Training will be provided.
8: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
9: Are you peeping, Tom?
8: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
10: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
9: Come up and see me sometime.
8: Case closed.
11: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
12: Our new centre at 9. The US president says Iran is asking for things he can't agree to in order to end the war. Donald Trump says he's unhappy with proposals put forward by Tehran and claims the regime is in disarray.
13: They're not able to get along with each other as leaders. They don't know who the leader is. Their military has been defeated. If we left right now, it would take them 20 years to build back that country. But we're not satisfied at this moment.
12: Meanwhile, 5,000 US troops are preparing to withdraw from Germany as Donald Trump and the German Chancellor continue to exchange insults. Rivals to Keir Starmer are reportedly preparing leadership bids. The Guardian is claiming Greater London Mayor Andy Burnham is looking to return to the Commons so he can launch his campaign. The government's resisting calls to ban pro-Palestinian marches in the light of recent anti-Semitic attacks. The Prime Minister has called for people taking part to call out any racist language. 2 people have been stabbed during a night of violence in Southend. Around 30 people were involved in fights in the city. Dads are protesting in London today, calling for an end to what they describe as the UK's broken paternity leave system. They say it's not fair that most fathers are entitled to just 2 weeks of paid leave. Campaigner Elliot Ray's daughter was born with an infection. He says a fortnight just wasn't enough.
14: In that period of the months and the year after my daughter's birth, both my wife and I struggled quite badly with our mental health. I was getting anxiety, insomnia, and eventually I was diagnosed with PTSD.
12: A government minister says a full review of parental leave and pay is underway. And in sport, Leeds took a big step closer to avoiding Premier League relegation with a 3-1 victory over Burnley last night. They're up to 14th and 9 points clear of the drop zone, while their opponents are already heading to the Championship. That's the latest. I'm Charlie Maggs.
15: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
16: Fast Track Solutions, supporting communities around the globe.
17: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
18: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
19: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखो तो रखो कहां
20: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewellers.
3: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.
21: Jagte rehna. Jagte rehna.
22: So jaunga to kya hoga bhai?
21: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka aur iske saath ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
22: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
21: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
22: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
21: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
23: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising
9: Are you peeping Tom
23: Sadly it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
10: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
9: Come up and see me sometime.
23: Case closed.
24: Yes, I mean, welcome back after the news, 9 o'clock news, and the time is just after 9:05. जी हाँ, और अब हम प्रोग्राम के आखिरी और तीसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। खुशामदी जी आनु, आपका स्वागत है, खैर मकदम है, और अब चलते हैं इस प्रोग्राम के आखिरी और तीसरे हिस्से का पहला गीत। ये जा रहा है All the Way in India, जसी साहबा, आपकी पसंद, आपकी नजर।

फिल्म का नाम भी यही था, रब ने बना दी जोड़ी तुझ में रब दिखता, और पसंद थी ऑल द वे इन इंडिया जैसी सबा, आपकी पसंद आपकी नज़र, बेहद शुक्रिया आपका। और ब्रेडफोर्ड से जनाब महबूब इलाही साहब आप भी हमारे साथ साथ हैं, बेहद शुक्रिया आपकी, ढेरों दुआओं का भी और आपके लिए भी ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे।

0: करते हैं जमीन देख लेते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कोई मौजूद है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं जनाब
0: क्या हाल है सरकार कैसे हैं आज तो आप जनाब चेकोस्लोवाकिया बराए रास्ते आए हैं बड़े घूम घुमा के आए
1: देख लीजिए ऐसे ऐसे नाम है ऐसे ऐसे नाम है जो कम कम सुनने को मिलते हैं वो भी आपके सामने आ रहे हैं वैसे कितनी मजे की बात है ये
0: देख रहे हैं जी ये रेडियो संगम का कमाल है हमारा कोई कमाल नहीं है
1: बस्ती रेडियो संगम के बड़े कमाल हैं जी वो क्या कहते हैं कि कमाल गिनवाने शुरू करें तो फिर कालर की जो पीछे लाइन लगी हुई है ना उनको मामला होगा ये भाई ये क्या बातें शुरू हो गई हैं क्या मामला चल पड़े हैं
0: जी और सुनाएं सब ठीक ठाक
1: अरे बड़ा ही जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है और बड़ा ही खूबसूरत सा गीत जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा था कि कब तलक शम्मा जली याद नहीं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद नहीं रहती उसी पे मुझे एक दो बात याद आ गई कि जरा सी बात पे नम दीदा हुआ करते थे जरा सी बात पे नम दीदा हुआ करते थे हम भी क्या सादा पेचीदा हुआ करते थे
0: बहुत खूब जबरदस्त
1: और तुझसे पहले भी मेरे राज थे एक शख्स के पास और तुझसे पहले भी मेरे राज थे एक शख्स के पास फर्क इतना है कि पोशीदा हुआ करते थे
0: जबरदस्त जबरदस्त
1: और हमें अब लगता तो नहीं है लेकिन हमें अब लगता तो नहीं है लेकिन शिदाई साहब हम कभी उसके पसंदीदा हुआ करते थे
0: नहीं जी अभी भी है अभी भी है
1: ये बस वो जो आपने गीत चलाया था बड़ा ही खूबसूरत था शायरी बड़ी अच्छी है म्यूजिक अच्छा है और इसमें सभी चीजें अच्छी हैं और ये जो 90s के गाने हैं ना कि हम जब भी सुनते हैं ना हमें यही लगता है कि ये गाना कल हमने सुना है
0: बेशक
1: बड़ी खूबसूरती के साथ उनकी शायरी उनके लिरिक्स जो है और उनका म्यूजिक जो है सभी कुछ लाजवाब होता है
0: जी।
1: और सलाम कहना चाहूंगा जनाब आपके तमाम रेगुलर कॉलर्स को और लिस्नर को जो खामोशी से सुनते हैं
0: जी।
1: और हमारे किंग साहब जो हैं वो भी आजकल जनाब रेगुलर हो गए हैं बड़ी खूबसूरत हाजिरी होती है इनकी भी के किसी के नाम गीत कर रहे होते हैं
0: जी।
1: उनको भी स्पेशल सलाम है और साबिर भाई समीदा जी शकील भाई नवीद भाई और इंडिया से जो आती हैं साहिबा जस्सी साहिबा इन सबको सलाम है और गजल जनाब जो मैं आपके लाया हूँ कि जो तोबा कर गए होते तो मर गए होते भाई साहब ये तमाम सुनने वालों के लिए एक स्पेशली कलाम है कि जो तोबा कर गए होते तो मर गए होते कि हम सुधर गए होते तो मर गए होते और बचा लिया है हमें इश्क नाशनासी ने बचा लिया है हमें इश्क नाशनासी ने किसी पे मर गए होते तो मर गए होते
0: बहुत खूब
1: और भला हुआ कि पलट आए बीच रस्ते से भला हुआ कि पलट आए बीच रस्ते से अगर उधर गए होते तो मर गए होते
0: बहुत खूब
1: और उठा के सर गए मक्तल में और शहीद हुए
0: हाय हाय
1: और उठा के सर मक्तल में गए तो शहीद हुए झुका के जो सर गए होते तो मर गए होते
0: जबरदस्त
1: और हमें ये पांव का चक्कर है जिंदा रखे हुए
0: शिदाई
1: साहब हमें ये पांव का चक्कर है जिंदा रखे हुए कहीं पे ठहर गए होते तो मर गए होते और रुका हुआ है तेरे इंतजार का मौसम
0: वाह जी वाह
1: रुका हुआ है तेरे इंतजार का मौसम ये दिन गुजर गए होते तो मर गए होते और कभी ना आने दिए हमने आंख में आंसू और कभी ना आने दिए हमने आंख में आंसू ये जाम अगर भर गए होते तो मर गए होते और सड़क पे रात गुजारी नशे की हालत में सड़क पे रात गुजारी नशे की हालत में जो घर गए होते तो मर गए होते जो तोबा कर गए होते तो मर गए होते और हम सुधर गए होते तो मर गए होते थैंक यू शिदाई साहब वैसे ये बात यही है कि अगर सुधर गए होते तो फिर मर गए होते यही बात
0: सही है जी सही है जबरदस्त जबरदस्त
1: और इसमें जो स्पेशली मुझे लगा कि आपके नाम जो शेर था कि हमें ये पांव का चक्कर है जिंदा रखे हुए और कहीं पे ठहर गए होते तो मर गए होते, कि इंसान जब कहीं पे रुक जाता है ना तो फिर वो समझो बस मामला खत्म है। ये पांव का चक्कर ही है जनाब कि जो इंसान को जिंदा रखे हुए है।
0: बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत शायरी, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज, बहुत सारे लोग माशाल्लाह आपको दाद दे रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, सेहत और तंदरुस्ती से नवाजे।
1: बेहद शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। ये थे जनाब हमारे साथी प्रेजेंटर शमशाद असलम साहब, ऑल द वे इन पाकिस्तान गुजरात से और पाकिस्तान रेडियो संगम के स्टूडियो से। बहुत सारे प्रोग्राम आजकल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सराह रहे हैं इनके प्रोग्रामों को और बहुत सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं। और इसी तरह जनाब प्यार नछावर करते रहें। और अब देखते हैं लाइन पे अमीदा साहबा, मुझे लगता है आगे इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हैं ब्रदर?
0: मैं ठीक हूँ जी। आप रेडियो ना सुने ना, जरा मेरी बात भी कभी सुन लिया करें।
2: I'm so sorry। जी हाँ सुन रही थी, वो जबरदस्त आए थे ना अभी
0: शमशाद
2: असलम। मैं असलम क्यों पहले कह देती है पता नहीं।
0: कोई बात नहीं जी, एक ही बात है शमशाद कह दें असलम कह दें, बात एक ही है, वो समझ जाते हैं कि फिर
2: हम
0: कभी कभार
2: को याद कर रहे हैं
0: हो जाता है।
2: You won't believe which poet I've got today.
0: जी.
2: Going all the way to early 19th century. In fact, 18th century में देख रही हूँ यहाँ.
0: वाह जी वाह.
2: Poet हैं, oh my God, poet है दाग.
0: हाय हाय.
2: और उनकी, he was born in 1831 from what I see.
0: Right.
2: And he died in 1905.
0: जी.
2: Oh, I didn't realize that. 1831 के poet थे. My goodness. कहते हैं, we all know this one actually. तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था?
0: बहुत खूब.
2: ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे. तुम्हें भी याद है कुछ? तुम्हें भी याद है कुछ? ये कलाम किसका था?
0: बहुत खूब.
2: ये कलाम किसका था? रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा. मुकीम कौन हुआ मकाम किसका था?
0: बहुत खूब.
2: मुकीम कौन हुआ मकाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम सलाम किसका था? ना था रकीब तो आखिर वो किस नाम किसका था? गुजर गया वो जमाना कहूँ तो किससे कहूँ? गुजर गया वो जमाना कहूँ तो किससे कहूँ? ख्याल दिल को मेरे सुबह व शाम किसका था? ख्याल दिल को मेरे सुबह व शाम किसका था? हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला? हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला? ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था?
0: बहुत खूब.
2: वो गुलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल गज़ल, इज़न्ट इट?
0: जबरदस्त.
2: काफी लोगों ने इसे गाया भी है आई थिंक.
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
2: जी हाँ जी,
0: जबरदस्त.
2: अच्छा, थैंक यू सो मच.
0: जबरदस्त.
2: मैं चली
0: बहुत खूब बड़ा, बहुत ही प्यारी शायरी थी और बड़ी पुरानी थी, लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग उन्हें पसंद भी की है। बेहद शुक्रिया अमीदा साहबा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स अ लॉट। ये थी अमीदा साहबा, अमीदा ना साहबा, ऑल द वे इन लंदन से। खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अंदाज, और आज जो इन्होंने पोइट्री सुनाई, शायरी सुनाई, बड़ी पुरानी थी दाग की, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद आई है।

सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं सिर्फ फर्ज अदा करना है, लोग कहते हैं सिर्फ फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफर न कर दे इकबाल, तेरे सजदे कहीं तुझे काफर न कर दे इकबाल, तो झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है।

0: जी हाँ, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रेडफोर्ड से महबूब इलाही साहब, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई।
1: अस्सलाम,
0: क्या हाल है सरकार, कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है, कैसे हैं? ठीक है,
0: ठीक ठाक जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या लाए हैं?
1: आज शायर है ये जैसे करना चाहेंगे सब सामीन के
0: जी,
1: फिल्म में भी दिए गए, तो अभी आए शमशाद साहब, हमीदा जी आई और जितने भी सामीन सभी के नाम करना चाहेंगे, सभी प्रेजेंटर के भाई जंगीर हैं, मास्टर महमूद हैं, भाई शकील साहब हैं और साबर भाई हैं, और क्या इंडिया से आ रही है, क्या नाम उनका, जस्सी साहब
0: जी,
1: उनके नाम और आपके नाम
0: जी।
1: दिखते हैं शायद इस तरह लिखता है, खामोश है नजारे और मुस्कुरा दो, खामोश है नजारे एक बार मुस्कुरा दो, हैं ये बहारें हमें सिखा दो,
0: बहुत खूब
1: हैं ये बहारें हंसना हमें सिखा दो, पड़ी रहेंगी ये पर्वतों की राहें,
0: बहुत खूब
1: पड़ी रहेंगी ये पर्वतों की राहें, खुली रहेंगी वादियों की बाहें,
0: बहुत खूब
1: खुली रहेंगी वादियों की बाहें, तक झुकी ये नजरें हंसकर दो, तक झुकी ये नजरें हंसकर मत तुम उठा दो, खामोश है नजारे और मुस्कुरा दो,
0: बहुत खूब
1: है नजारे एक बार को छू रही है ये झूमती घटाएं, को छू रही है ये झूमती घटाएं, हैं इलते जाए ये शाम की हवाएं,
0: बहुत खूब
1: को छू रही है ये झूमती घटाएं, हैं इलते जाए ये शाम की हवाएं,
0: बहुत खूब
1: ऐसे गैसों का आंचल जरा हटा दो, ऐसे गैसों का आंचल जरा हटा दो, खुश है नजारे खुश है नजारे और मुस्करा दो,
0: बहुत खूब
1: हैं ये बहारें हमें सिखा दो,
0: जबरदस्त
1: हैं ये बहारें हंसना सिखा दो,
0: बहुत खूब, बहुत शुक्रिया महबूब भाई, अपना ख्याल रखिए,
1: इतना ही तो, बड़ी मेहरबानी,
0: थैंक्स अल्लाह। ये थे जनाब महबूब इलाही साहब, ऑल द वे इन ब्रेडफोर्ड से, बेहद शुक्रिया आपका।

समय बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे, सलमागा का साथ दिया था द लेजेंड मेहदी हसन ने, और ये अगली गजल जा रही है ऑल द वे इन हकमंड वाइक से, चौधरी मुख्तार साहब आप भी हैं, आपके साथ भट साहब मौजूद हैं और आपके साथ किंग साहब भी हैं, तीनों दोस्त बैठे हुए हैं अपने काम काज में भी मसरूफ हैं और रेडियो संगम की नशियात से भी महसूस हो रहे हैं। तो चलिए जी, बहुत ही खूबसूरत गज़ल और खलील हैदर की आवाज़ में मिलकर सुनते हैं।

0: शहरी।
1: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे खलील हैदर की आवाज में, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां। और पसंद थी हमारे जनाब चौधरी मुख्तार साहब ऑल द वे इन पाकिस्तान एकमंड वाइक से, और उनके साथ बट साहब थे और किंग साहब। और आप तमाम दोस्तों को, तमाम तीनों दोस्तों को ये गजल बहुत पसंद आई। और अमीदा जी आपको भी ये गजल पसंद आई, आपके नाम भी किए देते हैं। और आपका कहना है जी दैट्स वाज माय फेवरेट गजल। तो चलिए जी, अब प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा है। बस मेरा और आपका साथ दोस्तों यहीं तक था। बेहद शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तमाम बहन और भाइयों का। अगर जाने प्रोग्राम मुझसे जाने या अनजाने में कोई गलती सरजद हो गई हो तो बड़ा या छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा, सांसू ने मेरे साथ बेवफाई ना की, तो कल सुबह एक बार फिर 7 बजे एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, अगर हो सके तो इस नाचीज़ को अपनी नेक दवाओं में ज़रूर याद रखिए। तब तक के लिए मेरा और आप सबका अल्लाह ने के बान एंड बाय।

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ
3: ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਕਿਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ
2: ਓ ਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਡਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ
3: ਹੈ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ
2: ਖਾਦਮ ਸੁਪਰ ਸੇ ਬਰਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤਾਂ 100% ਦਲਾਲ ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ Chicken, lamb, beef, free-range chicken, organic chicken, hadiyala gosht, har kisam da boneless, gurde, kaleji, batere, taza machli, desi murgi, balati kukad, siri paaye, bas banda liaye, pakaye te khaye, mehmana nu bulaye te sawab kamaye.
3: ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ
2: ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
3: ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ
2: ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆ ਮੌਲਾ
4: ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪ ਜਾਈਏ ਹਾਜੀ ਸਰਵਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਖਾਦਿਮ ਸੁਪਰ ਸੇਫ 1 ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਬਰਕਵੀ ਹਰਸਫੀਲਡ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 9 ਟੂ 7 ਐਂਡ ਸੰਡੇ 10 ਟੂ 6 ਐਚਐਮਸੀ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਹਲਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 01484456257 ਦੈਟਸ 01484456257
5: Bobby Fashion is all set to make your special day remarkable. Specializes in bridal wear, grooms wear and children's clothing for all occasions.
6: Visit karein Bobby Fashion. Mention karein Radio Sangam ka naam aur paye 100 pound ki chhoot on bridal wear.
5: Also more discounts are available on bridal wear with party wear packages. Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
6: Amazing Asian clothing also made to measure. Orders with perfect fitting.
5: Special offers for Eids are also available now with a large collections of matching jewellery, bangles and much, much more. Bobby Fashion at 312A Bradford Road, Huddersfield HD1 6LQ.
6: Call 01484 769926.
5: Bobby Fashion, fashionable living.
0: And now with a free gift with every purchase.
7: Kya aap अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
8: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
9: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
10: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
11: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
7: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
11: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
12: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
10: Abhi call kijiye 01484-549947.
7: Training will be provided.
13: Chai chahiye to phir?
14: Go chai.
13: Kabhi bhi chahiye to phir?
14: Go chai.
13: Din ko chahiye, raat ko chahiye, har waqt chahiye to phir?
14: Go chai.
15: Need a proper chai fix for when you're on the go? Skip the queue and head to Go Chai. Serving the people's favourite, karak chai, creamy Kashmiri chai, coffee and much more. Made fresh at the touch of a button. Perfect taste. Perfect temperature and hard to beat on price. Available 24/7. Find Go Chai at your local petrol station. For exact locations, visit gochai.co.uk. Go Chai, proper chai, anytime.
0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
16: The new centre at 10. 5,000 American troops are preparing to withdraw from Germany. The order has come from Donald Trump after he was criticised by the German Chancellor over his handling of negotiations with Iran. The US President has threatened to blast the hell out of the country if a deal isn't reached. Esmail Baghai is a spokesman for Iran's foreign ministry.
17: The problem with the American side is that it is always expected to impose its maximum demands during negotiations and throughout the entire diplomatic process, pushing the other side to accept them.
16: It's understood Sir Keir Starmer could face a challenge to his leadership by senior Labour figures. Reports from two newspapers, The Guardian and The Telegraph, suggest Greater Manchester Mayor Andy Burnham and House Secretary Wes Streeting could be looking to unseat the Prime Minister. Millie Cook is the political correspondent for The Independent.
14: There is definitely briefing from their teams. Mm-hmm. Obviously, you also have briefings from opposition teams who want to make it look like they're traitorous. And I think there's kind of a bit of a political game behind the scenes.
16: Meanwhile, the Health Secretary has reportedly messaged Labour MPs to accuse lobby journalists of being on a fishing expedition. Police say no items of a suspicious nature have been found at the venue of a Peter Kay show following the arrest of a teenager. A 19-year-old is being held on suspicion of a bomb hoax offence after the arena in Birmingham was evacuated. Sir Keir Starmer says he wants to see tougher action taken against protesters using certain phrases at Gaza demonstrations following calls to ban them altogether. The Prime Minister told the BBC a whole-of-society response is needed to tackle anti-Semitism after two Jewish men were stabbed in North London this week. A man will appear in court later charged over a car bomb attack next to a police station on the outskirts of Belfast. No one was hurt after a delivery driver was forced to head to the site in Dunmurry. And Princess Charlotte is turning 11 today. William and Kate's daughter is third in line to the throne behind her dad and her older brother George. That's the latest. I'm Charlie Max.
18: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
19: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं? The Kirklees Council Wellness Service हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है। अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस, वेप्स और गम फ्राहम करते हैं, जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है। तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है। और हमारी मदद से आप तीन गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है। अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 kirkleeswellnessservice.co.uk। Kirklees Council Wellness Service, हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़ दो।
20: लानिका,
21: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। ये लानिका कौन है?
20: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो। आज मैं और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे।
21: अच्छा, लानिका वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती हैं?
20: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, उनका बुफे भी कमाल का है। और जानती हो, वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं।
21: वो पैसे खर्च करके आए होंगे।
20: कंजूस कहेंगे। उनका बुफे मंडे टू थर्सडे $22.99, फ्राइडे टू संडे $24.99, अंडर $10s $11.99 and under 4s free.
21: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए।
20: क्यों नहीं? वो है भी हमारे करीब Pelon New Road Halifax HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं। जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं।
22: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
23: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
24: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
25: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
26: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
27: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
28: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
12: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
10: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
27: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
29: आई हैव बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
30: आर यू पीपिंग टॉम?
29: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
31: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
30: Come up and see me sometime.
29: Case closed.

सभी सामीन को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूं कि उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा सलाम कबूल कीजिएगा मोहब्बतों भरा खलूस भरा उम्मीद के साथ कि जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। और आपसे मुखातिब है आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत। हमेशा की तरह एवरी सैटरडे प्रोग्राम होता है 10 से 12 तक, और 10:07 और 18 सेकंड हो गए, साथ रहेगा दोपहर के 12 बजे तक। 2 मई 2026 दिन है आज, हफ्ते का खूबसूरत सी सुबह, खूबसूरत सा वीकेंड आप सभी का साथ। शदाई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपनी खूबसूरत सी आवाज़ के साथ सुबह का आगाज़ किया है 7 बजे से लेकर आप तक। अब क्या टाइम हो गया जी, 10 बज गए, 3 घंटे, और आपने भी खूब उनका साथ निभाया। आप सभी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और शहदाई साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी खूबसूरत सा प्रोग्राम करने के लिए। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। वन ओ सेवन पॉइंट नाइन एफ एम और 94.7 FM पे दिलों को मिलाने वाला, सबको मिलाने वाला रेडियो संगम, सातों दिन 24 घंटे आपकी खुशियों में, आपके गमों में। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 1484817705 के जरिए आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर रहता है 07444202155। आपके पसंद के गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। साथ निभाने के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शमशेर असलम साहब, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथी पेशकार हैं, खूबसूरत सा प्रोग्राम करते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। पता नहीं वीक में कुछ 4-5 इनके शो होते हैं, यकीनन आज भी इनका शो होगा आफ्टरनून में, ज़रूर सुना कीजिएगा। खूबसूरत सी आवाज़, खूबसूरत सी पोएट्री, खूबसूरत सी कलेक्शन हमेशा की तरह। और सुल्ताना आपा, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपके लिए भी हमारी दुआएँ रहती हैं। और मिसेस गफार भी हमारे साथ साथ होती हैं, पता नहीं अब वो सो गई हैं। बड़े ध्यान से अपने भाई का प्रोग्राम सुनती हैं, लेकिन मेरी बारी आती है तो वो सो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मिसेस गफार आप इधर ही हैं। मिसेस गफार ने फौरन से बेल किया कि नहीं नहीं मैं जाग दी पई हैं, तो बिल्कुल जी जाग दे रहना भैन भाई हो तुसी। कितने सैरी का टाइम ना लंघ जाए, बल्कि मेरे प्रोग्राम का टाइम ना लंघ जाए। तो चलो जी, खूबसूरत से सोने सोने गीत आप सभी सामी के नाम करना चाहूँगी, यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। खूबसूरत सा प्रोग्राम का आगाज़ खूबसूरत से गीत के साथ, यकीनन आप सभी को अच्छा लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और पप्पू मोरा वाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, खूबसूरत सी दुआएं, खूबसूरत से फूल आपने भेजे, अल्लाह ताला इन फूलों की तरह आपको भी हंसता मुस्कुराता रखे आपकी खुशियों में, इसी तरह के फूल आपके घरों में, इसी तरह के फूल बिखरे रहें, यही हमारी दुआएं होती हैं। तो शमशेर असलम साहब कह रहे हैं जी जागते रहना, पता नहीं आगे की। तो चलें जी, जागते रहना बिल्कुल जी, बाद में बेशक सो जाना, लेकिन 12 बजे तक तो मस्ट आपका जागना है ही, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे और आप सो जाइए, कैसे हो सकता है। तो खूबसूरत से गीत सभी सामीन के नाम।

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

जी वेलकम बैक, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर सभी खूबसूरत समातों को। आप सुन रहे हैं रेडियो संगम की नशियात 107.9 FM और 94.7 FM पे।

हमीदा ना आज के लंदन से आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी और आपकी खूबसूरत सी दुआ के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप लंदन से साथ निभाती हैं, आपकी प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और शमशेर असलम साहब, आपने भी एक गीत का कहे, मैं ढूंढती हूँ, जैसे मुझे मिल गया तो मैं आपके नाम कर दूंगी। लेकिन इसके बाद एक खूबसूरत सा गीत है जो कि मेरी जानिब से आप सभी सुनने वालों के नाम होगा, तो पप्पू मोरा वाला आपके नाम भी आने वाला खूबसूरत सा गीत किया जाएगा, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। 1484817705 के जरिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। साथ निभाने के लिए आपका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मिसेज गफार, आने वाला गीत आपके लिए भी होगा। यकीनन आप भी अगर कोई गीत सुनना चाहती हैं तो बता सकती हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा दिया जाए। और जी क्या कहना था, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चलें ठीक है, अभी साथ साथ गीत सुनते हैं, साथ साथ बातें भी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मेरा फेवरेट सॉन्ग है, कल से मेरे दिमाग में ये गीत चल रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पसंद का गीत आप सभी के साथ शेयर करूं, आपके नाम करूं। थैंक यू सो मच जी साथ निभाने के लिए।

मुझे हंसी आ गई शमशेर असलम साहब, मैंने कुछ भी नहीं खाया। एक स्वीट थी मुंह में, वो ही नहीं खत्म हो रही थी। बहुत देर से उसको चुपाने की कोशिश कर रही थी कि खत्म हो जाए फिर मैं ऑनर जाऊं, लेकिन सुनने वाले जो है ना बहुत ही क्यामत की निगाहें, क्यामत के कान रखते हैं, क्या किया जाए। तो चलें जी, अब मेरी हंसी नहीं रुकने वाली, लेकिन चलिए खूबसूरत सा गीत है। मिसेस गफार को तो पसंद आया होगा। मिसेस गफार, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप लाइन पर रहिएगा, आपसे ज़रूर बात की जाएगी। और शमशेर असलम साहब, आपका गीत मुझे नहीं मिल रहा, आप मुझे कोई लिंक सेंड कर दें तो मैं कोशिश करूँगी।

बहुत ही खूबसूरत से गीत आप तक पहुंच रहे हैं आपके अपने रेडियो संगम से और नादिया जी हमारी साथी पेशकार आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वालेकुम सलाम जी आपने कहा जी एनी सॉन्ग फॉर मी प्लीज तो जी प्लीज वाली कोई बात नहीं हम इसलिए यहां पे आके बैठे हैं आप अपनी पसंद का गीत बताना चाहती हैं तो बता दीजिएगा नहीं तो फिर कोई भी गीत मैं आपके नाम कर दूंगी बल्कि अभी आने वाला गीत भी आपके नाम कर दिया जाएगा और शमशेर असलम साहब आपका जो गीत है स्टिल मुझे नहीं मिल रहा और आप तो खुद एक प्रेजेंटर हैं आप बताएं कि आपने सुना है पहले इस रेडियो पे है हमारे सिस्टम में तो फिर मैं मज़ीद कोशिश करती हूँ नहीं तो और कोई गीत बता दीजिएगा तो किंग साहब आपसे बात हुई हैकमेंट वाइक से बात करके बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह और आप सभी सुनने वालों को सलाम तो भी कह रहे हैं आपने दो गीत भी कहे हैं जो कि सभी के नाम करने हैं तो ज़रूर क्यों नहीं जी हम सभी के नाम कर देंगे तो चौधरी मुजफ्फर जी आप भी फ़ोन कर रहे थे लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि मैं दूसरी लाइन पर बिजी थी दोबारा फ़ोन कीजिएगा तो आपसे भी ज़रूर बात की जाएगी साथ ही रहिएगा सुल्ताना आपा आपकी खूबसूरत सी दुआ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बहुत ही प्यारी सी बहन है आपा है जी हमारी अल्लाह ताला इनको सलामत रखे आमीन सुमा आमीन आपकी दुआओं के लिए तो जो आने वाला गीत है लता जी की आवाज में सदाबहार गीत सदाबहार आवाज पसंद है किंग साहब जी हेकमन वाइक से आपकी और सभी सुनने वालों के नाम

बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जो कि आप सभी सभी के नाम किया यकीनन आप सभी को अच्छा लगा होगा किंग जी स्पेशली ये आपने सुनने के लिए कहा था तो आपकी पसंद का गीत आपके साथ साथ सब सुनने वालों के नाम कर दिया और जहांगीर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं ड्यूसबरी से जहांगीर जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपने एक गीत गाया तो आपकी पसंद का गीत आपके नाम जरूर कर दूंगी तो थैंक यू शमशेर असलम साहब इतना आप मेरे साथ जी उस वक्त से गाने का समझा रहे हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जरूर मैं गीत आपके नाम करूंगी साथ ही रहिएगा तो प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी हमारे साथ हैं रौद्रम से जी देखती हूँ जी कौन है चले मैं बाद में नाम उनका करती हूँ इधर सेव है एक नंबर तो दूसरा नंबर सेव नहीं है लेकिन चलें जी मैं ज़रूर उनका दूसरा नंबर भी इधर सेव कर लेती हूँ तो जहांगीर जी आपकी पसंद का गीत फ़िलहाल मैं आपके नाम करना चाहूँगी यकीनन ये वही गीत होगा जिसको आपने सुनने के लिए कहा अनुराधा की आवाज़ में और मिसेज़ गफ़ार आपकी पसंद के गीत भी ढूँढ रही हूँ बहुत जल्दी मिल जाएंगे तो आपके नाम भी कर दूँगी अब मैंने हंसना नहीं है अब बस गीत चलाने हैं ढूँढने हैं यही काम है मेरा तो वो बस अब तो स्वीट भी ख़त्म हो गई है लेकिन मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि कैसे पता चल जाता है दूसरों को इतनी जल्दी लेकिन चलें जी कोई बात नहीं ये हंसी मजाक तो होता ही रहता है ऐसे कामों में तो खूबसूरत सा गीत है एंजॉय कीजिएगा तब तक मैं दूसरी जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको मैं ढूंढती हूँ

जी बिल्कुल जी अब्दुल कयूम जमाती जी हमारे साथ हैं रौद्रम से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप ऐप पे रेडियो संगम पे नशरियात को सुनते हैं सराहते हैं और फीडबैक भी देते हैं आपके पास जितने भी नंबर होते हैं आप सभी नंबर से हमें फीडबैक देते हैं ये बहुत अच्छी बात है तो वो जैसे नहीं जो यूट्यूबर होते हैं वो कहते हैं जी जितने भी फोन हैं उन सभी फोनों से हमें सब्सक्राइब कीजिएगा हमें शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा तो यही बात है कि अब्दुल कयूम जमाती साहब भी हमारे साथ साथ हैं जितने भी इनके पास फ़ोन होते हैं सभी से हमें सुनते भी हैं और फीडबैक भी देते हैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी

0: इस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो संगम।
1: बिल्कुल जी, टाइम चेक कीजिएगा, 10:46 और 23 सेकंड हो गया साथ। आपको पता है 12 बजे तक होता है और खूबसूरत से गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो शमशेर असलम साहब, आपका गीत मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे मिल गया तो आप तक पहुंचा दूंगी। जहांगीर जी, आपका गीत आप तक पहुंचा दिया गया है, शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और नादिया जी, आपके लिए इस गीत के बाद एक खूबसूरत सा गीत आपके नाम भी कर दूंगी। सुल्ताना पा, आपके नाम भी सारे खूबसूरत से गीत है। हमीदा नाज जी लंदन से, आपके नाम भी। किंग साहब, आपके नाम महबूब इलाही जी BD5 वाले, आपके नाम भी यही गीत होगा। सैम के नाम, शाज के नाम और पप्पू मोरा वाला, आपके नाम भी। तो मिसेस गफार की पसंद का गीत है, मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत सी आवाज़ में। यकीनन आप सभी को अच्छा लगेगा। तो पता नहीं अब ये एक आवाज़ है कि दो आवाज़ें हैं, लेकिन गीत खूबसूरत है और मिसेस गफार ने इस गीत को सुनने के लिए कहा है तो यकीनन अच्छा ही होगा। तो मिसेस गफार, देखते हैं कि ये कैसा गीत है। और चलें जी, बाकी चौधरी मुसफ़र हमारे साथ हैं, उनके लिए भी यही गीत होगा।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो कि मिसेस गफार आपकी पसंद का गीत आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के नाम किया और सुल्ताना आपा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और सुल्ताना आपा मिसेस गफार आपको बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं कह रहे हैं कि मिसेस गफार बड़े सोने सोने गीत लवांदी पता नहीं कितों लभदी रहिंदी है ते साडे वालों उन्हां दा शुक्रिया अदा कर दियो और नाले उन्हां ने कहा जी मिसेस गफार जिंदाबाद तो वाकई इसमें कोई शक वाली बात नहीं मिसेस गफार की जो भी कलेक्शन वो हमें बताती हैं बहुत ही जी लाजवाब होते हैं उनके गीत और सभी को अच्छे भी लगते हैं सभी फीडबैक जरूर देते हैं उनके गीतों पे और जहांगीर साहब आपका गीत भी सबको अच्छा लगा आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तो आने वाला खूबसूरत सा जो गीत है इस गीत को मैंने करने ना दिया जी आपके नाम सुल्ताना आपा आपके नाम जो जो फरमाइश नहीं करते उनके नाम ये वाला गीत होगा और जो फरमाइश करते हैं उनके नाम उनकी पसंद का गीत होगा तो ये मेरी पसंद का गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में सदाबहार गीत खूबसूरत सा सभी सामी के नाम

0: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਕਿਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ
0: ਓ ਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਡਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈ
1: ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ
0: ਖਾਦਮ ਸੁਪਰ ਸੇ ਬਰਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤਾਂ 100% ਦਲਾਲ ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਚਿਕਨ ਲੈਮ ਬੀਫ ਫਰੀ ਰੇਂਜ ਚਿਕਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚਿਕਨ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਨਲੈਸ ਗੁਰਦੇ ਕਲੇਜੀ ਬਟੇਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਛਲੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਬਲੈਤੀ ਕੁੱਕੜ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਬਸ ਬੰਦਾ ਲਿਆਏ ਪਕਾਏ ਤੇ ਖਾਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਏ
1: ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ
0: ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
1: ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ
0: ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆ ਮੌਲਾ
2: ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹੇਗੇ ਆਪ ਜਾਈਏ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਖਾਦਿਮ ਸੁਪਰ ਸੇ 1 ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਬਰਕਵੀ ਹਰਿਸਫੀਲਡ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 9 ਟੂ 7 ਐਂਡ ਸੰਡੇ 10 ਟੂ 6 ਐਚਐਮਸੀ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਹਲਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 01484456257 ਦੈਟਸ 01484456257
3: Thinking about quitting smoking? The Kirklees Council Wellness Service is here to support you every step of the way. If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleyswellnessservice.co.uk or call 01484 234 095 today. Kirklees Council Wellness Service. Quit for good.
2: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.
4: Jagte rehna, jagte rehna.
5: So jaunga to kya hoga bhai?
4: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha donor, paratha tikka aur iske saath ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
5: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
4: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
6: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
4: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हरिसफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
7: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
8: आर यू पीपिंग टॉम
7: सैडली इट वाज Wasn't in there, so I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
9: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
8: Come up and see me sometime.
7: Case closed.
10: वेलकम बैक खुश आमदीद एक दफ़ा फिर सभी खूबसूरत समातों को यकीनन आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब बिल्कुल जी खैरियत से होंगे साथ निभाने के लिए दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी टाइम 11:07 और 30 सेकंड हो गए एक घंटा बिल्कुल ख़त्म हो गया दूसरा घंटा भी इसी तरह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपको पता है कि खुशी के जो पल होते हैं वो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं तो आप सब साथ होते हैं तो हर तरफ खुशी ही खुशी होती है अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे हमेशा सलामत रहें साथ निभाते रहें 107.9 FM और 94.7 FM पे मई महीने की 2 तारीख 2026 दिन है आज हफ्ते का खूबसूरत सी सुबह हफ्ते का दिन यकीनन आप सभी को अच्छा लग रहा होगा प्रोग्राम साथ निभाने के लिए जी हमारे साथ शमशेर असलम साहब आप हमारे साथ साथ हैं महबूब इलाही जी आपकी खूबसूरत सी दुआओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपको प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है सुल्तान आप हमारे साथ हैं जहांगीर साहब जी हमारे साथ हैं और अब्दुल कय्यूम जमाती साहब जी हैं नादिया जी हैं हमीदा नाजलंदन से पप्पू मोरावाला किंग साहब हैं सैम जी हमारे साथ हैं शाज हमारे साथ हैं और फोन कॉल्स के जरिए चौधरी मुजफ्फर जी आपसे भी बात हुई आपने कहा जी आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है तो आप 12 बजे तक सारा प्रोग्राम सुनेंगे तो ठीक है जी अच्छी बात है हम अगर 2 घंटे बैठ के प्रोग्राम कर सकते हैं तो आपका भी 2 घंटे बैठ के प्रोग्राम सुनना बनता है आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और हाजी आफ्ताब साहब हैकमन वाइक से आपने भी एक गीत का कहा तो आपकी पसंद का गीत भी मैंने क्यों किया हुआ है ज़रूर आपके नाम किया जाएगा साथ निभाने के लिए आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिसेस गफ़ार हमारे साथ साथ हैं और इनके अलावा हमारे साथ अभी प्रोग्राम में शामिल हुए अब्दुल मजीद जी हैलिफैक्स से आपका भी दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप भी हमारे साथ साथ हैं आपने भी कहा कि 12 बजे तक आप कहीं नहीं हिलने वाले तो ठीक है जी सुनते रहिएगा इस उम्मीद पे कि आपको भी गीत अच्छे लगेंगे दूसरे हिस्से का सबसे पहला गीत खूबसूरत सा गीत है शमशेर असलम साहब आपके नाम आपकी पसंद का गीत जी बिल्कुल शमशेर असलम साहब मैंने भी अभी वो कमर्शियल सुनी है तो मेरे भी दिमाग में आया कि तनवीर भाई भी कहते हैं जागते रहना लगता है कि रेडियो वाले आज जितने भी हैं सारे आपको जगाते ही रहेंगे वीकेंड है हालांकि सभी सो भी रहे होंगे लेकिन हमने नहीं सोने देना हमने यही कहना है जी जागते रहना तो अच्छा लगता है आप सभी से इस तरह की छोटी छोटी सी हंसी मजाक करके तो चलें जी गीत शमशेर असलम साहब आपके नाम कभी कभार आप इस गीत को बहुत फरमाइश किया करते थे आई थिंक तब आप रेडियो का रेडियो की जो टीम है उसके मेंबर्स नहीं थे अगर आपको याद है तो

बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जो कि आप सभी समी के नाम किया और शमशेर असलम साहब आपको तो यादें जो पुरानी थी वो ताज़ा होगी लेकिन जी किंग साहब आपको भी गीत बहुत अच्छा लगा आपने भी लिखा है कि वाह वाह नाइस सॉन्ग थैंक यू सो मच जी गीत को पसंद करने के लिए और अब कुमार सानुअल का याकनिक की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत है ये गीत भी सभी सुनने वालों के नाम किया जाएगा मेरा दिल भी कितना पागल है तो दिल तो पागल ही होता है क्या कीजिए दिल की अगर इंसान मानने लगे तो बस फिर वो कहते हैं ना कि दिल की माने इंसान तो फिर ना इधर का रहता है ना उधर का इसलिए वो कल मैंने एक गीत भी लगवाया था उस गीत पर आज तक मुझे कल से लेकर अब तक मुझे बातें सुननी पड़ रही हैं और सुल्ताना आपा ने तो कल का मेरा मजाक ही बना लिया है लेकिन कोई बात नहीं जी ये सब कुछ इसी तरह चलता रहता है और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जितने भी साहमीन मेरे साथ साथ हैं सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और वो क्या किसी ने खूबसूरत सा कुछ लिखा है कि पल पल इंतज़ार किया जिस पल के लिए पल पल इंतज़ार किया जिस पल के लिए वो पल आया भी तो सिर्फ कुछ पल के लिए सोचा इस पल को रोक लूं हर पल के लिए सोचा इस पल को रोक लूं हर पल के लिए लेकिन वो पल भी ठहरा सिर्फ कुछ पल के लिए हाय हाय तो जी एक और है कि अब हर पल दुआ है सिर्फ इस पल के लिए अब हर पल दुआ है सिर्फ इस पल के लिए कि फिर से आ जाए वो पल कुछ पल के लिए पल पल इंतज़ार किया जिस पल के लिए वो पल भी आया तो सिर्फ कुछ पल के लिए

बहुत ही खूबसूरत सा गीत था सोनू निगम की खूबसूरत सी आवाज में किंग साहब आपकी प्रजर फरमाइश पे आपके नाम कर दिया और अब आने वाला एक और खूबसूरत सा गीत है लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को सुनने के लिए हाजी आफताब साहब हकमत वाइक से आपने कहा था तो इसके साथ लिखा है जी किसी ने क्या ही खूब कहा है कि मोहब्बत फूल होती है कहो तो फूल बन जाऊं मोहब्बत फूल होती है कहो तो फूल बन जाऊं तुम्हारी जिंदगी के एक हसीन असूल बन जाऊं सुना है रेत पे चल के तुम अक्सर महक जाते हो सुना है रेत पे चल के तुम अक्सर महक जाते हो कहो तो अब की बार में जमीन की धूल बन जाऊं बहुत बहुत नायाब होते हैं जिन्हें तुम अपना कहते हो बहुत नायाब होते हैं जिन्हें तुम अपना कहते हो इजाजत दो तो मैं भी इस कदर अनमोल बन जाऊं मोहब्बत फूल होती है कहो तो फूल बन जाऊं तुम्हारी जिंदगी का एक हसीन असूल बन जाऊं

0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जो कि जी हजी आफताब साहब हैकमन वाइक से आपने सुनने के लिए कहा था तो आपकी पसंद का गीत आपके नाम कर दिया और चौधरी मुजफ्फर जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपने कहा जी वेरी नाइस प्रोग्राम डॉक्टर रिफत जी थैंक यू सो मच जी आपने मुझे मुफ्त में ही एमी एमी का डॉक्टर बना दिया लेकिन चलें जी कोई बात नहीं आप जो भी कह सकते हैं कोई बात नहीं है जी बस ये है कि खलूस प्यार मोहब्बत से आप साथ निभाते हैं हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है आजकल टाइम किसी के पास भी नहीं होता लेकिन कीमती टाइम निकालना दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल है तो जो कि आप हमें देते हैं दो घंटे का प्रोग्राम हो तीन घंटे का प्रोग्राम हो आप हमारे साथ साथ होते हैं
1: सुन सदा
0: और महबूब लाई जी आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपने भी लिखा है कि सलाम भेजा है वालेकुम सलाम जी आपने कहा कि रिफत साहब प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और कोई भी गीत हमारे दोस्तों के नाम जो कि चौधरी मुजफ्फर हैं शकील साहब हैं मास्टर महमूद जी हैं शहजाद और बाकी हमारी पूरी टीम के लिए तो यही गीत मैं सबके नाम करूंगी क्योंकि अब जो टाइम है 11:33 हो चुके हैं और 7:12 तक होता है आधा घंटा भी बाकी नहीं है दो गीत या ज़्यादा से ज़्यादा तीन गीत और चल जाएंगे तो इसलिए मैं एक गीत दो दो तीन तीन के नाम करना चाहूँगी क्योंकि सभी के नाम गीत हो जाएंगे टाइम की किल्लत की वजह से तो आने वाला एक और खूबसूरत सा गीत है ये गीत मेरा भी बहुत ही फेवरेट गीत है और बस ये कहिए कि जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं ये गीत उनके नाम है तो चलें जी खूबसूरत सा गीत फौजिया जी आपके नाम और नुसरत साहबा हमारे साथ हैं लंदन से उनके नाम भी यही गीत होगा और फौजिया जी ऑल द वे पाकिस्तान कराची से साथ निभाती हैं नेट ख़राब भी हो फिर भी वो मैसेज करके बताती हैं तो हमारी दुआएं हमेशा मेरी बहनों के साथ रहेंगी तो ये गीत उनके लिए भी

0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जो कि आप सभी समीक के नाम किया, यकीनन सभी को अच्छा लगा होगा। और किंग साहब आप भी हमारे साथ साथ हैं, आपको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है
1: कुछ ऐसी।
0: और जी फौजिया जी आपका फेवरेट सॉन्ग था जो कि आपके नाम किया, और इसके साथ साथ नुसरत साहिबा मेरे मुंह से गुलाबों निकलने लगा क्योंकि प्यार से हम गुलाबों कहते हैं। तो नुसरत साहिबा आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपको भी गीत अच्छे लग रहे हैं। वो जुदाई का दुख और वफाएं याद आती हैं, वो जुदाई का दुख और वफाएं याद आती हैं, खामोश रातों में तेरी सदाएं याद आती हैं।
2: कर ना सके हम,
0: हमने तो चाहा था तुझे अपनी जान से भरकर, मगर अब बस हमें अपनी खताएं याद आती हैं। तेरा जिक्र हो तो आंखें भर आती हैं अब, तेरा जिक्र हो तो आंखें भर आती हैं अब, बीते हुए लम्हों की वो फिजाएं याद आती हैं। किसी को क्या बताएं कि हम पे क्या गुजरती है, किसी को क्या बताएं कि हम पे क्या गुजरती है, बस दर्द में लिपटी हुई दुआएं याद आती हैं। वो जुदाई का गम, वो वफाएं याद आती हैं, खामोश रातों में तेरी सदाएं याद आती हैं।

0: फिर
1: बिल्कुल जी, कुछ चाहते ऐसी होती हैं कि जो हम चाहते हुए भी नहीं हासिल कर सकते, इसी को तो किस्मत कहते हैं। लेकिन दुआ तो यही है कि सभी की चाहतें, सभी का प्यार, सभी की मोहब्बतें जो है अल्लाह पाक सभी को सलामत रखे, और जहाँ पे भी कोई किसी की चाहत रखता है ज़रूर उनको अल्लाह पाक मिला दे। सच्ची चाहत जो होती है वो इंसान को एक काम ज़रूर आती है और इंसान को मिल भी जाती है बग़ैर मकसद के, बग़ैर मतलब के, जो चाहत प्यार मोहब्बत होता है। तो अब ये खूबसूरत सा गीत भी आप सभी समी के नाम किया था, आने वाला खूबसूरत सा गीत होगा शाजिया मंसूर की आवाज़ में, जो कि मैं करना चाहूँगी चौधरी मुजफ्फर जी आपकी जानिब से आपके सभी दोस्तों के नाम, जिनमें महबूबे लाही हैं, बाकी भी काफ़ी सारे आपके दोस्त हैं। चलें जी, अब नाम नहीं लूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन आपने कहा जी आपको अच्छा लगता है मुझे डॉक्टर रिफत कहना, तो थैंक यू सो मच जी। मेरा क्या चाहता है, मैंने कौन सी पर्ची लिख के देनी है नाम के साथ, बस डॉक्टर जोड़ दिया जाए तो बहुत हो जाता है। तो आने वाला खूबसूरत सा गीत है शाजिया मंसूर की आवाज़ में, इसके बाद फिर आपसे इजाज़त भी लूँगी और वो गीत होगा मेरे प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत था शाज़िया मंसूर की आवाज़ में और जो के जी चौधरी मुजफ्फर जी आपकी फरमाइश पे आपके नाम कर दिया थैंक यू वाली कोई बात नहीं जी और अब्दुल कशीम जमाती साहब आपने भी डॉक्टर साहब बना दिया तो चलें जी आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बैठे बैठे मुझे डॉक्टरी की वो क्या कहते हैं संद मिल गई है डिग्री मिल गई है तो और क्या चाहिए मुझे लेकिन एनीवे अब दिल तो नहीं कर रहा कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ इतनी अच्छी बातें हो रही हैं इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है मैं खुद भी एंजॉय कर रही हूँ यकीन आप भी कर रहे होंगे लेकिन मजबूरी है क्योंकि मेरे बाद शहजाद ने आना है स्टूडियो में वो खूबसूरत सा प्रोग्राम करेंगे और उनके साथ एक हमारे नए प्रेजेंटर भी हैं जो कि अब्दुल रहमान उनका नाम है खूबसूरत सा प्रोग्राम किया करेंगे वो भी आज आपके साथ प्रोग्राम करेंगे ऑन एयर जाएंगे ज़रूर आपने प्रोग्राम को सुनना है और उनकी हौसला अफजाई भी करनी है ताकि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से प्रोग्राम को आगे लेकर चले तो आप सभी का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी ने बहुत प्यार मोहब्बत से मेरा साथ निभाया मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा कीजिएगा अपना और आपके जो आसपास बसने वाले उनका ज़रूर ख्याल रखा करें अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी ने साथ दिया सांस से चलती रही तो फिर दोबारा मुलाकात होगी सोमवार के रोज़ मंडे मॉर्निंग 9 से 12 तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

अस्सलाम वालेकुम, शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। किस्मतों से टकराने वाली आवाज़ आपके अपने रेडियो रेडियो संगम की, जो कि आप सुनते हैं 107.7 FM से। खिदमत में हाजिर आपका होस्ट, आपका दोस्त शहजाद, बिल्कुल ओल्ड इज़ गोल्ड शो के साथ एवरी सैटरडे मेरी और आपकी मुलाकात 12 से लेकर 3 बजे तक। शहजाद का आगाज़ हुआ रेडियो संगम से शहजाद साहब की खूबसूरत सी आवाज़ के साथ साथ से लेकर 10 बजे तक, 10 से 12 बजे तक रिफज भी आपके साथ, और 12 से 3 बजे तक मेरा और आपका साथ मेरे बानी निर्मल सिंह भाई अपना पंजाब शो के साथ, 5 से 7 बजे तक नादिया कमल शो, और 7 से लेकर 10 बजे तक शमशेद असलम भाई आपके साथ, 10 से 12 बजे तक बिलाल बासी भाई आपका साथ देंगे। सेकंड ऑफ मई, टाइम हो रहा है जी 10 past 12। कहते हैं आपका वीकेंड बड़ा अच्छा जा रहा होगा और के साथ खूब एंजॉय करेंगे जबरदस्त सा वेदर। में शामिल होने के लिए हमारा नंबर रहेगा 01484817705, और फिर व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर 07444202155। का फॉर्मेट आप जानते हैं जी, आपको फरमाइश करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आपको सुनाएंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे साथ रहना है आपने और अपने होने का एहसास दिलाना है व्हाट्सएप मैसेज के साथ और अपनी कॉल्स के साथ। साथ आपको बताते चलें जी, आज मेरे साथ मान भाई होंगे जो मेरा साथ देंगे, बिल्कुल हमारे साथी प्रेजेंटर, बहुत जल्द आप इनको ऑन एयर सुनेंगे अपना शो। आज वो मेरे साथ शो करेंगे, टुगेदर हम दोनों शो करेंगे और उम्मीद करेंगे जी आज के शो को आप एंजॉय करेंगे। कॉल कीजिएगा और बताइएगा कि आज आपको हमारा शो कैसा लगा। साम जी कहते हैं आपको वेलकम, और हमारे साथ हिना कियानी, काफ़ी दिनों के बाद आपको कहूँगा वेलकम। आज का प्रोग्राम सानू की खूबसूरत सी आवाज़ के साथ, और उसके बाद हम अब्दुर्रहमान भाई को उन्हें लेके आएंगे आप लोगों के साथ। तेरी खूबसूरत सा गाना सभी दोस्तों के नाम मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद।

0: सुन रहे थे कुमार सानू की खूबसूरत सी आवाज में ऐसा गाना और हमें बताया था इस गाने के बारे में उन्होंने ये बिल्कुल अब्दुर्रहमान मेरे साथ है पहले तो आपको ये बता दे अब्दुर्रहमान मेरे बेटा नहीं है जो आप रमजान में हम दोनों को सुनते थे ये अब्दुर्रहमान भाई हमारे साथी प्रेजेंटर हैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ होंगे तो उनको लेके जाते हैं उन्हें अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान भाई
1: वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई क्या हाल है
0: आप नए सर कैसे हैं हम ठीक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मुझे पता नहीं था कि आपके बेटे का भी नाम अब्दुर्रहमान है
0: बिल्कुल जी तो पहले तो आपको फुल नाम बताना पड़ेगा अब्दुर्रहमान क्योंकि मेरे बेटे का नाम अब्दुर्रहमान अहमद और आप अब्दुर्रहमान
1: मेरा नाम अब्दुर्रहमान शेख है
0: अब्दुर्रहमान शेख शेख माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है जी अच्छा मैंने इसलिए कंफर्म किया ना क्योंकि नॉर्मली रमजान के अंदर मेरा बेटा मेरे साथ शो करता है तो मैंने बता दूं कि अब्दुर्रहमान मेरा बेटा नहीं है ये मेरा स्टूडेंट है
1: मुझे बेटा ही मान के
0: नहीं अब इतना मैं ओल्ड भी नहीं हूँ क्या ठीक है अब्दुर्रहमान भाई ये जैसे आप लोगों को बताया कि जल्द आप इनको ऑनियर सुनेंगे अपना शो होगा तो अब्दुर्रहमान भाई कैसे गाने आपको पसंद हैं
1: यार शहजाद भाई मेरा तो एक्चुअली ऐसा है कि मैं ना 90s का बंदा हूँ मुझे
0: अच्छा हमारी क्लास के बंदे ठीक है 90s
1: की पसंद करते हैं हम लेकिन मुझे 2000s के भी म्यूजिक बहुत पसंद है ट्रेंड के साथ चलना यू नो जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं प्रीतम मलिक हो गए
0: वेरी गुड
1: इनका जो फुट स्टैपिंग जो नंबर्स होते हैं इनके इनके जो रोमांटिक नंबर्स होते हैं मुझे इस टाइप के गाने भी पसंद है तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो शो मुझे मिलेगा तो उसमें थोड़े डांस नंबर्स हो थोड़ी मोहब्बत हो थोड़ी मस्ती हो इस किस्म के
0: ऐसे मौसम में तो डांस बनता है ना तो अगर मौसम ऐसा हो अब्दुर्रहमान भाई साथ में और फिर ठीक
1: है तो शादी का भी मौसम है अभी तो
0: ठीक है अब्दुर्रहमान अच्छा आई होप कि आप सब कुछ ठीक जाएगा सो फार कैसा लग रहा है आपको आप हमारे स्टूडियो में आप हमारे कुछ लोगों से मुलाकात हुई बाकी टीम से तो कैसा लग रहा है आपको
1: यार शहजाद भाई पहली बात तो ये है कि आई एम सो एक्साइटेड
0: ओह रियली
1: मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है स्टूडियो में बैठ के आपसे बात करके मुझे बड़ा और थोड़ा सा नर्वस भी हो क्योंकि पता है आपके साथ शो कर रहा आप तो माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान हो आप कितने सालों से शो कर रहे हो अच्छी बात है और आपसे कुछ सीखने को भी मुझे मिलेगा तो बस इसी में लेकिन बहुत अच्छा लग
0: रहा है और भी अच्छा लगेगा हमारे साथ रहेंगे ना तो और अच्छा लगेगा अब्दुर्रहमान भाई ऐसे करते हैं हम नेक्स्ट गाना सुनते हैं उसके बाद फिर आप ऑन एयर जाएंगे और आपकी पसंद के गाने मेरी पसंद के टुगेदर हम इंशाल्लाह शो करेंगे अच्छा तो नेक्स्ट गाना जी कुमार सानू अलका यागनिक की आवाज़ में लड़की बड़ी अनजानी है ज़बरदस्त सा गाना कुछ कुछ होता है मूवी से इस गाने को इन्जॉय कीजिएगा आपसे मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद

0: बिल्कुल गाना सुन रहे थे कुछ कुछ होता है और वेलकम किया कि इन्होंने अब्दुल रहमान भाई आपको बताएंगे कौन है हमारे साथ अब्दुल रहमान भाई
1: नादिया
0: कमल हमारे साथ हैं आज शो आपको सुनने में वो 5 से 7 शो करते हैं अगर टाइम लगे तो जरूर सुनिए बड़ा अच्छा शो करते हैं वो क्योंकि हमारा सुन रही हैं तो हमें भी सुनना पड़ेगा नहीं सुना पड़े लेकिन वो अच्छा प्रोग्राम करते हैं
1: नहीं वैसे मैं आपके काफी सारे शोज सुनता हूं क्योंकि मैं काम करता हूं मेरे बाजू में मेरा एफएम चालू ही रहता है
0: अच्छा अच्छा काफी मतलब हमारे काफी प्रेजेंटर्स से आप आवाज सुने लेकिन आपने अभी मुलाकात
1: नहीं
0: इंशाल्लाह जल्दी हमारी जब मीटिंग होगी आप सबसे मिलेंगे सब अच्छे हैं यह तो यह बिल्कुल वो आपको वेलकम कर रही हैं और हमें कॉल की थी एक भाई हाजी नदीम ड्यूसबरी से
1: जी हाजी नदीम साहब
0: ड्यूसबरी से हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं हमें भी गाना सुनवा दें जल्दी
1: कौन सा गाना सुनना चाहिए
0: वो कहते अभी नहीं सुनना आधे घंटे के बाद लगाएं
1: ये
0: हम मेहमान को
1: टाइमिंग भी है
0: ये टाइमिंग है जो अगर नहीं करेंगे वो नाराज हो जाते हैं तो हमें उनकी टाइमिंग भी देखना पड़ेगी वो कहते हैं ये अपना प्रोग्राम छोड़े हम हमें सुने हमने क्या करना है कहते आधे घंटे के बाद लगाना है बंदा पूछे कि आधे घंटे के बाद हमें भूल गया तो हमें तो अभी 5 मिनट पहले नहीं है याद नहीं भाई ऐसे करें आप हमें याद दिलवा दें थोड़ी देर बाद कि आपने गाना सुनना है और फिर ये कहते हैं कि जो मर्जी सुनवा दें ये अच्छी बात है इनकी ये फरमाइश नहीं करते हम पे छोड़ देते कहते हैं कि आपकी जो चॉइस होती है अच्छी होती है लेकिन अब्दुल रहमान हाजी नहीं भाई अब्दुल रहमान मेरे साथ हैं आपकी पसंद का गाना मैं उनसे लगवाऊंगा उनसे पूछूंगा कौन सा गाना प्ले करेंगे ठीक है अब्दुल रहमान भाई आपने चूज करना है
1: और उन्होंने बताना है हमें कि उनको गाना पसंद
0: है बिल्कुल वो कॉल करके हमें बताएंगे तो ठीक है भाई अब्दुल रहमान भाई आपके लिए गाना लगाएंगे लेकिन फिलहाल हम आपको अभिजीत की आवाज में गाना सुनवाते हैं आप हैं रेडियो संगम अब्दुल रहमान भाई अगर कॉल करनी है किसी ने आपसे बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर कौन सा रहेगा कॉल करने के लिए
1: बिल्कुल वो हमें कॉल कर सकते हैं जो हमारा स्टूडियो का हॉटलाइन नंबर है 01484817705 और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारा नंबर है 07444202155

जी थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शबाना जी और सैम जी. थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग. और ये जो अगला गाना है जो हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं वो है चांद सिफारिश. चांद सिफारिश, आप हमें बता सकते हैं कौन सी मूवी का गाना है? अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा. चांद सिफारिश आपके लिए. थैंक यू.

0: you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: हर सिर की फिजाओं में बस एक खुशबू 30 बरसों की मोहब्बत जायकों की एक कहानी स्नूटीज पिज़्ज़ा बार जहां हर लुकमा एक एहसास बन जाए 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर
3: 2 12 inch pieces for £12 3 12 inch pieces for £17 2 100% Angus beef smash burgers for £12, 2 fresh chicken fillet breast burgers for £12, and 2 loaded fries for £10. Also, finally, 3 tender meals just for £5.
2: Chahe sham ho ya raat ki mehfil, har lamha ban jaye khas, har zaika ban jaye yaad. Aaye zaikon ki is mehfil mein shamil hoon, Snooty's Pizza Bar, jahan har baar dil kahe, bas yahi hai asal maza.
3: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
4: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
5: हाँ जी याद है.
4: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
5: हाँ जी चाहिए.
4: चांदी चाहिए?
5: हाँ जी चाहिए.
4: कहाँ से लोगे?
5: चाचा ज्वेलर्स.
4: फिर से बोलो.
5: चाचा ज्वेलर्स.
4: चूड़ी, कंगन, जुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा. जल्दी बताओ कहाँ से लोगे?
5: चाचा ज्वेलर्स. चाचा ज्वेलर्स.
6: केड़ी ऑफर लाइया वा? सानू भी तो दसो.
7: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर. यहाँ पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादी के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू.
8: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE. टेलीफोन नंबर 01422342553. गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स.
9: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं? द कर्कलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है. अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है. हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद, पैचेस, वेप्स और गम फ्राहम करते हैं जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है. तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है. और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं. तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है. अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484-234-095 Kirklees Council Wellness Service. Hamesha ke liye tambaku noshi chhodiye.
10: Thinking about quitting smoking? The Kirklees Council Wellness Service is here to support you every step of the way. If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleeswellnessservice.co.uk or call 01484-234-095 today. Kirklees Council Wellness Service. Quit for good.
11: जागते रहना, जागते रहना.
12: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
11: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
12: स्टॉप. अरे वाह, पराठा स्टॉप.
11: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
12: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
11: पराठा स्टॉप, 9 Black Road, हडर्सफील, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484-542-700.
13: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें. यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट. रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
14: LemFi means a quicker and safe way to send money.
15: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
14: LemFi means a 10% cashback on transfers over £100 using code Sangam.
15: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
14: Download the LEMFI mobile app today.
15: LemFi is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.

0: जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो शहजाद भाई और मेरे साथ अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच अब्दुल रशीद भाई, आपने जो पोइट्री भेजी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको हम पढ़ें। थैंक यू सैम और शाज फॉर द वेलकम। हाजी नदीम साहब, ये अगला गाना आपके लिए, बताएं आपने कि आपको ये गाना कैसा लगा। मैंने सुना है कि आपका बहुत ही फेवरेट, बहुत ही मनपसंद गाना है ये। चले ठीक है, आपके लिए प्ले करते हैं हम, बताएं हमें कि
1: अब्दुल रहमान भाई आपको कैसे पता क्या उनको ये गाना पसंद है।
0: बस मैंने ऐसे
1: गेस किया। ये अदरवा हमारे न्यू ट्रेनर, आपको बता दें कि जब भी शाम का नाम आएगा ना तो शायद उनके साथ होंगी।
0: अच्छा, दोनों साथ
1: ये आपने याद रखने हैं
0: जी। ओके, चलो जी, हम ध्यान में
1: रखेंगे। कभी खुशी कभी गम, दोनों साथ में होती है। और अगर शाज आएगी तो साथ भी साथ में होगी। तो अगर उन्होंने आपको वेलकम बोला तो शाज डेफिनेटली उनके साथ होगी। क्या होता है कि वो ड्राइविंग करती हैं और शाम साथ में बैठ के हमें मैसेज करती है।
0: हम साथ साथ हैं वाले
1: जी, बिल्कुल हम साथ, ऐसे कह सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया शाम जी। और हिना शरीफ हम भूल गए जी, आपको ग्लासगो से आप सुन रही हैं, आपको कहते हैं वेलकम। और स्किना अदनान, थोड़ी देर होगी आप लोगों को वेलकम करने के लिए, दोनों को कहते हैं वेलकम। और जी बिल्कुल नदीम भाई, गाना आपको आपका पूरा सुनवाएंगे। तो ये गाना जाएगा आपके नाम, आवाज़ ज़रा ऊँची कर लें, लेकिन ड्राइव फिर भी आपने केयरफुली करनी है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है।

0: आप सुन रहे रेडियो संगम से ओल्ड इज गोल्ड शहजाद के साथ और आज मेरे साथ हैं अब्दुल रहमान शेख भाई, बहुत शुक्रिया उनका और उम्मीद कर रहा हूं जी आप को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे साथ साथ होंगे जी, बिल्कुल हम साथ साथ हैं और बहुत शुक्रिया अब्दुल राशिद भाई आपने पोएट्री सेंड की। कहते हैं जी पसे बाजार भी बिक जाते हैं बिकने वाले, पसे बाजार भी बिक जाते हैं बिकने वाले, कितने सौदे सरे बाजार नहीं भी होते, और पारसाई भी कहीं ढोंग हुआ करती है, पारसाई भी कहीं ढोंग हुआ करती है, कुछ गुनहगार गुनहगार भी नहीं होते। अब्दुल राशिद भाई हमेशा ही जो पोएट्री बोलते हैं बड़ी कमाल की होती है। अब्दुल रहमान भाई फोन कॉल हमें एक आई थी, कौन थे, कौन भाई हमारे साथ थे
1: जी? हमें कॉल आया था इकबाल खान साहब का, उन्होंने कुछ एक मैसेज दिया है हाजी नदीम साहब को। इकबाल खान भाई हम आपका मैसेज पहुंचा देंगे।
0: अच्छा ठीक है, हम उनको बोलें जो आपने मैसेज दिया हम आपका मैसेज
1: पहुंचा देंगे।
0: ठीक है अब्दुल रहमान भाई, क्योंकि उन्होंने कॉल की है तो गाना ऐसे करते हैं, नेक्स्ट गाना आप किनके
1: ना? जी नेक्स्ट गाना जो है सिलसिले मुलाकातों के, वो हम डेडिकेट करना चाहेंगे इकबाल खान साहब को। सर अब हमें बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा।
0: थैंक यू, आप बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और प्रोग्राम सुनने के लिए और आई होप पसंद करने के लिए भी। इस गाने को एंजॉय कीजिएगा इकबाल खान भाई, और बताइएगा कि आपको ये गाना कैसे लगा। अब्दुल रहमान भाई की तरफ से ये गाना आपके नाम।

0: जी वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने आपसे एक सवाल पूछा था जब हम लोग ने चांद सिफारिश गाना प्ले किया था, कि बताया था कि आप हमें बताएं कि उस मूवी का नाम क्या है, और अभी तक तो हमें सिर्फ एक ही सही जवाब मिला है, वो है सैम और शाह से। आपने कहा है कि गाने का नाम, मूवी का नाम, मूवी का जो नाम है वो है फना, और ये बिल्कुल सही जवाब है।
1: और अनाम में क्या है
0: जी?
1: अनाम क्या है? उन्होंने सही जवाब दिया है।
0: ना बिल्कुल, इनाम तो बस अभी वो हमें रिक्वेस्ट करें, हम उनका गाना प्ले कर देंगे।
1: या बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे करेंगे गाने के साथ कि गाना उनको फ्री सुनवा देंगे। साम जी बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो ये साम का आंसर है या शाज का आंसर है, लेकिन दोनों को करेक्ट कर दे, दोनों के
0: साथ साथ ही वाला सिस्टम
1: है। रुपया और दुर्मान भाई हमारे साथ और लिसनर है कोई? आई थिंक इंडिया से कोई हमारे साथ सुन रहे हैं।
0: हमारे साथ इंडिया से कोई लिसनर है। थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम। आपका सिर्फ नंबर आ रहा है, आपका नाम नहीं दिख रहा।
1: निदा
0: वेलकम, थैंक यू सो मच निदा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अगर आपके कोई ख्वाहिश है, कोई गाना हम चाहते हैं कि हम आपके लिए प्ले करें
1: जी, उन्होंने बताया मूवी बॉडीगार्ड से भी गाना सुनना चाहती हैं।
0: बॉडीगार्ड से
1: बोले क्योंकि अभी ब्रेक है, हमें न्यूज ब्रेक और उसकी तरफ जाना है, उसके बाद उनका गाना हम लाइनअप करेंगे। तो वेलकम निदा जी, आपको कहते हैं रेडियो समय पर शुक्रिया, फर्स्ट टाइम आप शो में आएंगे, और उम्मीद करते हैं जी नेक्स्ट वीक भी जरूर आएंगे, मुझे सुनने के लिए नहीं बल्कि अब्दुलरहमान भाई को सुनने के लिए, क्योंकि मेरे शो में आप कभी नहीं आई अब्दुलरहमान के वेलकम करने के लिए। कोई बात नहीं जी, हम एक फैमिली हैं, अगर उनको वेलकम करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं रेडियो संगम पर। बहुत शुक्रिया निदा जी आपका और बाकी सभी दोस्तों का जो हमारे साथ हैं। तो अब्दुलरहमान भाई कौन सा गाना नेक्स्ट हमारा
0: जी? हम लोगों ने नुसरत जी का एक, नुसरत जी ने कुछ फरमाइश की है। नुसरत जी इंशाल्लाह आपका गाना हम बहुत जल्दी प्ले करेंगे हमारे साथ।
1: अभी अभी नेक्स्ट गाना प्ले करना है उदित नारायण की आवाज में।
0: अभी हमारा अगला गाना है उदित नारायण की आवाज में बिन तेरे सनम। ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है शहजाद भाई।
1: अच्छा, बहुत ही
0: जबरदस्त गाना।
1: चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं इस गाने को सुनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं गाने के उस पार।

बिल्कुल, अभी हमें जाना है 1 बजे की नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ, यही गाना हमें ले जाएगा नेशनल न्यूज़ की तरफ, उसके बाद छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के उस पार आप लोगों से दोबारा मुलाकात शहजाद और अब्दुलरहमान भाई के साथ। 3 बजे तक मेरा और आपका साथ, मेरे साथ हैं अब्दुलरहमान भाई।

मैं वेलकम करना चाहूंगा फरीद अख्तर साहब को जो हमें हडर्सफील्ड से सुन रहे हैं, शमशीर असलम साहब जो गुजरात पाकिस्तान से हैं, मुबारक अली साहब जो हमें गुजरात से सुन रहे हैं। अगर आप हमें पहुंचना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो हॉटलाइन नंबर पे 01484817705। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 07444202155। आप हमें हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो एट रेडियो संगम, और आप हमें सुन भी सकते हैं एट रेडियो संगम डॉट को डॉट यू के। इसी के साथ हम आपके लिए दूसरा गाना एक प्ले करना चाहेंगे। एक्चुअली ना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गाना है ये मेरा काफ़ी फेवरेट गाना है, और इसी जो एक्टर हैं जो शाहरुख खान हैं, आज के शो में हमने उनका एक गाना प्ले किया था जो उनकी फर्स्ट मूवी थी। आपने हमें बताना है कि वो कौन से मूवी का गाना था जो हमने प्ले किया था जो शाहरुख खान की फर्स्ट मूवी थी। तब तक आप ये गाना सुनिएगा।

0: वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नुसरत जी। नुसरत जी, आपने तो बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। आप मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जी बिल्कुल, आपके घर हम पहुंचा देंगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। हाँ, उन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिया। मैं जवाब वैसे बोलूंगा नहीं, क्योंकि देखते हैं और कितने लोग हमें जवाब देते हैं इसका।
1: वो कह रही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चाहिए।
0: जी जी जी जी जी, बिल्कुल।
1: क्या 4K अल्ट्रा है, कोई लेटेस्ट टीवी जी मांगा?
0: अपने अपने शौक है, मे बी उनको एस्थेटिक्स का बड़ा शौक है, तो शायद इसकी वजह से उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मांगा होगा हम लोगों से।
1: अगर उनको देंगे तो फिर वो, उन्होंने भी हमारे साथ शाम थी, उन्होंने एक जवाब सही दिया था, फना मूवी का काम, वो भी डिमांड करी। ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना।
0: लेकिन उन्होंने हमसे कुछ मांगा नहीं।
1: या उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने वैसे, लेकिन उन्होंने बोला चले ठीक है। अजमान भाई
0: जी,
1: कहाँ से आप, ये अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, इंडिया में, इंडिया से हैं आप, कहाँ से?
0: जी जी जी, मैं वैसे दुबई में पला बड़ा हूँ मेरी। हाँ, मैं दुबई में था 37 years, मैं दुबई में था। मैं बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वैसे अभी भी मैं बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में ही काम करता हूँ। और 36-37 years मैं दुबई में था, पला बड़ा, मैं, मेरी पैदाइश वहीं की है। फिर उसके बाद यूके आके मुझे हो गए हैं तकरीबन 6 साल अभी। हाँ जी हाँ, लेकिन उसके अलावा मैं दुबई में जो है होस्टिंग बहुत करता था, इवेंट्स
1: तो
0: करता था।
1: आप रेडियो किया,
0: होस्टिंग नहीं, रेडियो पे वैसे एज अ गेस्ट मैं गया हूँ, लेकिन कभी ऐसा शो किया नहीं है मैंने। हाँ, लेकिन लाइव ऑडियंस पर। जी जी, मेरी शुरुआत बिल्कुल रेडियो संगम से है। और वैसे लाइव शोज मैंने बहुत किए, इन टर्म्स ऑफ होस्टिंग इवेंट्स, शादी वगैरह, मैंने इवेंट्स वगैरह होस्ट किए हैं काफ़ी, तो वहाँ उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। थोड़ा आप ये प्रेशर डाल रहे हो
1: हमें। कभी आपसे गाना नहीं, आज नहीं सुनते, चलो आज आपको जाने देते हैं, क्योंकि आप बोलोगे गला सही नहीं है आपका।
0: नहीं, गला तो वैसे मेरा सही है, लेकिन हाँ, बट इंशाल्लाह जरूर आपके लिए जरूर गाना गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल,
1: गाना भी सुनेंगे आपसे। और अभी अच्छा 6 साल हो गए, अभी आप कहाँ से?
0: जी, अब मैं लीड्स में रहता हूँ। हाँ हाँ, मैं लीड्स में होता हूँ
1: अभी से शो करने के लिए।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: चल ठीक है, देखें भाई नेक्स्ट गाना हमारा कौन सा है।
0: जी, नेक्स्ट गाना हम लोग प्ले करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जुड़वा, और गाने का नाम है चलती है क्या 9 से 12।
1: हमारा शो 12 से 3 है, 9 से 12 नहीं है, 12 से 3, लेकिन गाना है चलती है क्या 9 से 12। चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं। थैंक यू।

0: जी चलती है क्या 9 से 12। हाँ एक्चुअली ये गाना मैंने भी खुद काफी दिनों के बाद सुना है। मैं अभी बस देख रहा था, मैंने बोला चलो यार लगा देते हैं, काफी दिनों के बाद गाना सुना है मलबे।
1: मौसम भी अच्छा था, गाना भी अच्छा था। अच्छा
0: मौसम तो वैसे
1: बीवी की बात करा, हम आप सीईओ कैसर भाई से पूछना पड़ेगा।
0: हाँ जी नुसरत जी, आपका टीवी आप तक पहुंच जाएगा बिल्कुल। हम पहले हमारे सीईओ कैसर भाई से बात करेंगे, पूछेंगे कि यार आपका अगर अप्रूवल है तो हम टीवी भेजा देते हैं आपको।
1: लगता है दरबार भाई आप प्रोग्राम करना नहीं चाहते रेडियो पे, आप पहले खर्चे की बात
0: नहीं मेरा कोई बात नहीं है नुसरत जी, थैंक यू सो मच।
1: कैसर भाई बोलेंगे या शिदाज साहब से पूछेंगे अगर वो अलाउ करते हैं तो।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे सीईओ कैसर जी अलाउ करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए भेजेंगे। बट नुसरत जी थैंक यू सो मच आपकी हौसला अफजाई के लिए, थैंक यू सो मच। आपको शो पसंद आ रहा है, रिफत आपा जी हमारे साथ हैं जी। वालेकुम अस्सलाम रिफत भी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी हुई आपको शो पसंद आ रहा है, बिल्कुल थैंक यू सो मच।
1: आपका शो सुनिए, मेरा शो नहीं सुनती।
0: मैंने खास करके उनको बोला था आपने मेरा शो सुनना है जी।
1: तीन तीन हमारे साथी प्रेजेंटर शमशेर भाई हमारे साथ हैं और नादिया जी हमें सुन रहे हैं
0: जी जी जी,
1: रिफत जी हमारे साथ, अच्छा लगता है जी हमारे साथी प्रेजेंटर सुनते हैं।
0: हाँ जी शमशेर असलम साहब जी जी, अगर आप शमशेर असलम साहब को सुनना चाहते हैं वो हमारे शो सैटरडे होते हैं 7 to 10 o'clock, आप जी आज वो शो करेंगे हमारे साथ,
1: सुनिएगा बड़ा उनकी पोएट्री और उनके गानों की सिलेक्शन।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल 100% उनका शो जरूर सुनेंगे हम।
1: वो बात करते हैं तो मैं हमेशा सोचता हूं मैं ये बात क्यों नहीं करता अपने शो में।
0: अभी वो अपनी अपनी पर्सनालिटी जो है, लेकिन माशाल्लाह आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: या बिल्कुल साथ से दास शमशेर हसन भाई हमारे साथ होंगे, अभी आप सुन रहे हैं उर्दू गोश शिदात के साथ और अब्दुलरहमान भाई के साथ। तो अब्दुलरहमान भाई नेक्स्ट गाना लाइनअप किया आपने।
0: जी जी जी, नेक्स्ट गाना जो मैंने लाइनअप किया है वो है दुनिया हसीनों का मेला फ्रॉम द मूवी गुप्त। एंजॉय कीजिए गाना।

0: दिन रात आपके साथ रेडियो संगम
1: मैं के जी दरवाजा दे खोलो
2: हाय हाय अन्ने सारे बैग किनु लूट ले आ जे ये किथे डाका मार रहे हो जोगी जी
1: ओ जी वास्को डे गामा ने ते अमेरिका डिस्कवर कीता सी ते मैं आज हडसफील्ड विच गोश्त दी दुकान लब ले आया है
2: हैं अन्ने सारा गोश्त चिकन कीमा किथु ले आयो
1: खादम सुपर से बर्कवी दे अंदर हाजी सोबत मीट एंड चिकन वाले पलिए लोके साफ सुथरी दुकान फुल्ला वर्गा ताजा गोश्त मुनासिब कीमतां 100% दलाल पले लोग ते चंगी सर्विस चिकन लैम बीफ फ्री रेंज चिकन ऑर्गेनिक चिकन हड्डी वाला गोश्त हर किस्म दा बोनलेस गुर्दे कलेजी बटेरे ताजा मछली देसी मुर्गी बलैती कुकड़ सिरी पाए बस बंदा ल्याए पकाए ते खाए मेहमानन नु बुलाए ते सवाब कमाए
2: बस ते फिर हुन मैं अपने अम्मी अबू ते भैन भरावां नु बुला लेनी
1: आ मैं मेहमानां दा किया सी
2: की किया जे फिर आख्यो
1: जी कुछ नहीं बचाई हां मेरे आ मौला
0: ये दो तो ऐसे ही लगे रहेंगे आप जाइए हाजी सोबत मीट एंड चिकन इनसाइड खादिम सुपर से 1 ब्लैक रोड बर्कवी हडर्सफील्ड मंडे टू सैटरडे 9 टू 7 एंड संडे 10 टू 6 एचएमसी अप्रूव्ड 100% हलाल टेलीफोन 01484456257 दैट्स 01484456257
3: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं द केकलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस वेप्स और गम फ्राहम करते हैं जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 केकलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़ना
0: इन जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول कीमतों के साथ मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश
4: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स यूनिट 1 154 ब्रैडफोर्ड रोड ड्यूसबरी वेस्ट यॉर्कशायर WF13 2HA टेलीफोन 01924 4667 1 Mobile 07971092790. Please remember branches in Birmingham, Manchester, and Sheffield also.
0: क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
5: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
6: क्या आप अपने fan following बनाना चाहते हैं?
7: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
5: क्या आप

0: regular presenters.
1: Yes. Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
2: Abhi call kijiye 01484-549947.
3: Training will be provided.
4: Chai chahiye to phir?
5: Go chai.
4: Kabhi bhi chahiye to phir?
5: Go chai.
4: Din ko chahiye, raat ko chahiye, har waqt chahiye to phir?
5: Go chai.
6: Need a proper chai fix for when you're on the go? Skip the queue and head to Go Chai, serving the people's favourite kadak chai, creamy Kashmiri chai, coffee and much more. Made fresh at the touch of a button. Perfect taste, perfect temperature and hard to beat on price. Available 24/7. Find Go Chai at your local petrol station. For exact locations, visit gochai.co.uk. Go Chai, proper chai, anytime.
7: LEMFI means a quicker and safe way to send money.
8: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
7: LEMFI means a 10% cashback on transfers over £100 using code SANGAM.
8: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
7: Download the LEMFI mobile app today.
8: LEMFI is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.
9: Back to the show, Old is Gold, mere Abdul Rahman aur Shahzad bhai ke saath. Ye agla gana jo hai Nusrat ji ne dedicate kiya hai apni dost Rifat ko, jo main unke liye abhi play karunga. Jo gaane ke bol hai, kitni chahat chupaya baitha hoon, Babu Supriyo aur Sadhna Sarkar ki awaaz mein.
10: Kitni chahat chupa.
11: बिल्कुल महेंद्र सिंह भाई आपने भी कॉल की थी गाना उन्होंने बोला मेजर साहब से एक कुड़ी पंजाबन पता है आपको कौन सा एक पंजाबन दिल चुरा के ले गई
9: हां एक पंजाबन दिल चुरा के ले गई हां जी बिल्कुल बिल्कुल
11: उनका दिल किन्हें चुरा रही है तो कह रहे हैं आप हमारी बात नहीं सुन रहे दो दो प्रेजेंटर बैठे हैं आप बात क्यों नहीं सुन रहे जरूर सुनेंगे
9: बिल्कुल सुनेंगे
11: मैं अब्दुल रहमान को बोल दिया अब्दुल रहमान उनका गाना जरूर पे
9: 100% 100%
11: हमेशा सुर सुनते हैं
9: जी
11: और हमेशा फीडबैक भी देते हैं
9: जी
11: और गाना जरूर आपने उनको सुना
9: 100% बिल्कुल मनिंदर साहब आपका गाना हम जरूर प्ले करेंगे
11: लाइनअप कर दें और जी. उनका फिर हम गाना प्ले करेंगे
9: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
11: हमारे साथ रहिएगा जरूर आपको सुनाएंगे गाना

वेलकम बैक टू द शो ओल्ड इज गोल्ड. अभी वक्त हुआ चला है 15 मिनट्स टू 2 o'clock. उसके बाद हमारे पास लाइन अप है 3 गाने आपके लिए, जो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा. हमारे बाद आ रहे हैं निर्मल सिंह साहब, जो आपके साथ बने रहेंगे 3 o'clock टू 5 o'clock अपने शो अपना पंजाब के साथ. तो तब तक ये गाना आप एंजॉय कीजिए. ये गाना जो है निदा जो है इंडिया से, उन्होंने डेडिकेट किया है अपने फियांसे को. निदा जी, ये गाना आपके लिए, आई लव यू बाय एश किंग, क्लिंटन सिब्रिजो बाय द मूवी बॉडीगार्ड.

0: वेलकम बैक टू द शो. और ये जो गाना था आई लव यू फ्रॉम द मूवी बॉडीगार्ड डेडिकेट किया था नीदा ने अपने फियांसे को. नुसरत जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अगला गाना है, ये जो गाना है ये है बॉम्बे मूवी से हम्मा हम्मा बाय रेमो फर्नांडिस एंड ए आर रहमान.
1: हमारी
0: याददाश्त बिल्कुल तेज है मनिंदर साहब, आपका गाना जरूर प्ले होगा.
1: उन्होंने मिस कॉल देके हमें बताया कि आप भूल गए. हम भूले बिल्कुल नहीं आप मनिंदर सिंह भाई, जरूर गाना चलाएंगे, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपना गाना सुने और धीरे से निकल जाएं. ऐसे नहीं करना, आपने रेडियो संगम के साथ रहना है, क्योंकि हम आपके साथ साथ हैं तो आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा.
0: बिल्कुल
1: भाई, कॉल करने के लिए नंबर रेडियो संगम का फिर से बता दें याद दिलाने के लिए.
0: जी हमें आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियो हॉटलाइन नंबर 01 4 8 4 8 1 7 7 0 5. आपकी सबकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, आप सबकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल बिंदास फोन कीजिए हमें. अगर आप वैसे भी बहुत शर्मीले तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए
1: 07 444 202 155. और उसके साथ आप हमें स्मार्ट स्पीकर पर भी सुन सकते हैं, बताए आपको
0: स्मार्ट स्पीकर पे,
1: हाँ, वहाँ पे भी आप.
0: अच्छा,
1: मतलब बहुत से रास्ते हैं ये रेडियो संगम, हम हमारा काम है दिलों को दिलों से मिलाना, तो जिस रास्ते से भी आप आना चाहेंगे हम आपको वेलकम करेंगे.
0: जी बिल्कुल,
1: हमारा काम दिलों को दिलों से मिलाना और मोहब्बतों को बांटना और नफरतों को तो बिल्कुल खत्म करना,
0: बिल्कुल खत्म करना है. जी बहुत
1: बहुत थोड़ी है, हमने मोहब्बत को फैलाना और नफरत को बिल्कुल खत्म कर देना.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल.
1: जी गाना कौन सा है?
0: जी ये गाना है हम्मा हम्मा बाय रेमो फर्नांडिस एंड ए आर रहमान फ्रॉम द मूवी बॉम्बे.

जी, वेलकम बैक टू द शो। नुसरत जी, आपको रिफत जी शुक्रिया बोल रहे हैं जो आपने गाना उनके लिए डेडिकेट किया, सो थैंक यू वेरी मच। निदा, थैंक यू सो मच आपकी हौसला अफजाई के लिए। अच्छा लगा कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है, हमारे गाने आपको पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये अगला गाना जो है वो है आपके लिए फ्रॉम द मूवी दिल से, फ्रॉम संग बाय सुखविंदर सिंह एंड सपना अवस्थी। एंजॉय कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा सुनना है। आपकी कुछ रिक्वेस्ट हम लोग ज़रूर लेंगे और बताइए कि हमारा शो आपको कैसा लग रहा है।

0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
1: Two. The Prime Minister has stopped short of agreeing with calls to ban pro-Palestine demonstrations, but is calling for tougher action. He wants those chanting anti-Semitic phrases to be called out after two Jewish men were stabbed in North London on Wednesday. Former Attorney General for England and Wales, Sir Anthony Ellis, wants Gaza marches stopped.
2: It's too little, really too late. Anti-Semitism has taken hold in the United Kingdom. It's as simple as that, and urgent action must now be taken. The Prime Minister's own independent advisor on terrorism legislation has described the situation as a national emergency.
1: The Health Secretary has been quick to downplay reports he's planning on trying to replace Sir Keir Starmer. Several newspapers say Wes Streeting and Greater Manchester Mayor Andy Burnham could be looking to unseat the Prime Minister. 5,000 US troops are preparing to leave Germany. Donald Trump is withdrawing them after a row with the country's Chancellor over negotiations with Iran. Former Royal Navy Commander Tom Sharp says cutting back American presence overseas won't help Mr. Trump.
3: It reduces their access. It reduces their influence. Ultimately, it makes them weaker. Even if you look at the Gulf, the amount of European countries, the amount of overflight from our bases, if you start paring that away, then eventually you become less safe yourself.
1: A teenager's being held in custody after crowds were told to leave a Peter Kay show in Birmingham last night. Police have now said no items of a suspicious nature have been found. In sport, Ipswich are on course to guarantee their return to the Premier League as they lead 2-0 in the second half at home to QPR. They'll clinch second place in the Championship with victory on the final day of the regular season. Middlesbrough are being held 2-2 at Wrexham, while Millwall are 2-0 up against Oxford. West Ham kick off at Brentford in an hour. And actor Michael Sheen, Ross Kemp and James Blunt are among the stars confirmed for the upcoming series of Celebrity Traitors. They are heading to the Scottish Castle to try to win £100,000 for a charity. That's the latest. I'm Victoria Lawrence.
4: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
5: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
6: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
5: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
7: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
8: Huddersfield ki fizaon mein bas ek khushboo. 30 barson ki mohabbat zaiqon ki ek kahani. Snooties Pizza Bar, jahan har lukma ek ehsaas ban jaye. 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर
9: 2 12 inch pieces for £12 3 12 inch pieces for £17 2 100% Angus beef smash burgers for £12 2 fresh chicken fillet breast burgers for £12 and 2 loaded fries for £10 also finally 3 tender meals just for £5
8: चाहे शाम हो या रात की महफिल हर लम्हा बन जाए खास हर जायका बन जाए याद आएं जायकों की इस महफिल में शामिल हूं स्नूटीज पिज़्ज़ा बार जहां हर बार दिल कहे बस यही है असल मजा
9: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
10: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
11: हाँ जी याद है.
10: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
11: हाँ जी चाहिए.
10: चांदी चाहिए?
11: हाँ जी चाहिए.
10: कहाँ से लोगे?
11: चाचा ज्वेलर.
10: फिर से बोलो.
11: चाचा ज्वेलर.
10: चूड़ी, कंगन, जुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा. जल्दी बताओ कहाँ से ਪੈਸੇ ਲੋਗੇ
11: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ
12: ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ
13: ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਕੀ ਆਫਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੱਥ ਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਕੀ ਬਣਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਕੀ ਬਣਵਾਈ ਆਧੀ ਕੀਮਤ ਮੇਂ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਕੇ ਕੋਕੇ ਕੀ ਕੀਮਤ 50 ਪੈਨੀ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ
14: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਪਨ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 11:30 AM ਟੂ 6:30 PM 218 ਕੁਈਨਸ ਰੋਡ ਹੈਲੀਫੈਕਸ HX1 4NE ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 01422342553 Get down there for some great bargains.
15: Jagte rehna, jagte rehna.
10: So jaunga to kya hoga, bhai?
15: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain, un sabse reh jaoge. Kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka, aur iske saath saath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
10: Stop! Arey wah! Paratha stop?
15: Haan na. Isiliye kaha jagte rehna. और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
10: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
15: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
16: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं द केकलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस, वेप्स और गम फ्राहम करते हैं जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 Kirklees Council Wellness Service हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़िए
17: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549 947. That's 01484 549 947.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

0: हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमशेर साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी हौसला अफजाई के लिए, थैंक यू वेरी मच आपकी हौसला अफजाई के लिए। शबाना जी थैंक यू सो मच आपकी हौसला अफजाई के लिए, थैंक यू सो मच। और अभी वक्त हो चला है 2:08, और इसके साथ हम अभी आपके लिए प्ले करेंगे कुछ बैक टू बैक सुरीले गाने, क्योंकि अभी मौका हो चला है रोमांटिक गानों का, रोमांटिक आवर का।
1: और पहले हमने महेंद्र सिंह काफी
0: देर जी बिल्कुल
1: का गाना पहले हम प्ले करेंगे
0: जी,
1: और उसके बाद 2-3 और अच्छे अच्छे गाने आपको सुनाएंगे। और शो हमारा और आपका साथ बिल्कुल 50 मिनट्स का बाकी, ओल्ड इज गो शो आपके साथ। आज हमारे साथ अब्दुल रहमान भाई हमारा साथ दे रहे हैं, और शमशेर भाई ने पाकिस्तान से कॉल किया, वो आपको वेलकम कर रहे हैं, गुड लक बोल रहे हैं आपको।
0: थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।
1: शमशेर भाई हमारे साथी प्रेजेंटर, आज शो करेंगे 7-10 तक, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और 3-5 तक कौन होंगे हमारे साथ?
0: 3-5 तक हमारे साथ होंगे जी निर्मल सिंह साहब जी,
1: उनका शो आपने जरूर सुनना है। और 5-7 तक नादिया कंवल, बिल्कुल नादिया कंवल शो। और 7-10 शमशेर असलम भाई, 10-12 तक बिलाल बासी भाई आपके साथ होंगे। तो उम्मीद करेंगे जी आप हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि रेडियो संगम आप लोगों के साथ 24/7। तो नेक्स्ट गाना जाएगा महेंद्र सिंह भाई आपके नाम, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के लिए और आपकी मिस कॉल के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें याद कराया कि गाना दिया है। चलिए ये गाना सुनते हैं और मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद
0: जी, बिल्कुल।

0: वेलकम बैक टू द शो. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. ये अगला गाना जो है ये हम डेडिकेट करना चाहे हैं फरीद अख्तर और मुबारक अली साहब को. थैंक यू सो मच आपके रिक्वेस्ट के लिए. और ये गाना रहा आपके लिए फ्रॉम द मूवी ये दुआ है मेरी रब से. कौन सी मूवी का गाना है ये?
1: आशिकी फिल्म का.
0: ये दुआ है मेरी रब से. मुझे याद नहीं आ रहा बट खैर अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी मूवी का गाना है. ये दुआ है मेरी रब से बड़ा खूबसूरत गाना है.
1: जितनी दफ़ा सुने ना आपको मज़ा आता है. इस गाने को एंजॉय कीजिए और हमारे साथ रहिएगा. थैंक यू
0: सो मच.

0: शमशेद जी, थैंक यू सो मच. आपने बताया, आप हमने करेक्ट किया, लेकिन हम एक्चुअली आपका जो है नॉलेज चेक कर रहे थे. तो हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब. मूवी का नाम है सपने साजन.
1: मैं बोल रहा था कि उनको पता नहीं होगा, लेकिन आपने बोला कि पता होगा, तो हमने चेक किया.
0: हाँ, हमने चेक कर रहे थे आपको जी. थैंक यू सो मच.
1: बिल्कुल मूवी सपने साजन के. नो, आज की मूवी नहीं है
0: जी, आज की मूवी नहीं है. मूवी का नाम है सपने साजन के.

हम आपका कोई इम्तिहान नहीं ले रहे हैं बट थैंक यू आपने बिल्कुल सही जवाब दिया शबाना जी थैंक यू सो मच आपकी हौसला अफजाई के लिए थैंक यू वेरी मच ये अगला गाना है तेरी चाहत के दीवाने हुए हम फ्रॉम द मूवी मिस्टर आशिक गाया है कुमार सानू अलका याग्निक ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने

0: जी जी जी वेलकम बैक वेलकम बैक। बताएं हमें आपको ये गाना कैसे लगा। शमशीद असलम साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, बहुत अच्छा लगा आप इतनी तारीफ कर रहे हैं।
1: लोग मैसेज कर रहे हैं कि अब गानों के ट्रैक से डिफरेंट पे जा रहे हैं, वो इसलिए कि जब ट्रेनिंग होती है ना छोटी छोटी बातें हो जाती
0: है। जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेरी पसंद और अब्दुलरहमान की पसंद टुगेदर लगा रहे हैं, जो कुछ उनकी पसंद कुछ मेरी पसंद और कुछ आप लोगों की पसंद भी। तो इसलिए अगर आपको फील हो रहा है कि गाने इधर उधर हो रहे हैं तो
0: जी बिल्कुल हमें जरूर बताइएगा और हमें बताइएगा कि हम अपना शो इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आप बिल्कुल आपका फीडबैक बहुत जरूरी है।
1: आप सुनना चाहते हैं क्या, सुनना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो हमारे लिसनर्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सुनना है और आपने बताना है कि कैसा शो रहा है क्या करते हैं, तो जरूर आप फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि शो को और हम कैसे बेटर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: तो नीली टाइम हो रहा है जी हमारा 2:25 और 3 बजे तक हम आएंगे या 5 बजे तक हमारा शो, मैं भूल गया।
0: 3 बजे तक तो फिर हम लोग फिर क्या करेंगे, अगर 5 बजे तक लेंगे तो हम लोग जो है निर्मल सिंह का भी वो नाराज हो जाएंगे।
1: कौन सा शो सुन रहे हैं
0: जी? निर्मल सिंह के साथ आप शो का शो सुनेंगे?
1: नहीं हमारा शो,
0: हमारा शो है जो है ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड
1: सुने ओल्ड के शिदाद के साथ, बल्कि शिदाद और अब्दुलरहमान भाई के साथ। ये न्यू प्रेजेंटर है जैसे आपको शुरू में बताया, बहुत जल्द आप उनको उनका अपना शो सुनेंगे। नाम सोचे अपने शो का आपने कोई?
0: अभी तक तो सोचा नहीं मैंने कुछ खास, लेकिन कुछ मस्ती वाला ही रखेंगे हम,
1: कुछ ऐसा कि
0: क्योंकि गाने तो बिल्कुल वैसे होने, एकदम मस्ती भरे, यू नो एकदम त्योहार वाले, डांस वाले, ड्राइव वाले गाने होंगे, तो कुछ मस्ती वाला ही नाम रखेंगे।
1: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप अपना शो करेंगे, जरूर आपके साथ रहेंगे, सुनेंगे भी
0: बिल्कुल।
1: आगे दोस्तों को बताएंगे कि अब्दुलरहमान भाई को आपने जरूर सुनना है जब भी वो शो करेंगे, और कॉल भी करेंगे आपको 01484817705 पे, या फिर ऐसे करेंगे मैसेज कर देंगे आपको 7444215 पे। और नेक्स्ट गाना अब्दुलरहमान भाई
0: जी, नेक्स्ट गाना है ये मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है, मतलब ये गाना मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि मतलब मुझे गाना बकायदा याद है। ये ए काश के हम संग बाय कुमार सानू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।

0: अच्छा, इतनी चोरी होती है आजकल, सोना रखूं तो रखूं कहां?
1: इसमें घबराने की क्या बात है, द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना, 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE, टेलीफोन 01422485679, ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com, द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स, सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस, इंश्योरेंस कवर अवेलेबल, 1 year कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस, 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road, Halifax, HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewelers.
2: Jagte rehna, jagte rehna.
3: So jaunga to kya hoga bhai?
2: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge. क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी।
3: स्टॉप, अरे वाह, पराठा स्टॉप।
2: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
3: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
2: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU, ओपनिंग सून, टेलीफोन 01484542700.
4: Bobby Fashion is all set to make your special day remarkable. Specializes in bridal wear, grooms wear and children's clothing for all occasions.
5: Visit karein Bobby Fashion, mention karein Radio Sangam ka naam aur paye 100 pound ki chhoot on bridal wear.
4: Also more discounts are available on bridal wear with party wear packages. Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
5: Amazing Asian clothing, also made to measure, orders with perfect fitting.
4: Special offers for Eids are also available now with a large collections of matching jewelry, bangles and much much more. Bobby Fashion at 312A Bradford Road, Huddersfield, HD1 6LQ.
5: Call 01484 769926.
4: Bobby Fashion, fashionable living.
1: And now with a free gift with every purchase.
6: Kya aap अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
7: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
8: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
9: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
7: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
6: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
7: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
10: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
9: Abhi call kijiye 01484-549947.
6: Training will be provided.
11: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
12: Are you peeping, Tom?
11: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
13: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
12: Come up and see me sometime.
11: Case closed.
14: लोग पहुंच चुके हैं शो के आखिरी आधे घंटे में. अभी टाइम हो चला है 2:35 और हाँ, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपकी तारीफों के लिए, आपके फूल के लिए, आपके पोइट्री के लिए,
15: सब के लिए। तो हमें कॉल भी आ रही है भाई, हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हम ऑन एयर अभी आपके कॉल नहीं ले सकते, नंबर एंडिंग 619
14: जी.
15: तो अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपसे जरूर बात होगी. तो कॉल की थी हमें
14: जी, हमें कॉल की थी अभी हाजी आफताब साहब ने ड्यूसबरी से. उन्होंने एक गाना डेडिकेट करना चाहा है अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को. गाने का नाम है आँखियों के झरोकों से, जो गाया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से लता मंगेशकर जी ने. तो हमारे साथ बने रहिएगा और काफ़ी सारे गाने हैं आपके लिए जब तक हम रहेंगे, तो हमें सुनते रहिएगा. दिस इज़ अब्दुलरहमान और शहजाद भाई ऑन द शो ओल्ड इज़ गोल्ड.

जी थैंक यू सो मच हमारा ये गाना सुनने के लिए। हाजी अफ्ताब साहब ये गाना था आपके लिए। हमारा अगला गाना जो है वो है, हमें रिक्वेस्ट की है कॉल करके गुल सफीना जी ने ब्रैडफर्ड से, उनका गाना सुनना है मतलबी लोग हैं यहाँ फ्रॉम द मूवी बेगाना। जी गुल सफीना जी आपने कहा था कि आपको पूरा गाना सुनना है, मैं और एंड टू एंड पूरा गाना सुनूंगी वरना मैं आपके शो में नहीं आऊंगी। जी बिल्कुल आपके लिए हम पूरा पूरा गाना प्ले करेंगे स्टार्ट टू एंड। ये गाना रहा आपके लिए गुल सफीना जी मतलबी लोग हैं यहाँ किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का. गुल सफीना जी, ये रहा आपका गाना. अभी उम्मीद है कि आप अभी हमारे साथ रोज जुड़ी हुई रहेंगी. और उम्मीद
1: आप यकीन
0: उम्मीद कर रहे हैं तो उन्होंने धमकी दी कि अगर आप मेरा गाना नहीं
1: चलाएंगे तो क्या कह रही थी मैं. हाँ, अदरमान भाई कहते चुप कर जाए साहब, मैं बोलना नहीं है क्योंकि गुलसफीना कह रही है कि पूरा गाना
0: पूरा
1: गाना चाहते हैं. और एक रिक्वेस्ट अभी नेक्स्ट हमें किसकी पूरी करनी है
0: जी? नेक्स्ट रिक्वेस्ट है शबाना जी की. उनका एक गाना रिक्वेस्ट किया उन्होंने, कितना प्यारा तुम्हें, कितना प्यार तुम्हें करते हैं.
1: याचिंग कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी करे देखता हूँ. आचिंग राजा हिंदुस्तानी फिल्म से.
0: हाँ जी हाँ जी.
1: अगर रॉन्ग है तो आप उनसे पूछे के फिर चेंज कर देंगे. आई थिंक वो डिफरेंट गाना बोल रहे थे लेकिन लाइनअप में ये डिफरेंट गाना चाह रहे हैं.
0: okay.
1: कोई बात नहीं, ये भी अच्छा गाना है,
0: ये भी अच्छा गाना है. इसके बाद हम आपका गाना जरूर प्ले करेंगे.
1: लेकिन फिलहाल हम इस गाने को सुनते हैं. और दुर्मन भाई लीली हमारा एंड करने प्रोग्राम कैसा लगा आपको, कैसा रहा आज का प्रोग्राम?
0: आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मुझे बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे. और काफी दिनों के बाद मैं एक्चुअली माइक पे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था लेकिन मुझे बड़ा मजा आया.
1: मेरे ख्याल से अच्छा किया आपने. सो फार सो गुड.
0: थैंक यू सो मच जी. थैंक यू सो मच.
1: चाहता हूं जल्दी आप ऑल इन ऑल हो जाएं
0: जी. बिल्कुल बिल्कुल.
1: जो भी कहना करें तो फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं. गाने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात ओल्ड इज गोल्ड शहजाद के साथ और अब्दुलरहमान भाई के साथ रेडियो संगम से. सुनते हैं आप रेडियो संगम को ऑनलाइन www.radiosangam.co.uk और आपको डाउनलोड कीजिए और जहां भी जाइए हमें अपने साथ साथ रखिए. सुनते हैं इस ब्यूटीफुल से गाने को, मिलते हैं आपसे गाने के बाद.

परचेस नहीं किया, लेकिन ये रहा आपके लिए बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर. उम्मीद है आपको हमारा पुराना गाना भी पसंद आया होगा, और ये जो गाना है आपका, ये आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो हम लोग प्ले कर रहे हैं.

0: जी वेलकम बैक। इस खूबसूरत गाने के बाद जो हमें शबाना जी ने रिक्वेस्ट की थी, किसी को डेडिकेट तो नहीं किया था उन्होंने, लेकिन बस रिक्वेस्ट की थी तो
1: नाम कर लेते हैं।
0: हाँ चलो, ये गाना तो हमारे नाम हो गया।
1: भाई के नाम और रशीद भाई के
0: जी
1: नाम।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बताया नहीं, रेडियो संगम की पूरी टीम के नाम,
0: रेडियो संगम की पूरी
1: टीम सुने, रेडियो संगम के सारे लिसनर्स के नाम,
0: पूरे रेडियो संगम के नाम हम लोग कर रहे हैं।
1: दुर्मान भाई टाइम बिल्कुल करिए जी, 5 मिनट है हमारा शो खत्म होने में, हमारे बाद निर्मल सिंह भाई, और उम्मीद करते हैं जैसे लोगों ने हमारा साथ दिया वो निर्मल सिंह भाई के साथ रहेंगे 3 से 5 बजे तक अपना पंजाब शो। और पूछे लोगों कैसा बताइए
0: आपको, जैसे भी हमारा शो लगा प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, हमारे चॉइस के गाने कैसे लगे, हमारी आवाज कैसी लगी, स्पेशली मेरी आवाज क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जी। आप शहजाद भाई को तो आप सुनते रहते हैं माशाल्लाह, शहजाद भाई जो हैं मैंने देखा है कि आप सबके फेवरेट हैं, यहाँ के सलमान खान लगते हैं आप मुझे।
1: मैंने बिल्कुल नहीं बोला आपको ऐसे कहने के लिए,
0: नहीं नहीं आपने मुझे नहीं बोला, मैं अपने दिल से बोल रहा
1: हूँ।
0: नहीं बस जो हम लोगों ने अमाउंट तय की थी वो मेरे अकाउंट में बस टाइम पे आ जाए। जी नहीं बट
1: अब्दुलमान अच्छे से किया आपने,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: और भी अच्छा करोगे
0: जी।
1: तो हमारी नेक्स्ट मुलाकात कब, हमारा नेक्स्ट शो ये भी बता देना
0: जी। हमारी मुलाकात होगी अगले सैटरडे वही 12 से लेके 3 बजे तक, और इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम आपके कुछ ज्यादा ही फेवरेट गाने प्ले करें, मतलब 90s 2000, लेकिन कुछ थीम अलग करेंगे, कुछ मजेदार करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे जिसमें हमारा इंटरेक्शन
1: होने वाला है इंशाल्लाह। आप इसको मिस करें जरूर, आपने ज्वाइन करना है
0: इंशाल्लाह।
1: तो ऑनलाइन भी सुनना है अपने आप पे, डाउनलोड कर लें हमें अपने फोन पे और डब रेडियो पे, ये बहुत से अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर बताएं कि अब्दुलमान भाई आ रहे हैं नेक्स्ट वीक 12 से 3 बजे तक। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से आपको गुड बाय, और अब्दुलमान भाई आप भी गुड बाय बोल दें,
0: गुड बाय, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आजू बाजू सबका ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।

निर्मल सिंह तुहाडे नूं मुखातब है अपना पंजाब प्रोग्राम लैके ड्राइव टाइम शो विच मेरे तो पहला साढ़े बहुत ही प्यारी जान सज्जाद साहब जिन्होंने तुहाडे नाल अपना प्रोग्राम शेयर किया और तुहाडा मनोरंजन किया तुसी इंजॉय किया होना खुद भी बड़े प्यारे है ते प्यारे प्यारे गीत प्यारी जी शायरो शायरी वो लेके आउंदे आ मेरा दिल नहीं सी करदा कि उन्हां नूं कर कला पर कहिंदे जी मैनूं भुख लगी आ मैं जाना जरूर है रेडियो संगम दा नंबर उही जाने पछाने याद रखना 01484817705 इसे तरह रेडियो संगम दी ऐप डाउनलोड कर सकते हो रेडियो संगम दा व्हाट्सएप नंबर 07442021555 नेट दे जरिए दुनिया च किते भी तुसी सुन सकदे हो ते चलो फिर आपां हुण अपना अज दा प्रोग्राम शुरू करदे आं जिवें तुसी सज्जाद साहब दा साथ दित्ता है उम्मीद है तुसी मेरे नाल रहोगे बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब तुहाडा अब्दुल रहमान अब्दुल्ला ये मेरी बी टीम है दाऊद बादशाह पप्पू मोरां वाले साढ़े बहुत ही प्यारे लिसनर है ये उन्होंने छोटे साहबजादे है ते जो तुतलियां तुतलियां जबाना च गल्लां करते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं आ एक मुंडे लाहौर दे आगे नू सुन दे

सिमरजीत कौर। मनप्रीत कौर ते जसप्रीत कौर ये सारे रेडियो संगम नू सुन रहे हैं। इको एक रेडियो तुहाडा अपना रेडियो दुनिया भर दे विच सुनिया जाना सारिया जुबाना दे विच गल्लां बातां करन वाला रेडियो रेडियो संगम। ते इस सहमा ने कहा सी तेरे वर्गे नू कौन पुछदा है, मेरे तां पूरे लाहौर दे ही मुंडे मरदे आ। चलो एक होर गीत सुनते आपां, रेशमी रुमाल वर्गी। वाह हुण कई कई गल्लां जिहड़े बच्चे बाहरले कंट्रियां दे विच बॉर्न हुंदे आ ते पेरेंट्स कोले भी इन्ना टाइम टाइम इन्ना इन्ना टाइम नहीं हुंदा कि ये जिहड़ियां साडियां पंजाबी दियां घरेलू गल्लां बातां जिवें गभरू, हुण हरेक नूं नहीं पता लगदा गभरू पंजाबी च कहिंदे आ। बहुत सारे वर्ड ऐसे है, मैं बथेरा कहा मैनू पंजाबी दा टीचर रख लो, मैनू मैनू कोशिश करता रहा।

0: Braveheart.
1: रेशम

रेशमी रुमाल वर्गी हूँ अजकल तो कोई रुमाल मूल रखता ही नहीं हूँ की करिए कोई जमाना हुंदा सी रुमाल निशानियां दित्तियां जांदियां सी ते कुड़ियां रुमाल रुमाल बड़े प्यार नाल कढ़दियां हुंदियां सी उहदे उत्ते आशकां दा नां लिखिया जांदा सी देख लो हुण तुसीं जमाना जमाना बदल गया

अमर अशी ते मैस पूजा जाने पिछाने ना है किन्ना पंजाबी प्यारा गीत है ओ वाह पंजाबी हो

हाजी स्टोर तो उन्होंने सारा स्टाफ पता की कहता साढ़े को आत्मावं बड़िया तड़फदिया यहोजे पांच सत गीत सानू सुनाओ

रेशमी रेशमी रुमाल वर्गी कुड़ी हाथ तो तिलकती जावे मतलब साहब हैलीफैक्स तो है कैनेडे जी इधर तो ठंड जी पैनी शुरू हो गई है हैलीफैक्स वाल पहला बड़ी गर्मी सी अच्छा जी कहते साडा सारयां नूं इस्लाम कह दिओ जिथों तक रेडियो संगम सुनिया जा रहा शबाना साहब कहते मेरा सलाम ना कितने भुल जाओ ते नहीं तो कहते अज गर्मी बहुत पै रही है देख लो जी

देख लो संगम फैमिली की हो जी है इस संगम फैमिली दा बहुत बड़ा परिवार है जिधर दूर दूर तक फैलिया हुआ किधरे गर्मी पै रही है किधरे ठंड जी पै रही है किधरे कहते जी साडा सलाम दूर तक पहुंचा दियो वालेकुम सलाम परवेज मसी साहब कहते जी साडा मसीही भरावां दा सलाम सारयां नूं कह दियो ते हैलीफैक्स वाले भरावां नूं जरूर पहुंचा दियो ते चलो आपां एक होर गीत वल वधदे आ कंठ कलेर दी आवाज है

तेरे नहीं कहिंदा विछोड़े ने मैनू मार ही दिता वाह वाह वाह कंठ कलेर दी आवाज बड़े प्यारे प्यारे गीत खुद लिखते हैं तो खुद गाते भी है आप भी सुनते हैं आ गीत तुहाडे सारयां दे नाल

0: ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਕਿਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ
0: ਓ ਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਡਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ
1: ਹੈ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ
0: ਖਾਦਮ ਸੁਪਰ ਸੇ ਬਰਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤਾਂ 100% ਦਲਾਲ ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਚਿਕਨ ਲੈਮ ਬੀਫ ਫਰੀ ਰੇਂਜ ਚਿਕਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚਿਕਨ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਨਲੈਸ ਗੁਰਦੇ ਕਲੇਜੀ ਬਟੇਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਛਲੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਬਲੈਤੀ ਕੁੱਕੜ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਬਸ ਬੰਦਾ ਲਿਆਏ ਪਕਾਏ ਤੇ ਖਾਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਏ
1: ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ
0: ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
1: ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ
0: ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆ ਮੌਲਾ
2: ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹੇਗੇ ਆਪ ਜਾਈਏ ਹਾਜੀ ਸਰਵਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਖਾਦਿਮ ਸੁਪਰ ਸੇ 1 ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਬਰਕਵੀ ਹਰਿਸਫੀਲਡ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 9 ਟੂ 7 ਐਂਡ ਸੰਡੇ 10 ਟੂ 6 HMC ਅਪਰੂਵਡ 100% ਹਲਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 01484456257 ਦੈਟਸ 01484456257
3: શું તમે ધૂમ્રપાન છોડવાનું વિચારી રહ્યા છો કે પ્લીઝ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ તમને દરેક પગલા પર ટેકો આપવા માટે કહી છે જો તમે ધૂમ્રપાન છોડવા માટે તૈયાર છો તો અમારી મૈત્રીપૂર્ણ ટીમ મદદ કરી શકે છે અમે ધૂમ્રપાનની તૃષ્ણાઓ ઘટાડવા અને છોડવાનું સરળ બનાવવા માટે પેચ વેપ્સ અને ગમ સહિત મફત ધૂમ્રપાન બંધ કરવા માટે સપોર્ટ પ્રદાન કરીએ છીએ ધૂમ્રપાન છોડવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થાય છે તમારા પરિવારનું રક્ષણ થાય છે અને ખરેખર મહત્વની બાબતો માટે તમારા પૈસા બચાવે છે અને અમારા સમર્થનથી તમે એકલા ધૂમ્રપાન છોડવા કરતા સફળતાપૂર્વક છોડવાની શક્યતા 3 ગણી વધારે છે શરૂઆત ઝડપી અને સરળ છે આજે જ cuckleswellnessservice.co.uk ની મુલાકાત લો અથવા 01484-234-0095 પર કોલ કરો કીર્તિસ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ કાયમ માટે છોડી દો
2: سن ذائقہ الموت ہر نفس کو چکنا ہے موت کا ذائقہ قبر کا کتبہ یعنی ہیڈ سٹون بنوانا ہو یا قبر کو پختہ کرانے کا ارادہ ہو یعنی کراس راؤنڈنگ مدنی میموریل ڈیوزبری گرینٹ اور مابل سے بنے ہیڈ سٹون اور کراس راؤنڈنگ خوبصورت مضبوط پائیدار اعلی کوالٹی اور گارنٹی کے ساتھ اور نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
4: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلی فون 01924 466771 Mobile 07971092790 Please remember branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
2: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Singham team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
5: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
6: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
7: लानिका
8: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये लानिका कौन है
7: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं
8: और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे।
9: अच्छा लानिका, वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है?
8: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, उनका बुफे भी कमाल का है। और जानती हो, वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं।
9: वो पैसे खर्च करके आए होंगे।
8: कंजूस कहेंगी। उनका बुफे मंडे टू थर्सडे $22.99, फ्राइडे टू संडे $24.99, अंडर 10s $11.99 एंड अंडर 4s फ्री।
9: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए।
8: क्यों नहीं, वो है भी हमारे करीब, पेलन न्यू रोड हैलिफैक्स HX14QE, और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं। जरा नंबर मिलाओ 01422613613, अभी बुक कर देते हैं।
2: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
10: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
11: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
12: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
10: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
2: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
10: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
13: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
14: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
2: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
15: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
16: आर यू पीपिंग टॉम?
15: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ माय ओन कंक्लूजंस। It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
17: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
16: Come up and see me sometime.
15: Case closed.
2: Aap sun rahe hain Radio Sangam 107.9 FM. Dilon ko milane wala.
18: रोतों को हंसाने वाला, दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM।

वजाहत साहब मैनचेस्टर तो है तुहानू सारयां नू सलाम कहंदी है नादिया साहबां हमेशा दी तरह आज भी कहंदे जी ब्यूटीफुल सॉन्ग अब्दुल क्यूम जमाती साहब इरादरम तो है ते तुहानू सारयां नू सलाम कहंदे आ ऑलवेज मेरे नाल नाल मेरे प्रोग्राम च रहिंदे आ सारे दी हौसला अफजाई करते रहिंदे आ बहुत शुक्रिया चलो आ पंजाबी च ना बोलियां सुनाउने अज जिवें कहिंदे बारी बरसी खट्टण गया सी खट के लिया आ ते ए लैंबर हुसैनपुरी दी आवाज है ते ये सारियां गल्लां पुराने विरसे नाल जुड़ियां हुई हैं जिवें तियां लगदियां हुंदियां सी पुराना पुराने टाइम दे विच सौण भादों दे दिनां दे विच कुड़ियां सारियां अपने सहुरियां तों पेके घर जांदियां ये रस्म हुंदी सी ते मिलन जाणा हुंदा सी ते उदों फिर सारे पिंड दियां कुड़ियां कोई किते व्याही जांदी आ कोई किते व्याही जांदी आ ते फिर एक दूजे नाल वादा कर दिया भी आप अगलिया तीन तीया आ रही तो वह आप तीया मिलांगे तीया पिंड के बाहरले पासे एक वेली थां आउंदी सी जिथे कुड़ियां कतरियां बोलियां बोलियां पाउंदियां

0: 2553. Get down there for some great bargains.
1: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
2: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
3: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
4: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
2: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
1: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
2: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
5: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
6: अभी कॉल कीजिए 01484549947.
1: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड.
7: लो भी पढ़ते प्रभो प्रभो मेरी गल सुनो और सुन लो भाई.
8: जी फरमाइए जी.
7: वक्त हो गया मेरे आउंदा ते वधिया वधिया वधिया गीत लाउंदा. उर्दू हिंदी ते पंजाब दी बोली ते गल्ला करांगे हौली हौली. लोकी मैनू कहंदे ने पंजाब दा किंग ते आ

निर्मल सिंह। अवतार सिंह बिल्डर, उन्होंने सारी टीम।

मेहरबान आसफ राजा अशरफ रोचडेल ते विक्की मेडलैंड स्ट्रीट वाले कहंदे जी साडे वल्लों सारयां नूं सलाम ते नमस्ते कह दिओ ते सति श्री अकाल कह दिओ नादिया साहबां कहण लगे मेरी सारयां नूं सलाम दे दिओ ते तुहानूं वी भरा जी बहुत शुक्रिया साडियां भैणां भरावां दा ख्याल रखदियां हैं उन्हां नूं सीसां दिंदियां दुआवां दिंदियां ते नादिया कहण लगे जी एक गीत भी साडे वल नूं सिट दिओ सिटना क्यों सुखी संदी है अब्दुल क्यों जमाती साहब कहिंदे जी वाह जी वाह निर्मल जी आ जांदे हो रौनक लग जांदी है ਹੋਰ ਜੀ ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਮਸ਼ੈਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

एक गीत सुन दे। जी शांत रोकड़ी तो सारे देना बल्ले बल्ले

अफजल साहब, पप्पू पप्पू मोहरा वाले कोशिश कर रहे थे गलबात करिए। मैंने ये ऑन एयर जाना पे तुहाडा बहुत शुक्रिया। रजिया साहब कह लगे जी प्रोग्राम

प्रोग्राम बड़ा ही पसंद है ते चंगा है पंजाबियों दा प्रोग्राम है तुसी चक के रखिया होया हां जी हां उधरों चक्या ते इधर रखता

साबर अली साहब हमेशा की तरह साढ़े नाल नाल ते तुहानू सलाम कर रहे हैं। साबर साहब बड़ी प्यारी आवाज के मालिक है, खुद एक सिंगर भी है ते मज भी कम भी नाल नाल करते रहते हैं।

0: Braveheart.
1: गुलाब दी आवाज है, गिला तेरा करिए असी मरना चाहिए।

नदिया एक गीत तुहाडे नाल भी है रजिया कहिंदे जी गाने बड़े प्यारे लगते हैं एक जबान पंजाबी सोने ते सुहागा के

वाकई कहिंदे जी गिला तेरा असी करिए ते असी मर ना जाइए जे बहुती गल तां साडे मुंह ते गल करा दे वाह लिखण वाले तां लिखण वाले गाउण वालेयां दी तां फिर क्या ही बात है हरुण साहब शेखपुरा पाकिस्तान तारक मौला मीरपुर पाकिस्तान तुहानू सलाम कहिंदे

रिफत सहमत इन्हों की एक फ्रेंड कहते जी ये जरा निर्मल सिंह का पंजाबी का प्रोग्राम है ना मैनू बड़ा पसंद है बहुत शुक्रिया नाल नाल रहा करो साढ़े नाल रहोगे तो ऐश ही करोगे पक्की पका

डॉक्टर अलियास ओना दी फैमिली स्पेंसर रोड वाली जड़ी ग्रेंज ग्रुप प्रैक्टिस है ते उठों दा सारा स्टाफ तो अनु सलाम ते सत श्री अकाल कह रहे हैं।

0: you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: Bobby Fashion is all set to make your special day remarkable. Specializes in bridal wear, grooms wear and children's clothing for all occasions.
3: Visit kare Bobby Fashion. Mention kare Radio Sangam ka naam aur paye £100 ki chhoot on bridal wear.
2: Also, more discounts are available on bridal wear with party wear packages. Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
3: Amazing Asian clothing. Also, made to measure. Orders with perfect fitting.
2: Special offers for Eids are also available now with a large collections of matching jewellery, bangles and much, much more. Bobby Fashion at 312A Bradford Road, Huddersfield, HD1 6LQ.
3: Call 01484 769926.
2: Bobby Fashion, fashionable living.
0: And now with a free gift with every purchase.
4: जागते रहना जागते रहना
5: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
4: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
5: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
4: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
5: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
4: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
6: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
0: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewellers.
7: Thinking about quitting smoking? The Kirklees Council Wellness Service is here to support you every step of the way. If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleyswellnessservice.co.uk or call 01484 234095 today. Kirklees Council Wellness Service. Quit for good.
8: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.

सुल्ताना साहबा तुहानू सत श्री अकाल सलाम ते नमस्ते कह रहे हैं। सुल्ताना कहन लगे जी असी सोचा सी भी

सुल्ताना सभा कह लगे असी सोचा सी भी खिच धू के दोनों पंजाब एक कर देने हैं पर तुसी ता साडा फोन ही नहीं चकते ना तुसी साडा मैसेज देखते हैं ते ये तो फिर चंगी गल ना ना हुई इस तरह हो नहीं सकता बाजी इस तरह नहीं है आप कट्ठे ही हैं बहुत पुराने कट्ठे हैं ते हुण भी कट्ठे ही हैं देखो आप रेडियो ते मिलते हैं तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुसी हौसला अफजाई करते रहिंदे हो चलो माड़ी मोटी कोई तुहानू पता पंजाबी च गलती गलती हो ही जाती है कोई नहीं तुसी पंजाबी च माफ कर दिया करो ते एक होर पंजाबी दा गीत है मैडम नूर जहां हुना दी आवाज है ते सुल्ताना जी ये तुहाडे नां है बस होर नहीं किसे नूं सुनाउणा।

सुल्ताना सभा कह लगे जी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच और ढेर सारे फूलों उन्होंने नवाजे व्हाट्सएप दे राही उन्होंने फूल भेजे एक गुलाब का सोहना जिहा फुल है विच मजेंटा कलर यानी मेरे रंग वर्गा

यासर शाह आलंड मोबाइल इन्हों की सारी टीम ते बशीर साहब खुरम साहब अमीरा साहबा ये सारे आइलैंड तो तुहानूं सलाम कहिंदे आ। यासीन भट्टी ते इन्हां दे होर कई दोस्त जिहड़े इंडियन दोस्त है कहिंदे जी असीं सारे मिल के रहिंदे आ ते एक गीत कहिंदे जी मेरे वल्लों कहिंदे साबर अली साहब दे नां कर दिओ कहिंदे दुबई तां अजकल गर्मी बहुत पैंदी ना ही आयो आहो तुसी समुंदर दे किनारे बह के सारे नज़ारे ले लो ते सानू कहिंदे तुसी आयो ही ना तुहाडी मर्जी है कश सैन ये भी दुबई तो है कहिंदे नज़ारे या आजो दुबई दियां तां क्या ही बातां है अजकल उतों का प्रिंस कहिंदे पैसे वंडन लगा होया तुसी भी लै जो दो जिहड़ियां दो चार ड्रामा भर के लैके जाने

कृष्ण दे माल को सताया ना करो की गल होगी पहला पहला तो बड़े भज भज जाते सी ते हुण कहिंदे सानू सताया ना करो क्यों चलो खैर

0: मनावर साहब हैलीफैक्स जफर इकबाल साहब ये भी तुहानू सारयां नू सलाम कहिंदे आ अजरा साहिबां नसरीन अख्तर साहिबां ये भी सारे हैलीफैक्स तो हैं कहिंदे जी क्या ही बात है पंजाबियां वास्ते तां फिर प्रोग्राम चक के रख दिओ ओ नहीं जी रेडियो उत्थे ही है स्टेशन भी उत्थे ही है एक होर गीत रेशमा जी दी आवाज है किते नैन ना जोड़ी किते नैन ना जोड़ी तैनू वास्ता खुदा दा वागा वतना नू मोड़ी और कली कली गलता दिल बड़ा करदा हुंदा भी तर्जमा करा आवागा वूगा वेख लो ये भी तर्जमा मंगदी हैं खैर एनीवे मेरा और तुहाडा साथ इत्थों को तक दा दुराने प्रोग्राम किसी किस्म की कोई ऐसी गलती हो गई हो या कोई लफज है जा जिहड़ा तुहानू ना पसंद हो तां मैं माफी चाहना है ते मेरे तो मैं मेरे तो बाद नादिया कनवाल साहबा ने आना है ते उन्हां दा प्रोग्राम भी बहुत प्यारा हुंदा है जिन्ना कि तुसी मेरा साथ दिता है ते मेरे तो वध उन्हां दा भी साथ इसे तरह ही देना है गुड बाय किते नहर ना जोड़ी मेरे तक ही रहा जो ते विछोड़िया नू अग लाइए आए हाय
1: मन जोर मिया गम दिलां विच
0: गर्म दिलां विच वास्ते ते किते जिउंदे ही ना मर जाइए विछड़े ही ना किते मर जाइए नहीं नहीं गुड बाय कल अपां फिर मिलना है मेरे नाल नाल जो थैंक यू वेरी मच

मजर जी अमान तू सत बिस्मिल्लाह जी आया नू उम्मीद है तुसा ठीक ठाक हो सो तुसा किया गाना अच्छा लगा तौफीक चढ़ेंदा सुप्तैन अजमल नी खूबसूरत आवाज़ी

वेलकम बैक जी सत बिस्मिल्लाह जी आया तुसी बहुत ही सोहना जिहा गाना सुनिया जी साढ़े बस होंदा ते इत्थे मुल लै लैंदे उम्मीद है कि तुसां की पसंद आया सुबतैन अजमल नी खूबसूरत आवाज़ विच सुनिया समातां ने ना सोहना जिहा गाना कीता सी इमरान सादक जी और सैमी खान जी तुसां दियां मुहब्बतां दा शुक्रिया और मजर जी सामिया जी फरीद खान जी सत बिस्मिल्लाह जी आया नू जितने भी इस वक्त रेडियो संगम ने नशरियात सुन रहे ना सोनिया समाता ने ना एक सोना जिहा होर गाना करने जी अजमल अमजद अली मस्ताना ने खूबसूरत आवाज सजन गुलाब दे फुल वर्गा उम्मीद है कि तुसा की पसंद आपसी मिलकर सुनने जी सोना जिहा गाना

बड़ी मेहरबानी जी सुनिया मोहब्बताना बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम में शामिल होए तुसा कि भी ये गाना सुने ना कर सा और आगे जाके भी और भी कोई भी सुने ना गाना जरूर कर सा ते तुसी एंजॉय कर रहे हो तुसनिया

वेलकम बाग जी सत बिस्मिल्लाह जी आया नू मजर जी मान तो ये गाना तुसा की भी पसंद आया तुसा ने ना भी करने सुल्ताना जी तुसा ने ना किता तुसी क्या है कि तुसी इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम नू बहुत शुक्रिया ते तुसी सानू वेलकम भी किता तुसा ने मोहब्बताना बहुत शुक्रिया हुण असी सुनसों जी सोना जिहा गाना दिल दे मरीज एंड उम्मीद है कि तुसा की पसंद आपसी एंड समीर जी फ्रॉम पाकिस्तान तो फातिमा जी इमरान सादक जी सामी खान जी मजर जी फ्रॉम ओमान तो आयजा जी एंड सामिया जी सोनिया मोहब्बताना बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम में शामिल होए एंड सुल्ताना जी तो सोनिया मोहब्बताना भी बहुत शुक्रिया फरीद खान जी तुसाने ना कर सी दिल दे मरीज हाँ और साकब महमूद जी यही गाना ड्यूसबरी तो तुसी साड़ा साथ निभारे तुसी कहने हो कि होव आर यू जी अल्लाह ना शुक्र मैं ठीक ठाक हाँ उम्मीद है कि तुसा भी ठीक ठाक हो सो जी तुसी कहने हो कि इंजॉइंग योर शो बड़ी मेहरबानी जी तुसानिया मोहब्बताना बहुत शुक्रिया तुसी आए हो प्रोग्राम में शामिल होए हो ते प्रोग्राम की चार चांद लगाए ने सोना जहा गाना तुसाने ना कर सा रोहिन अली और सदफ खान ने खूबसूरत आवाज़ा दिल दे मरीज हाँ उम्मीद है कि तुसा की पसंद आवसी और जितने भी इस वक्त रेडियो संगम ने नशियात सुन रहे सुनिया समाता ने ना सोना जहा गाना कर सा तुसा की दसने चलिए रेडियो संगम ने नशियात हरसील तो सुन रहे हो और इस निगर धनवा तो अगर फोन करना चाहो तो तुसी कर सकते हो 01484817705 अगर फोन करना चाहो तो तुसी कर सकते हो इस नंबर पर अगर वट्सअप करना चाहो तो वट्सअप भी कर सकते हो 07444202155 फरीद खान जी तुसी क्या यस तुसाने ना कर सा दिल दे मरीज हाँ और साकब जी ड्यूसबरी तुसारा साथ निभारे उम्मीद है कि तुसा भी ठीक ठाक हो सो बहुत शुक्रिया तुसी पूछा की हाल तुहाडे जी अल्लाह ना शुक्र है दुआ तुसाने तो उम्मीद करने कि तुसा भी ठीक ठाक हो सो और तुसाने अहले खाना भी ठीक ठाक हो सो अल्लाह पाक तुसा की सेहत अली लंबी जिंदगी दे सुनने जी मिल के सोना जहा गाना दिल दे मरीज उम्मीद है कि तुसा की पसंद आवसी

इमरान सादक जी और सैमी खान जी एंड रहीम जी तुसी आज गैब हो ते जे तुसी सुन रहे हो ते तुसाने नाम ही गाना करने हैं अल्लाह खैर करे तुसी आज किधर गए हो गए ते तुसी अपनी हाजरी लुआने होने हो जिते भी रहो जी तुसी खुश रहो ते सोना जे गाना तुसाने नाम ही करसा उम्मीद है कि तुसा की भी पसंद आवसी

वेलकम बाग जी, सत बिस्मिल्लाह जी, एनू जी, बहू जी मरीज हाँ। सब मरीजा ने ना किया, उम्मीद है कि हूँ थोड़ा कुछ उन्हें की आराम आया। उसी फरीद खान जी, तुसानियाँ मोहब्बत ना शुक्रिया। साकब जी ड्यूजबरी तो सारा साथ बार, और जो भी इस वक्त मेरे वीर टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर, और जिते जिते भी जो जो भी काम कर रहे, उन्हें सोनिया समात ने ना शबाना सावल ने खूबसूरत आवाज़ डोल ड्राइवर कर सक खुशी तौर पर जी। फरीद खान जी, अगर तुम इस वक्त कम तो अल्लाह पाक तुसने कम बिच और तुसानी उम्र रिज़्क बरकत दे, सेहत लंबी जिंदगी दे, तुम भी सुन रहे हो डोल ड्राइवर। उम्मीद है कि तुम पसंद करो।

वेलकम बक जी सत बिस्मिल्लाह जी आया न तुसने मोहब्बता ना बहुत शुक्रिया माधर चाने के ये गाना पे लग गया सी असी फोन ते थोड़ा बिजी सा बस हूँ ये कुछ हो सी कि देखो देखो कौन आया एम एच सदाई जी ना फोन किया ना तो फिर थोड़ा जहा सिस्टम भी ना

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
2: थिंकिंग अबाउट क्विटिंग स्मोकिंग The Kirklees Council Wellness Service is here to support you every step of the way. If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleeswellnessservice.co.uk or call 01484 234 095 today. Kirklees Council Wellness Service. Quit for good.
3: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
4: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
5: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
6: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
4: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
3: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
4: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
7: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
8: Abhi call kijiye 01484-549947.
3: Training will be provided.
9: LEMFI means a quicker and safe way to send money.
10: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
9: LEMFI means a 10% cashback on transfers over £100 using code Sangam.
10: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
9: Download the LEMFI mobile app today.
10: LEMFI is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.
11: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app, download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
12: Tory leader Kemi Badenoch criticising Sir Keir Starmer for what she calls his lack of action on tackling anti-Semitism. The Prime Minister says he wants to see a tougher response when certain phrases at Gaza demos are heard, but he defends the right of peaceful protest. Two Jews were stabbed in North London on Wednesday. These pro-Palestine supporters at a rally in Lewisham, South East London, don't believe marches lead to attacks.
13: We've never advocated any violence, and people are very, very safe.
14: I have never heard any hate speech or anything else.
15: What's happening to Jewish people is wrong. We can't then make a conclusion that is because of the marches.
12: A 25-year-old man is fighting for his life in hospital after a shooting in South London early this morning. Three others were also injured after shots were fired from a vehicle in Brixton. Their injuries are not life-threatening. NATO insists it remains confident in its defence capabilities despite threats from Donald Trump to withdraw 5,000 American troops from Germany. It equates to 15% of US forces there. Tonight's Peter Kay Show in Birmingham will go ahead as planned after a suspected bomb hoax last night. The comedian was ushered off stage. To sport, and Arsenal are attempting to go 6 points clear at the top of the Premier League. Live to Kat Suave.
16: It's Arsenal 1, Fulham 0. It was a beautiful setup from Bukayo Saka, who swung the ball into the box from the right-hand side, where Gyökeres was waiting to tap the ball into the back of the net. Calafiori, meanwhile, has just had his header ruled off by VAR. Arsenal haven't lost in 32 home league games against Fulham. They aren't looking to change that today. Arsenal 1, Fulham 0.
12: West Ham's hopes of avoiding relegation have been dealt a blow with a 3-0 defeat at Brentford. Ipswich will be back in the Premier League next season after a 3-0 win against QPR. And Livingston's relegation from the Scottish Premiership has been confirmed after Kilmarnock beat Dundee United. That's the latest. I'm Victoria Lawrence.
17: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
18: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
19: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewelers.
20: हाँ भाई बच्चों कल का सबक याद है?
21: हाँ जी याद है.
20: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
21: हाँ जी चाहिए.
20: चांदी चाहिए?
21: हाँ जी चाहिए.
20: कहाँ से लोगे?
21: Chacha Jewelers.
20: फिर से बोलो
21: चाचा ज्वेलर्स
20: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
21: चाचा ज्वेलर्स
22: केडियां ऑफर लाईया वा सानू भी तो दसो
23: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू
24: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 a.m. टू 6:30 p.m. 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE. Telephone number 01422342553. Get down there for some great bargains.
25: Jagte rehna, jagte rehna.
26: So jaunga to kya hoga bhai?
25: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aalu ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka aur iske sath sath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
26: Stop. Are wah. पराठा स्टॉप
25: हाँ ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
26: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
25: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
3: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.
27: LEMFI means a quicker and safe way to send money.
28: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
27: LEMFI means a 10% cashback on transfers over £100 using code SANGAM.
28: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
27: Download the LEMFI mobile app today.
28: LEMFI is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.

वेलकम बैक जी सत बिस्मिल्लाह जी आया नू प्रोग्राम ने दूसरे और आखिरी हिस्से तुसा सारयां की एक बारी फिर खुश आमदीद जी आया नू कहने आ सत बिस्मिल्लाह करने आ जी तुसां दी मोहब्बतां दा बहुत शुक्रिया तुसी सुन रहे सी लोहे दा चिमटा शफाउल्ला खान रोकड़ी नी खूबसूरत आवाज़ च उम्मीद है कि तुसां की पसंद आया उसी सब तो पहले जी स्टूडियो निकलने मुताबिक टाइम मिला कि 6:12 और 12 सैकेंड हो गए दिन है जी आज सैटरडे ना 2 तारीख है 5 May 2026 स्टूडियो नंबर जी 01484817705 अगर तुसी फोन करना चाहो तो फोन कर सकने हो माजरत चासा सुल्ताना जी तुसा नाल गल नहीं हो सकी कि मैं दूसरी लाइन ते मसरूफ सा एन किंग जी हेकमत वाइट टू तुसी फोन किया माजरत चाणिया तुसा नाल भी गल नहीं हो सकी यही सोना जिहा गाना तुसा ने नाम ही कर सा मुबशर साढ़े साथी प्रजेंटर जी सत बिस्मिल्लाह जी आया नू बहुत ही प्यारे वीर बहुत ही सोहना जिहा प्रोग्राम सोनी खिदमत पेश करने ने एवरी मंडे 9 to 11 तक तो वह भी हूँ प्रोग्राम में शामिल होए उन्होंने मुहब्बत का भी बहुत शुक्रिया उन्होंने की भी लोए का चिमटा आई थिंक अच्छा लगा यही उन्होंने नाम ही करने है। और जितने भी इस वक्त रेडियो संगम ने नशिया सुने सोहनिया समाधा ने ना सोहना जिहा गाना शफाउल्ला खान रोखड़ी मरहूम ने खूबसूरत आवाज रहीम जी तो सामने गल करके अच्छा लगा है मैं शदाई साढ़े साथी एंड सर जी उन्होंने भी गल करके अच्छा लगा एक गाने ने फरमाइश की तो जिम्मे कि मिल गया तो जरूर लासा तो सारे दिन मोहब्बत का बहुत शुक्रिया इमरान सादक जी सामी खान जी मजहर जी एंड फातिमा जी समीर जी साइमा आजा जी एंड समिया जी उस्मान भाई फ्रॉम इटली टू किंगी हकमत वाइट टू एंड सुल्ताना जी रहीम जी एम एच शुदाई जी मुबशर जी फरीद खान जी साकब महमूद जी और भी जितने इस वक्त रेडियो संगम ने नशा सुन रहे जो भी हूँ गाना चाह रहा है तो बाकी थोड़ा जरा रह गया मिलके सुनने तो इसी तरह ही फिर प्रोग्राम की अगे लैके चल सौ मेरा तो सना साथ हो सी जी 7 बजे तक उम्मीद है कि तुसा मेरे नाल नाल ही हो सो और साथ दे रहे हो तुसानिया मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया उस तो बाद जी मेरे तो बाद सन शमशेद असलम जी सोना जहा प्रोग्राम सोनी खिदमत पेश कर सन पाकिस्तान ने स्टूडियो तो और अज बिलाल भाई जीरा नहीं होने लगे तो आई थिंक उन्होंने बैक टू बैक सुनना पैसी बिलाल भाई जीरा अज नहीं आने लगे उन्होंने प्रोग्राम नहीं आने लगा अल्लाह खैर करे पता नहीं कोई होसी ने कोई काम वगैरह जा अपना कोई भी मसला अल्लाह पाक उन्होंने वास्ते आसानियाँ करे तो सेहत लंबी जिंदगी देने मिलकर सुनने जी लोहे का चिमटा शफाउल्ला खान रोखड़ी ने खूबसूरत आवाज़ सोनिया समाता ने ना सोना

0: वेलकम बाग जी सत बिस्मिल्लाह जी आया नो किंग जी तुसी फोन किया तुसा नाल गल करके बहुत अच्छा लगा तुसी इस गाने ने फरमाइश की पर यह गाना मैं पहलू ला चुकी स पर कोई गल नहीं तुसा दी मोहब्बताना बहुत शुक्रिया तुसी पहली बार प्रोग्राम में शामिल होए तो सोहना जहा गाना सज्जन गुलाब दे फुल वर्गा मजीद अमजद अली मस्ताना की खूबसूरत आवाज़ उम्मीद है कि तुसा की पसंद आपसी और तुसी प्रोग्राम ने तारीफ की और मेरी तारीफ की पर मैं हूँ अपने आप मियाँ मिठू तो नहीं कहना तो कम उ होना जरा कि दूसरे सरान और कैन हौसला अफजाई कर मोहब्बताना बहुत शुक्रिया डेरों दुआवां देने ना शुक्रिया तुसी इस गाने ने फरमाइश की तुसी पहली बार प्रोग्राम में शामिल हो तुसानिया मोहब्बताना बहुत शुक्रिया सोहना जहा गाना तुसाने ना करने कि सज्जन गुलाब दे फुल वर्गा किंग जी तुसाने ना दो बोल कट्टन गे सो शुरू तुसा की सुनाने
1: पतंग

वेलकम बाग जी सत बिस्मिल्लाह जी आया नु तुसनिया मोहब्बता ना बहुत शुक्रिया नदीम जी ड्यूजबरी तू तुसन नाल गल करके बहुत अच्छा लगा तुसी कह रहे हो कि लाला तावला नी खूबसूरत आवाज ही तुसी सुनना चाहने हो तेनु मैं खुश देखना चाहना तुसी कह रहे हो कि मैं पहली बार तुसने प्रोग्राम विच शामिल होया बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी ते तुसी अगे भी एक दो प्रेजेंटरां की कहने हो कि मैं फोन किया वैसे मैं सुनना रहना तुसना शो ते बहुत अच्छा ते पर मैं आज एक गाने नी फरमाइश करना चाहना वा कि तेनू मैं खुश देखना चाहना लाला तावला नी खूबसूरत आवाज उम्मीद है कि तुसां की पसंद आ उसी ते मिलके सुनने जी सोहना जिहा गाना लाला नी आवाज विच और यही ना कर सां जी मुबशर जी तुसां ने ना साढ़े साथी प्रजेंटर और रिफत जी नदीम जी खसूसी तौर पर तुसां ने ना में और किंग जी हकमन वाइटू और सुल्ताना जी रहीम जी तो सानू गल करके बहुत अच्छा लगा तुसी कहने हो कि अज बहुत सोहने गाने ला रहे हो और सोहना प्रोग्राम है ते तुसी इस वक्त कम ते रवां दुआ ते अल्लाह पाक तुसने घर बार विच और कम विच बरकत दे ऐसे ते लंबी जिंदगी दे प्रोग्राम में शामिल होने वास्ते शुक्रिया और साढ़े सर जी एम एच शदाई जी तुसानियां मोहब्बताना भी बहुत शुक्रिया और जितने भी इस वक्त रेडियो संगम ने नशा सुन रहे सुल्ताना जी साकब जी फरीद खान जी और मुबशर जी रिफत जी सारिया ने ना कर सा और इमरान सादक जी सैमी खान जी मजर जी फातिमा जी समीर जी एंड समिया जी आयजा जी उस्मान भाई इटली तो सारिया ने मोहब्बता ना बहुत शुक्रिया मिलकर सुनने जी लाला ने खूबसूरत आवाज़ इच पेशकश रेडियो संगम ने और पसंद जी नदीम जी दानी सुनिया मोहब्बता ना बहुत शुक्रिया

सुल्ताना जी तो सन और गल करके बहुत अच्छा लगा बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम विच फोन कीती सन गल करके बहुत अच्छा लगा तुसा हौसला अफजाई कीती और कहड़े हो कि बहुत ही सोना प्रोग्राम नाइस होना नॉर्मली असा टेक्स्ट करने आज के आए कि फोन करके गल करके नहीं बहुत अच्छा लगा बड़ी तुसानी मेहरबानी शुक्रिया अकमल जी सत बिस्मिल्ला जी आया ना तुसा मी प्रोग्राम में शामिल होए तुसी कहने हो कि हाय नादिया जी कैसी हैं जी अल्लाह ना शुक्र ठीक ठाक उम्मीद है तुसा भी ठीक ठाक हो सो अल्लाह पाक तुसा की भी अपने जमाने च रखे जी तुसी कहने हो कि बहुत मिस किया तुसा ने प्रोग्राम की जी असी हर सैटरडे वाले दिन 5 तो लैके 7 बजे तक इत्थे ही होने हैं तुसी गाने नी फरमाइश कीती जी जरूर मैं तुसानी फरमाइश तुसा तक पहुंचासा अकमल जी तुसानी मोहब्बतां ना बहुत शुक्रिया उम्मीद है कि तुसा ठीक ठाक हो सो सदा सलामत रहो खुश रहो

महिंदर सिंह जी सतबीस बिल्लाइन जी आया नूं तुसां वी फोन कीता मादर चणिया मैं ओन एयर सां इस वक्त तुसां नाल गल नहीं हो सकी तुसां की वी प्रोग्राम में शामिल करने आ महिंदर सिंह जी ए तुसां नाल वास्ते वी गाना सी और आने वाला गाना वी तुसां ने ना करसा

वेलकम बैक जी सब बिस्मिल्लाह जी आया नु तुसे सुन रहे हो तरनी यानी खूबसूरत आवाज इस सराय की सॉन्ग डोल वफादारा अकमल जी उम्मीद है कि तुसा के भी पसंद आया उसी जी अकमल जी बस सिर्फ सैटरडे वाले दिन एक दिन ही होना है सारा सो शो ते तुसा ने फिर मैच तो तक जरूर पहुंचासा तुसा ने मोहब्बत आना बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम में शामिल होयो रिफत जी एंड बशर जी तुसा ने मोहब्बत आना बहुत शुक्रिया एंड फरीद खान जी और साकिब महमूद जी सुल्ताना जी बहुत अच्छा लगा तुसी प्रोग्राम में शामिल होयो और हौसला अफजाई की है टाइम मिलाने जी 6:40 और 7 सेकंड हो गए दिन है जी सैटरडे ना 2 तारीख है 5वें महीने ने सन 2026 स्टूडियो नंबर है जी 01484817705 अगर तुसी फोन करना चाहो और अगर तुसी व्हाट्सएप करना चाहो तो 07444202155 देखो जी किस तरह एनर्जी आनी है जदों के तुसी हौसला अफजाई करने हो और फोन करने हो और तुसी दसने हो और प्रोग्राम की सराहने हो तो फिर असा की भी अच्छा लगना है और मजीद प्रोग्राम की बेहतर करने की कोशिश करने हैं और असा की भी अच्छा लगना है कि तू कोई असा की सुन रहा काफ़ी लोग सुनने होने पर कहने के फोन नहीं करने पता नहीं फोन क्यों नहीं करने हाले के मिंट फ्री होने और टैक्स भी फ्री है बस एक बार जो पैसे देने होने देने होने तो अजकल तो तुसा की पता है कि काफ़ी सहूलत भी हैं पर फिर भी जो तुम फोन कर सो सनी शुक्रिया जे ना कर सो खामोशी ना सुन सो फिर भी तुसा शुक्रिया असी तो आना ही होना और अपना प्रोग्राम करना होना बस अच्छा लगना कि सानू कोई सुन रहा हूँ जी इंतजार दी गड़ियाँ खत्म हुई अकमल जीरा ने सुने जे गाने की फिर मैच की चलो कोई गल नहीं उम्मीद है कि उन्हें की पसंद आपसी मिलकर सुनने जी नहीं अब हजारवीं खूबसूरत आवाज़ ही

0: Your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
2: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
3: हर सफर की फिजाओं में बस एक खुशबू 30 बरसों की मोहब्बत जायकों की एक कहानी स्नूटीज पिज्जा बार जहां हर लुकमा एक एहसास बन जाए 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर
4: 2 12 inch pieces for £12 3 12 inch pieces for £17 2 100% Angus beef smash burgers for £12 2 fresh chicken fillet breast burgers for £12 and 2 loaded fries for £10 also finally 3 tender meals just for £5
3: chahe sham ho ya raat ki mehfil har lamha ban jaye khaas har zaika ban jaye yaad aaye zaikon ki is mehfil mein shamil hoon Snooty's Pizza Bar jahan har bar dil kahe bas yahi hai asal maza
4: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
5: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं? The Kirklees Council Wellness Service हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है। अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस, वेप्स और गम फ्राहम करते हैं, जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है। तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है। और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है। अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484-234-095 UK Kirklees Council Wellness Service हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़
6: लानिका
7: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये लानिका कौन है
6: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे
7: अच्छा लानिका वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है
6: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
7: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
6: कंजूस कहेंगी उनका बुफे मंडे टू थर्सडे $22.99 फ्राइडे टू संडे $24.99 अंडर 10 $11.99 and under 4s free.
7: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए.
6: क्यों नहीं? वो है भी हमारे करीब पेलन न्यू रोड Halifax HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं. जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं.
8: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
9: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
10: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
11: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
9: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
8: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
9: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
12: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन, रेडियो संगम।
13: अभी कॉल कीजिए 01484-549947।
8: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
14: चाय चाहिए तो फिर
15: गो चाय।
14: कभी भी चाहिए तो फिर
15: गो चाय।
14: दिन को चाहिए, रात को चाहिए, हर वक्त चाहिए तो फिर
15: गो चाय।
16: Need a proper chai fix for when you're on the go? Skip the queue and head to Go Chai, serving the people's favorite kadak chai, creamy Kashmiri chai, coffee and much more. Made fresh at the touch of a button. Perfect taste, perfect temperature, and hard to beat on price. Available 24/7. Find Go Chai at your local petrol station. For exact locations, visit gochai.co.uk. Go Chai, proper chai, anytime.

अकमल जी तुसाने ना कर सुन सुन जे माई अलिशबा नूर नी खूबसूरत आवाज दी उम्मीद है कि तुसा की पसंद आसन खुश रहया करो।

0: हाँ जी तुसी सुना सुना या जिया वंगा मुल्तान दिया पिछले दिन तुसी वंगा ने बारे सुनिया उसी कश्मीर दिया वंगा बहुत ही सोनिया जिया लाइक पायल और चमकनिया ते हुन किन सांजी तुसा कोलू इजाजत टाइम हो गया जी हुन जाने ना तुसा सारिया सोनिया समाता ना बहुत शुक्रिया जो भी प्रोग्राम शामिल हो अकमल जी सोनिया मोहब्बता ना शुक्रिया रिफत जी सारे साथी प्रेजेंटर मुबशर जी साथी प्रेजेंटर फरीद खान जी एंड साकब महमूद जी सुल्ताना जी बड़ी मेहरबानी तुसानी तुसाना बहुत शुक्रिया एंड मिर्जाब जी एंड मिंदर सिंह जी सुल्ताना जी एंड नदीम जी रिफत जी किंगी जी जिन्होंने फोन किया सी रहीम जी अहमद शदाई जी और भी जितने भी इस वक्त
1: रेडियो संगम अवेलेबल ऑन 107.9 एफएम 94.7 एफएम ऑन डीएबी डिजिटल ऑनलाइन ऑन स्मार्ट स्पीकर एंड ऑन आवर डेडिकेटेड ऐप डाउनलोड इट नाउ On the hour, every hour, this is Radio Sangam National and International News.
2: The Prime Minister wants tougher action against people using certain phrases on pro-Palestine protests. There have been calls for the demos to be called off after a wave of violence against Jewish people and organisations in recent weeks. People organising the marches deny there's any link between the events. Lord Mann is the government's independent advisor on anti-Semitism and backs the PM.
3: So a lot more action includes those who call for violence against the Jewish community being arrested. That hasn't been happening. That's part of what I'm being told privately is what will be happening.
2: Four people have been taken to hospital after a gun was fired from a vehicle in Brixton, South London, early this morning. One of them is in a life-threatening condition. The US is going to withdraw 5,000 troops from Germany amid a row between Donald Trump and the German Chancellor. It's over how America is conducting negotiations with Iran. In sport, Arsenal are on course to move 6 points clear at the top of the Premier League. We go live to Kat Suave.
4: It's Arsenal 3, Fulham 0. Gyökeres has been the star of the show here in North London, scoring two goals and setting up the other. Arsenal captain Saka also found the back of the net, with Fulham not causing any trouble in front of goal. A crucial 3 points to silence the critics and to distance themselves from chasers Manchester City seem inevitable. It's Arsenal 3, Fulham 0.
2: West Ham's bid to avoid relegation suffered a blow with a 3-0 defeat to Brentford. Kilmarnock's 3-0 victory over Dundee United relegated Livingston from the Scottish Premiership. Britain's Lando Norris won the sprint race at Formula One's Miami Grand Prix. Sean Murphy is through to the World Snooker Championship final thanks to a 17-15 victory over John Higgins. And actor Michael Sheen, Ross Kemp and James Blunt are among the stars confirmed for the upcoming series of Celebrity Traitors. They are heading to the Scottish Castle to try to win £100,000 for a charity. That's the latest. I'm Victoria Lawrence.
5: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
6: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
7: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
8: बॉबी फैशन इज ऑल सेट टू मेक योर स्पेशल डे रिमार्केबल स्पेशलाइजेस इन ब्राइडल वेयर ग्रूम्स वेयर एंड चिल्ड्रंस क्लोथिंग फॉर ऑल occasions.
9: Visit Kare Bobby Fashion. Mention Kare Radio Sangam ka naam aur paye £100 ki chhoot on bridal wear.
8: Also more discounts are available on bridal wear with party wear packages. Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
9: Amazing Asian clothing also made to measure orders with perfect fitting.
8: Special offers for Eids are also available now with a large collections of matching jewelry, bangles and much much more. Bobby Fashion at 312A Bradford Road Huddersfield HD1 6LQ
9: Call 01484 769926.
8: Bobby Fashion, fashionable living.
1: And now with a free gift with every purchase.
10: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
11: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
12: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
13: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
14: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
10: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
14: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
12: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
13: Abhi call kijiye 01484-549947.
10: Training will be provided.
15: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
16: Are you peeping Tom?
15: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
17: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
16: Come up and see me sometime.
15: Case closed.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

रेडियो संगम 107.9 FM एंड 94.7 FM. आवाज आप सुन रहे हैं शमशेद असलम. थैंक यू वेरी मच आपने रेडियो संगम को ट्यून किया.

सिले सिले नैना दी वजह दी बलराज और नसीबोलाल की आवाज। रेडियो संगम का कॉन्टैक्ट नंबर 01484817705 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैसेज के लिए 07444202155।

क्लब के जरिए आप हमें सुन सकते हैं मैनचेस्टर, कैम्ब्रिज, ग्लासगो, शेफील्ड, नेल्सन, ब्लैकबर्न और लीड्स के इलाके में। पूरी दुनिया में सुनने के लिए www.radiosangam.co.uk।

सिले सिले नैना दी बजा दूं। खूबसूरत से पंजाबी ट्रैक के साथ प्रोग्राम का आगाज किया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। रेडियो संगम आप सुन रहे हैं, तो आइए जनाब एक और गीत आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहने का बेहद

बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर। तो सुनाइएगा कैसे हाल है वाले आपके, क्या चल रहा है जिंदगानी में। उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वाले होंगे ठीक ठाक खुशपाश। अगर खुदा ना हास्ता आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं या किसी मुश्किल में हैं, तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपके लिए दुआगो हैं कि वो सोहना रब आपकी सभी मुश्किलात को आसान फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में मेरी मुलाकात आपसे जब होती है तो आपकी जो कॉल्स हैं और आपके मैसेजेस जो हैं वो जरूर देखने को मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज भी आप भरपूर मेरा साथ देंगे अपने प्यारे प्यारे मैसेज के जरिए, और अगर हो सके तो अपनी आवाज भी हमें सुनवा सकते हैं। यह है रेडियो संगम, दिलों का संगम। खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने लोग, एक है हम और एक है आप। तो आपका साथ जरूरी होता है, कहते हैं हम सफर अच्छा हो तो सफर कटने का आपको पता ही नहीं चलता। तो आपकी मोहब्बतों चाहतों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस सफर में मुझे हम सफर चुना। तो इसी खुशी में एक प्यारा सा गीत आपकी खूबसूरत सी समातों की नजर। इंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो संगम पे शमशेर असलम का।

दाऊद भाई आपको वेलकम कहते हैं, आपने हमें याद किया। सानिया सलाम कह रही है, वालेकुम सलाम। जवार शाह हमारे बड़े प्यारे से भाई हमारे साथ हैं जी। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। सामिन, हर इंसान अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से नहीं करता, बल्कि रिश्तों और जिम्मेदारियों के तकाजे इसे मजबूर करते हैं। वो अपने ख्वाहिशात को दबाकर दूसरों के लिए जीता है, और खुद के लिए जीने का लम्हा भी अगर मिले तो वो महज एक इत्तेफाक होता है। इंसान जैसा नजर आता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। अक्सर मुस्कुराहटों के पीछे थकन और खामोश जंगें छुपी होती हैं। और हम अक्सर लोगों को महंगे तोहफे देकर समझते हैं कि हमने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि किसी का सबसे कीमती हक हमारी तवज्जो और वक्त होता है। हम रिश्तों में मौजूद तो होते हैं मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। हमारी मौजूदगी सिर्फ जिस्मानी रह जाती है, दिल दिमाग और वक्त कहीं और मसरूफ होते हैं। वो कहते हैं घड़ी देना आसान है लेकिन वक्त देना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जैगम भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने गीत सुनने की फरमाइश कर डाली तो हम आपके लिए गीत जरूर प्ले करेंगे। हमारा काम ही क्या है जी, आप लोगों को खुश रखना। तो आ जाए फिर मिलके एंजॉय करते हैं हमारे साथ।

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: Amma, open the door. Hi, how are you? Chicken, lamb, beef, free-range chicken, organic chicken, hadiyala gosht, har kisam da boneless, gurde, kaleji, batere, taza machli, desi murgi, balati kukad, siri paaye, bas banda liaye, pakaye te khaye, mehmana nu bulaye te sawab kamaye.
3: ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ
2: ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
3: ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ
2: ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਆ ਮੌਲਾ
4: ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪ ਜਾਈਏ ਹਾਜੀ ਸਵਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਖਾਦਿਮ ਸੁਪਰ ਸੇਫ 1 ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਬਰਕਵੀ ਹਰਿਸਫੀਲਡ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 9 ਟੂ 7 ਐਂਡ ਸੰਡੇ 10 ਟੂ 6 ਐਚਐਮਸੀ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਹਲਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 01484456257 ਦੈਟਸ 01484456257
5: जागते रहना जागते रहना
6: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
5: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
6: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
5: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है next to select
6: bus main ab nahi saunga
5: paratha stop 9 black road huddersfield hd15hu opening soon telephone 01484542700
7: insaan bahut mehnat bahut koshishon aur lagan se apna business khada karta hai aur ummeed karta hai ki zyada se zyada log unse connect kare yahan par aate hain hum yani radio sangam ki advertisement radio sangam ka bahut bada platform use kare रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड पैकेजेस आर अवेलेबल कांटेक्ट रेडियो संगम टीम नाउ ऑन 01484549947 दैट्स 01484549947

रेडियो संगम 107.9 FM। लीजिए हम आगे वापस यानी पहुंच गए आप तक और आप ही पहुंच जाइए हम तक, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए कॉल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए और एंजॉय कीजिए ये प्यारे से गीत को।

मोहम्मद तारक आपने साथ दिया, बहुत शुक्रिया आपका भी। जावेद अहमद हमारे साथ हैं, सुल्तान आपका बेहद शुक्रिया। अतीक उरमान बड़ी साहब थैंक यू वेरी मच।

कितना मुश्किल होता है ना अपनी आंखों से देखना कि आपकी आंखों के सामने कुछ सब कुछ खो रहा हो। शाहिद भाई थैंक यू वेरी मच। रजा भाई वालेकुम सलाम।

मेरा दिल गया मेरी जान गई, देखते देखते और देखते ही देखते गाना गया जी मुक्के, गाना खत्म हो गया जी। तो देखते देखते हम फिर आगे देखते हैं कि आगे जो है आने वाला जो गीत वो कौन सा है। आप सभी समातों की नजर हमारे साथ रहेगा।

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना

हूँ सुबानी, आपका शुक्रिया। शकील अहमद थैंक यू वेरी मच। राजा मुमताज हमारे संग है। बहुत शुक्रिया सियाग अहमद आपके भी, आपको भी ये बोलियां अच्छी लगी। बहरहाल कुछ भी है जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। एंजॉय दिस ट्रैक।

वेलकम बैक जी, शमा हमारे साथ हैं। और शमा ने लिखा जी, कुछ लोग अपने आप को इंसानी फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे होते हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। हाय, क्या सच्ची बात लिख दिया। हसन भाई आप हमारे संग हैं, और हसन भाई लिखते हैं जी के लड़कियां इतना अपनी रुखसती पे नहीं रोती जितना साडा चिड़िया का चंबा सुनकर रोती हैं। ओह माय गॉड। सरकार क्यों कुट पवानी जी हैं। चलें जी, शुक्रिया आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। वैसे कहते हैं कि किसी के पास जो है वो कौन सी डिग्री है और कितना पढ़ा लिखा है, शादी का खाना खोलते ही सब पता चल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग बड़े जनाब कहते हैं, हम तहजीब वाले हैं, हम बड़े शाइस्ते हैं, हम में बड़ी तमीज है। लेकिन उस सारी तमीज का पता तब चलता है जब शादी आदमी खाना खोलता है। सब वैसे भागते हैं जैसे पता नहीं कितने दिनों से भूखे हैं। बस ये होती है अंदर की भूख जो कभी खत्म नहीं होती। वो कहते हैं कि जो पेट है वो भर जाता है लेकिन आंखें नहीं, जो वो नहीं भरती बिल्कुल भी। वो पंजाबी जी कहते हैं कि ढिड रज जाता पर अखा नहीं रजती। खैर जी, ये खट्टी मीठी बातें जो है आपके साथ चलती रहेंगी, साथ में आपको गीत भी सुनाते रहेंगे, आपकी सुनते रहेंगे और आपकी सुनते रहेंगे और अपनी सुनाते रहेंगे। फिलहाल ये गीत आपके नाम करते हैं, हमारे साथ रहें।

रेडियो संगम 107.9 FM और 94.7 FM। तो जनाब आपके नाम करेंगे पंजाबी का खूबसूरत सा गीत, खूबसूरत सी समातों की नजर, जितनी मैं रखदा उम्मीद डोला उतनी बेदीदे।

हमें दे मान लो मरीद डोला उतने पे दी दे। कुछ लोग होते हैं जी ऐसी जिंदगी में। अलीशबाब का बेहद शुक्रिया। आमर हमारे साथ साथ शाइस्ता रानी सलामत रहिए अभी।

ऐसे डोले का क्या किया जाए वैसे, बता सकते हैं आप हमें? मोहम्मद समीर, थैंक यू वेरी मच। शाजीब हमारे साथ साथ, आमना आपका भी शुक्रिया।

सुप्तैन हैदर, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद फारस साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया। शकील भाई सलामत रहें जनाब, आप भी, आपने हमें ज्वाइन किया।

ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੋਲਾ ਆਹੋ चैलेंज इसको यहीं पे रोकते हैं। हमायल साहब आपकी फरमाइश है जी, इस गीत को आपने सुनना चाहा तो हमारे संग संग रहिएगा। ये गीत आपके नाम कर रहे हैं और इसके अलावा जितने भी लोग हमारे संग संग हैं आप सभी के नाम ये प्यारा सा गीत।

दिन रात आपके साथ रेडियो संगम हडर्सफील्ड और उसके मज़ाफात में अब वक्त हुआ जाता है अजान मगरिब का। ये अजान हाजी जूलस हैलीफैक्स किताबों से पेश की जा रही है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमामीन।

0: अगर आप भी सदकाए जारिया के तौर पर एक अजान स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो अभी रेडियो संगम से राब्ता कीजिए ऑन 01484549947। दिन रात आपके साथ रेडियो संगम। क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
1: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
4: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
3: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
5: हां भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
6: हां जी याद है।
5: चलो सुनाओ फिर। सोना चाहिए?
6: हां जी चाहिए।
5: चांदी चाहिए?
6: हां जी चाहिए।
5: कहां से लोगे?
6: चाचा ज्वेलर्स।
5: फिर से बोलो,
6: चाचा ज्वेलर्स।
5: चूड़ी, कंगन, झुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा, जल्दी बताओ कहां से लोगे?
6: चाचा ज्वेलर्स, चाचा ज्वेलर्स।
7: केड़ी ऑफर लाईया वा सानू भी तो दसो।
8: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर। यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू।
9: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE। टेलीफोन नंबर 01422342553। गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स।

0: रक्षा के बारे में आपसे कुछ।
1: अरे रानी, क्या आदमी दिया तुमने मुझे। इसका नाम तो मोती नहीं, सचमुच बादशाह ही होना चाहिए था। इसने कहा है कि कल 4 बजे

रेडियो संगम का स्टूडियो और शमशेद असलम आपके साथ मौजूद। आप भी हमें सुन सकते हैं पूरी दुनिया में www.radiosangam.co.uk पर। रेडियो संगम का कॉलिंग नंबर है 01484817705 और व्हाट्सएप आप हमें करेंगे 07444202155।

हिजाब हमारे साथ हैं जी, और हिजाब ने हमें भेजी है गजल और कहती हैं जी ये तमाम सुनने वालों के नाम कर। ये कलाम है जी नौशी गिलानी का और लिखा है जी कि गुरेजे शब से सहर से कलाम रखते थे, गुरेजे शब से सहर से कलाम रखते थे, कभी वो दिन थे कि जुल्फों में शाम रखते थे। तुम्हारे हाथ लगे हैं जो करो सो करो, वगरना तुमसे तो हम सो सो गलाम रखते थे। ये और बात हमें दोस्ती ना रास आई, ये और बात हमें दोस्ती ना रास आई, हवा थी साथ खुशबू मकाम रखते थे। न जाने कौन सी रुत में बिछड़ गए वो लोग, न जाने कौन सी रुत में बिछड़ गए वो लोग, जो अपने दिल में बहुत एहतराम रखते थे। वहां तो जाता कभी हम तो उसके रस्तों पर, दिए जलाते हुए सुबह शाम रखते थे। गुरेजे शब से सहर से कलाम रखते थे, कभी वो दिन थे कि जुल्फों में शाम रखते थे। बहुत शुक्रिया हिजाब, आपने नौशी गिलानी का खूबसूरत सा कलाम तमाम सुनने वालों की नजर किया। तो इस गजल के साथ ही एक प्यारा सा गीत आप सभी समातों की नजर करेंगे। हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया।

0: 107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना रेडियो संगम।
1: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app, download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
2: Free leader Kemi Badenoch wants to ban pro-Palestine marches. Sir Keir Starmer hasn't gone as far, but says there needs to be tougher action on controversial chants by some protesters. It's after recent attacks against Jewish people, including a stabbing in Golders Green in North London on Wednesday. John Rees is co-founder of the Stop the War Coalition.
3: There is no threat whatsoever to the Jewish community from these marches. In fact, they are attended by thousands of Jewish people, often in a block, who disapprove of the actions of the government and disapprove of the actions of the state of Israel.
2: Four people, including a pensioner, have been taken to hospital after a gun was fired from a vehicle in Brixton, South London, early this morning. One of them, a 25-year-old man, is in a life-threatening condition. NATO insists it's confident in the organisation's defence capabilities following Donald Trump's decision to withdraw 5,000 American troops from Germany. It comes after Chancellor Frederick Merz said the US was being humiliated by Iran in talks to end the war in the Middle East. In sport, Arsenal have boosted their Premier League title chances with a 3-0 victory over Fulham. They have moved 6 points clear of Manchester City at the top of the table, although their closest rivals now have 2 games in hand. Manager Mikel Arteta says he's delighted with how they put the pressure on.
4: It was a great team performance right from the beginning. There was some great individual performance as well, which is very important. So, we started the game like we wanted, very aggressive, very lively.
2: West Ham's hopes of avoiding relegation were dealt a blow with a 3-0 defeat at Brentford. Ipswich will be back in the Premier League next season after a 3-0 win against QPR. And Livingston's relegation from the Scottish Premiership has been confirmed after Kilmarnock beat Dundee United 3-0. Dundee won 1-0 against St Mirren. That's the latest. I'm Victoria Lawrence.
5: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
6: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है? क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं? तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए। वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं, वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें। अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं। वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं। प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं। आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
7: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
8: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
9: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewellers.
10: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
11: Jagte rehna, jagte rehna.
12: So jaunga to kya hoga bhai?
11: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aalu ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka aur iske saath saath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
12: Stop. Are पराठा स्टॉप
11: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
12: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
11: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
13: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising
14: Are you peeping Tom
13: Sadly it wasn't in there so I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
15: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
14: Come up and see me sometime.
13: Case closed.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

Ladies and gentlemen, this is Radio Sangam, non-stop entertainment. And I'm your host, Shamshed Aslam. गीत आप सुनेंगे उद्दत नारायण की आवाज में. फिल्म का नाम है रोशनी और गीत के बोल हैं तूने मुझे जान लिया.

बिल्कुल जी, तूने मुझे जान लिया और मैंने तुझे जान लिया, तो अब क्या बचा, अब क्या बचता है जी। नवीद भाई थैंक यू वेरी मच। साबिर भाई पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया मेरे भाई।

तूने मुझे जान लिया और मैंने तुझे जान लिया, खूबसूरत सा मौसम हो और आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे हो, साथ में आपका चाहने वाला हो, तो क्या खूबसूरत सफर बनेगा। और साथ में ये गीत हो और साथ हो रेडियो संगम का, बेहद शुक्रिया जी। आने वाला गीत भी जरूर सुनिएगा, अगर रेडियो संगम के साथ रहेंगे तो इसी तरह के प्यारे प्यारे से गीत आपके नाम किए जाएंगे।

कद याओ माया साडे राम आ गए। पंजाबी सुनने वालों के लिए खूबसूरत सगे आसिफ महमूद आपका बेहद शुक्रिया। हंसला हमारे साथ हैं जी। मोहम्मद समीर आपका भी बेहद शुक्रिया।

खूबसूरत आवाजी और खूबसूरत माये टप्पे बोलियां कुछ भी आप कह सकते हैं जनाब, और इसका टाइटल था कदी आओ माया। तो इसी के साथ एक फरमाइशी गीत है जी आपके लिए प्ले करना है। किसके लिए प्ले करना जी? आप सबके लिए तो होगा, लेकिन स्पेशली जी हमें फरमाइश किया सोहेल भाई ने, आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ साथ हैं। तो ये रहा आपका गीत, आपके नाम, हमारे साथ रहिएगा।

रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। उस मुसव्वर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। सब तमाशा कुन हतम शुद, कह दिया उसने बस और बस।

तुझ बिन मेरी जिंदगी में कुछ तो कमी रहती है, हंसी लबों पर और आंखों में नमी रहती है, कहने को तो चल रही होती हैं सांसें मगर धड़कने तेरी दस्तक पे जमी रहती हैं।

आपने देख लिया फिर भी मुरव्वत नहीं की, इसलिए चुप रहे हम, आपकी मिन्नत नहीं की। जिसको बदले में तलब है उसे चाहा जाए, उसने धंधा किया है उसने मोहब्बत नहीं।

0: राहत फतेह अली खान साहिब की आवाज, जिंद खुशबू, जब्त खोने की अजियत को कहाँ समझोगे, छुप के रोने की अजियत को कहाँ समझोगे, घर के दालान सदा वसते आबाद के दो, एक कोने की अजियत को कहाँ समझोगे, सैकड़ों लोग मुयस्सर हैं रफाकत के लिए, तुम ना होने की अजियत को कहाँ समझोगे।
1: खुशबू

सको ना। मजा आ गया जनाब इस गीत को सुनने में। उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगा होगा। खूबसूरत सी आवाज और राहत साहब तो कमाल हैं जी। जैनब आपका बेहद शुक्रिया, आपने एक गीत सुनने की फरमाइश की है। हमारे साथ रहिएगा, ये आने वाला गीत आपके नाम करेंगे।

0: you had an accident driving your taxi, has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
2: or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
3: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ
4: ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਕਿਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ
3: ਓ ਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਡਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈ
4: ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ
3: ਖਾਦਮ ਸੁਪਰ ਸੇ ਬਰਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤਾਂ 100% ਦਲਾਲ ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ Chicken, lamb, beef, free-range chicken, organic chicken, hadiyala gosht, har kisam da boneless, gurde, kaleji, batere, taza machli, desi murgi, balati kukad, siri paaye, bas banda liaye, pakaye te khaye, mehmana nu bulaye te sawab kamaye.
4: Bas te fir hun main apne ammi abbu te bhain bhraavan nu bula lani
3: haan. Main mehmana da kiya si.
4: Ki kiya je, fir aakhyo?
3: Ji kuch nahi bachaiyan mere maula.
5: Ye do to aise hi lage rahenge. Aap jaiye Haji Sobat Meat and Chicken inside Khadim Super Safe. One Black Road, Birkby, Huddersfield. Monday to Saturday, 9 to 7. And Sunday, 10 to 6. HMC approved, 100% halal. Telephone 01484-456-257. That's 01484-456-257.
6: हां भाई बच्चों कल का सबक याद है
7: हां जी याद है
6: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
7: हां जी चाहिए
6: चांदी चाहिए
7: हां जी चाहिए
6: कहां से लोगे
7: चाचा जूलर्स
6: फिर से बोलो
7: चाचा जूलर्स
6: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
8: चाचा जूलर्स
9: चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू
10: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 एएम टू 6:30 पीएम 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE टेलीफोन नंबर 01422342253 गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स
11: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
12: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
13: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
14: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
12: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
11: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
12: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
15: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
16: अभी कॉल कीजिए 01484549947
11: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
3: चाय चाहिए तो फिर
7: गो चाय
3: कभी भी चाहिए तो फिर
7: गो चाय
3: दिन को चाहिए रात को चाहिए हर वक्त चाहिए तो फिर
7: गो चाय
17: need a proper chai fix for when you're on the go skip the queue and head to go chai serving the people's favorite kadak chai creamy kashmiri chai coffee and much more made fresh at the touch of a button perfect taste perfect temperature and hard to beat on price available 24/7 find go chai at your local petrol station for exact locations visit gochai.co.uk Go chai, proper chai, anytime.

रेडियो संगम 107.9 एफएम एंड 94.7 एफएम। शमशेर असलम आपके साथ मौजूद। पंजाबी का गीत आप सभी समातों की नजर। दामन बचा सोने होंदे बेवफा।

अनुषी आपका बेहद शुक्रिया, मोहम्मद रेहान हमारे साथ साथ, अहमद रजा आपका भी बेहद शुक्रिया, इरफान उल हक थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बतों का।

हां जी क्या कहते हैं आप कि सोने होंगे बेवफा या सिर्फ गल ही ने। अदीबा नूर बेहद शुक्रिया आपके मैसेज करने का। मोहम्मद वासिफ आपका भी शुक्रिया। वसीम भाई थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बत।

संगता नाला सोने होते बेवफा जहीर भाई सफर कर रहे हैं जी और अपने दोस्तों के साथ हैं, हमारी आवाज सुन रहे हैं और हमें याद कर लिया। आपके याद करने का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, आपने भी गीत सुन लिया, क्यों नहीं जी। ये गीत पहुंचा अपने इख्तिताम को, लेकिन आने वाला गीत जो है वो आपके नाम करेंगे और आपके सभी दोस्तों के नाम। और कहना आपसे यही है कि जो आप लोग सफर कर रहे हैं तो जो आपका ड्राइवर साथी है ना, उसे कहिएगा कि जरा ड्राइविंग ध्यान से कीजिएगा।

बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपने भरपूर मेरा साथ दिया और बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, आपको अपनी सुना के। अपना और अपने चाहने वालों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मेरा और आपका लहामी नासिर।

दिन रात आपके साथ रेडियो संगम हडर्सफील्ड और उसके मज़ाफात में अब वक्त हुआ जाता है अज़ान-ए-इशा का।

0: अगर आप भी सदकाए जारिया के तौर पर एक अजान स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो अभी रेडियो संगम से राब्ता कीजिए ऑन 01484549947। दिन रात आप
1: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
2: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
3: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
0: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
4: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
5: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
6: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
4: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
4: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
7: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
6: Abhi call kijiye 01484-549947.
0: Training will be provided.
8: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
9: Are you peeping Tom?
8: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
10: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
9: Come up and see me sometime.
8: Case closed.
11: Jagte rehna, jagte rehna.
12: So jaunga to kya hoga bhai?
11: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki paratha stop leke aa raha hai aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha donut, paratha tikka aur iske sath sath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
12: Stop! Are wah! पराठा स्टॉप?
11: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
12: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
11: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
2: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
3: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
4: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
5: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
3: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
2: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
3: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
6: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
7: Abhi call kijiye 01484-549947.
2: Training will be provided.
8: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
9: Are you peeping Tom?
8: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
10: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
9: Come up and see me sometime.
8: Case closed. La, la, la,
2: la, la, la, la. Kullu nafsin zaikatul maut. हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
6: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلی فون 01924466771 Mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा, आज तो बाद तेनू कदे चेहरा देखना नहीं मेरा। मैं इश्क कीता सी ते तू वपार कीता सी, गलती तेरी नहीं गलती ता मेरी सी, क्योंकि तू नहीं मैं तेनू प्यार कीता सी।
1: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Singham team now on 01484549947. That's 01484549947.
2: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
3: हाँ जी याद है।
2: चलो सुनाओ फिर। सोना चाहिए?
3: हाँ जी चाहिए।
2: चांदी चाहिए?
3: हाँ जी चाहिए।
2: कहाँ से लोगे?
3: चाचा ज्वेलर्स।
2: फिर से बोलो।
3: चाचा ज्वेलर्स।
2: चूड़ी, कंगन, जुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा, जल्दी बताओ कहाँ से लोगे?
3: चाचा ज्वेलर्स। चाचा ज्वेलर्स।
4: केड़ी ऑफर लाइया वा, सानू भी तो दसो।
5: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर। यहाँ पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू।
6: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE। टेलीफोन नंबर 01422342553। गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स।
7: आई हैव बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल local advertising.
8: Hey, you peeping Tom.
7: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
9: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
8: Come up and see me sometime.
7: Case closed.

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
2: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
3: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
4: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
5: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
6: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
4: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
3: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
4: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
7: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
8: Abhi call kijiye 01484549947.
3: Training will be provided.
9: Jagte rehna, jagte rehna.
10: So jaunga to kya hoga bhai?
9: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge, kyunki paratha stop leke aa raha hai aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka aur iske sath sath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
10: स्टॉप, अरे वाह, पराठा स्टॉप.
9: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
10: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
9: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU, ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.
11: बाहर बेटे मंगा चले कौन दी जान जान के